सुप्रभात FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र. आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की तिथि 22, तदनुसार 14 अक्टूबर वर्ष 2026. प्रातः के 5:58:40 हुए हैं. अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है. हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं.

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6वें चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन

0: परिवर्तन का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं, समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे विविध भारती मुंबई से।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा।

0: फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब जिद

0: इसी के साथ अब आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। झरोखा में लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर संगीत सरिता में आज आप सुनेंगे श्रृंखला राग समय चक्र का पहला भाग, आमंत्रित कलाकार गायिका मंजरी आलेगांवकर, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम आप सुना करते हैं 7:00। सात बजकर 30 समय रहेगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के का। अब आपको बता देते हैं समाचार बुलेटिन का समय। आकाशवाणी दिल्ली से जो समाचार आज हम रिले करेंगे उनका समय रहेगा प्रातः 8:00, 10:00, दोपहर 12:00, 2:15 पर, शाम 5:00, 6:00, 8:45 पर और सभा के अंत में रात्रि 11:00। अब प्रादेशिक समाचारों का समय भी सुनिए। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:05 पर, 6:10 पर और 7:45 पर। पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा दोपहर 1:10, शाम 6:20 और रात्रि 10:30 पर। आठ बजकर 15 पर सुनना न भूलिए कार्यक्रम त्रिवेणी और यही कार्यक्रम आप दोपहर 2:00 भी सुन सकते हैं। 8:30 समय रहेगा नए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रलोक का। आज का अखबार ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:30 पर।

10:05 पर आज लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में विषय रहेगा जागरूक बने समझदारी से खरीदें। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां प्रातः 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। 11:30 पर सुनना न भूलिए स्वास्थ्य संबंधी हमारा कार्यक्रम संजीवनी।

0: 11:15 समय रहेगा कार्यक्रम सुरबहार का, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:05 पर। 1 बजे फिर से होगा कार्यक्रम विवरण। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर होंगे 1:30 पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 2:30 पर। सखियों का अपना कार्यक्रम सखी सहेली 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। पिटारा खुलेगा शाम 4 बजे और आज के पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 5:20 और 5:30 समय रहेगा एक और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। पंजाबी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:30 पर। 7 बजे समय रहता है फौजी भाइयों के पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जयमाला का। आज बुधवार के रोज शाम 7:47 पर आप सुना करते हैं रेडियो डायरी। रात 8 बजे हवा महल में आज सुनिएगा प्रहसन शीर्षक की खोज। 8:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी प्रसारित किया जाएगा। 9 बजे समय रहेगा कार्यक्रम आपके लिए का। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। रात 10 बजे आप सुना करते हैं कार्यक्रम छाया गीत और 10:32 समय रहता है कार्यक्रम सुर सांझ का। तो श्रोताओं, झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से सुनवाए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। और आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: भाग 341।

रावण का हनुमान से युद्ध हो रहा है। इसी समय वानरों को माया के प्रभाव से युद्ध भूमि में असंख्य रावण दिखने लगते हैं। ये देख वानर भालू त्राही त्राही करते हुए रक्षा के लिए प्रभु की शरण लेने भागते हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए श्री राम एक ही वाण से माया जाल छिन्न भिन्न कर देते हैं। फिर वहां एक ही रावण को देखकर सारा वानर समूह उस पर टूट पड़ता है। रावण अब हनुमान, अंगद, नल और नील से युद्ध कर रहा है। इसी समय वो आकाश में एकत्रित देवताओं को देखता है जो श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। वो उन्हें लक्ष्य कर वाण चलाने लगता है। उधर श्री राम के वाणों से कट कट कर उसके सिर और भुजाएं इधर उधर उड़ रही हैं, लेकिन कटने के साथ ही वे फिर उग आते हैं। वो अपनी विशाल भुजाओं से वानरों के समूह उठाकर मसल देना चाहता है कि तभी

0: राग समय चक्र। श्रोताओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है श्रृंखला राग समय चक्र की पहली कड़ी।
1: योग्यम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथितो बुधैः। एक विशिष्ट स्वर समुदाय जो स्वर या वर्ण से सुशोभित होकर मनुष्यों के हृदयों का रंजन करता है, उसे गुणीजन ज्ञानीजन राग कहते हैं। श्रोताओ, राग समय चक्र, इस विषय पर हमसे विस्तृत चर्चा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जयपुर अतरौली घराने की गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर को। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते।
1: हमारी इस श्रृंखला में तबले पर संगति कर रहे हैं बनारस घराने के मूर्धन्य तबला नवाज पंडित किशन महाराज जी के शिष्य श्री बालकृष्ण अय्यर जी। बालकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।

0: नमस्कार।
1: साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं शुभांगी भावसार जी का, जो हारमोनियम पर संगत करेंगी।
2: नमस्कार।
1: श्रोताओं, मंजरी जी का परिचय आपको संक्षेप में मैं दूं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की उच्च श्रेणी की कलाकार हैं। बचपन से ही संगीत की शिक्षा आपने प्राप्त की। चूंकि आपके पिता पंडित मोहन राव कर्वे जी अपने जमाने के माने हुए गायक थे, वे ही आपके पहले गुरु थे
2: जी।
1: आगे जयपुर अतरौली घराने की तालीम आपने हासिल की जाने माने संगीतज्ञ गुरु स्वर्गीय वामन राव देशपांडे जी से
2: जी।
1: मंजरी जी, जहां तक जयपुर घराने की गायन शैली की बात है, उसमें एक पारंपरिक सोच होती है।
2: बिल्कुल।
1: जिसमें घराने की शुद्धता और सौंदर्य के संवरण का अनोखा मिलाप देखने को मिलता है
2: जी।
1: तो इस शैली के बारे में और अपने गुरुजनों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगी?
2: मेरे पहले गुरु थे पंडित मोहन कर्वे, मेरे पिताजी गायन आचार्य रामकृष्ण बुआ वझे के वो शागिर्द थे
1: जी।
2: हरिभव घंगरेकर से भी उन्हें तालीम मिली थी।
1: हाँ।
2: और मास्टर कृष्णराव जी का सांगीतिक सहवास भी मिला था। बाद में मैंने नवनीत भाई पटेल से तालीम प्राप्त की
1: जी।
2: वो तबला नवाज थे, बंदिश रचनाकार थे, जलतरंग बजाते थे और आकाशवाणी पे म्यूजिक कॉम्पोजर थे। उनके साथ साथ पंडित अप्पा साहेब कानेटकर भुर्जी खां के शागिर्द, उनसे मैंने तालीम हासिल की। और बबन राव जी हरदणकर, उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन किया।
1: जयपुर अतरौली घराने की विशेषता, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
2: जयपुर गायकी में पहली विशेषता यह है कि आकार से, खुली आकार से गाना, और उसके लिए कुछ सूरत बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती। और एक विशेषता यह है जयपुर घराने की, वो ज्यादातर अनवट राग, जोड़ राग पेश करती है। तिहाई ज्यादातर नहीं लेती, सरगम नहीं लेती, और गायकी का जो चलन होता है वो हमारे गुरुजी ने घरंदाज गायकी में, उन्होंने लिखा है स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर। वो कर्वेचर है टेढ़ी गायकी। हाँ। जयपुर गायकी वो सीधी नहीं जाती, और चलन ही ऐसा है उसका।
1: हाँ।
2: आलाप करने में भी वो ऑफबीट आलापी करती हैं, और बाकी सूक्ष्म लय की हम सोच विचार कर सकते हैं
1: जी।
2: और ज्यादातर धीमी लय होती है। बंदिशों का मुखड़ा आकर्षक होता है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है बंदिशों के मुखड़े में भी और गायकी में भी। और ऐसी बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं
1: जी।
2: जो वामन राव जी के पास मैं जब सीखती थी उसको मैं समझ गई थी।
1: मंजरी जी
2: जी,
1: राग समय चक्र ये श्रृंखला जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि हम दिन के पहले प्रहर से जो राग गाए जाते हैं, वहां से किन रागों की उनकी विशेषता बताते हुए कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आपसे हम इसकी जानकारी चाहेंगे।
2: स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों के गाने बजाने के बारे में
1: जी,
2: समय सिद्धांत प्राचीन काल से, वेद काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन रागों में, अर्वाचीन रागों में समय सिद्धांत पर कुछ मतभेद भी हैं, तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे प्राचीन संगीत पंडितों ने
1: जी,
2: रागों को उनके ठीक समय पर गायन या वादन करने का सिद्धांत अपने ग्रंथों में जरूर स्वीकार किया है। उसी को आज के संगीतज्ञ भी स्वीकार करके अपने रागों में समय सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। और ये स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों में तीन वर्ग मानकर कोमल तीव्र स्वरों के हिसाब से उनका विभाजन किया है
1: जी।
2: संधि प्रकाश राग अर्थात कोमल ऋषभ और कोमल ध वाले राग, शुद्ध रे और शुद्ध ध वाले राग, और तीसरा विभाजन है कोमल ग और कोमल नी वाले राग। समय चक्र के अनुसार मैं आज यहाँ भैरव यानी ब्राह्म मुहूर्त से, सुबह 4 से हम शुरू करेंगे ये समय चक्र
1: जी जी।
2: तो समय चक्र के अनुसार हम अलग अलग रागों की चर्चा करेंगे और बंदिशें भी सुनाएंगे
1: जी। बिल्कुल मंजरी जी
2: जी,
1: जयपुर अतरौली घराने की विशेषता को उजागर करने वाला कौन सा राग और राग की बंदिश आप हमें सुनाएंगी?
2: आज मैं राग सावनी पेश कर रही हूँ। सावनी ये जयपुर का खास राग है, उसकी बंदिश भी जयपुर घराने की है
1: जी।
2: वो बंदिश ऐसी है, दे हो सतसंग श्री रंग बावा गंग कारण शरण सब शिव के आए।
1: हाँ।
2: ये प्रार्थना स्वरूप बंदिश है
1: जी जी।
2: और वामन राव जी ने हमें पहले दिन सिखाई।

थी। वह जयपुर घराने की तालीम की शुरुआत इस बंदिश से हुई। सावनी राग रात को गाते हैं, रात के पहले प्रहर में गाते हैं, इसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है।

0: क्या बात है मंजरी जी, प्रार्थना के इन सुरों से बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है हमारे इस राग समय चक्र श्रृंखला की। अगली कड़ी में हम प्रथम प्रहर यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है,
1: हाँ।
0: सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक
1: जी।
0: उस समय में जो राग गाए जाते हैं
1: हाँ।
0: उसकी हम चर्चा करेंगे। आज इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राग समय चक्र, ये थी इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर, आपसे बातचीत की थी जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत बाल कृष्ण अय्यर का, हारमोनियम पर शुभांगी भावसार। चलने से पहले आपको बता दें, तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: यह है विविध भारती, प्रोग्राम भूले बिसरे गीत लेकर आते हैं कुछ ही पलों में।
1: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे भाई,
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
6: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
7: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
8: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
0: अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
9: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

धूल का फूल ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, एन दत्ता का संगीत।

0: दो आंखें बारह हाथ, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। भरत व्यास ने इसे लिखा, वसंत देसाई का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।
5: नन्नी सी जान में है जवानी का सितम क्यों, रग रग में नशा और नशे में है दर्द क्यों।
6: हाँ आप कहे कोई, नशे में है दर्द क्यों?
7: ये इसलिए के जिंदगी

0: की तमन्ना है मगर मिलते नहीं है क्यों।
1: हम भी तो सुने, क्यों नहीं मिलते?
2: ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जाए।

0: मैं क्यों?
1: हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों?
2: ये इसलिए कि इश्क का इजहार किया जाए।

0: शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म से। मोती ने इसे लिखा, सी रामचंद्र का संगीत।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
4: हाँ जी वादा।
0: प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: मैं ता टीका ला लिया और तू भी ला ले.
2: नहीं यार मैं नहीं लौना.
1: ऐ ता फिर यार मार वाली गल होगी.
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ. नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है.
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ. बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ. वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097. पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी.

0: बनाई जोड़ी, अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी जीवन का नशा, कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी।
1: फिल्म अलबेला से गीत अभी आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, सी रामचंद्र का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत संपन्न होता है।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए वीको टर्मरिक क्रीम मैंने चुनी खूबसूरती
1: पीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे उलझन फिल्म से। एमजी हशमत ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: प्यार ही प्यार, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

0: तो देखने तो
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने तो
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए।

0: ये दुश्मन जमाना।
1: अरे सुन।
0: हाँ बता।
1: सबको मिलता नहीं ये खजाना। बोल लो ना।
0: प्यार का है ये दुश्मन जमाना।
2: तो ये था आज का हम है राही प्यार की कार्यक्रम। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी

0: मादक पदार्थों नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन,
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीन फील्ड सिटी है।

0: जहां कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क पानी बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुंचाई गई है धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
1: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है
0: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा
2: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है यहाँ सेमीकंडक्टर एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी
0: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है अपर्णा खून आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद
3: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है रंग बिरंगे पंडाल जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है एक रिपोर्ट
4: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं
5: PCP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल
7: धन्यवाद मुकेश ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है जनसत्ता की सुर्खी है भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है लोकसत्य का शीर्षक है दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर नवभारत टाइम्स का शीर्षक है दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान आगे भी विकास दर तेज रहेगी पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन अर्थ जगत में राहत बाजार झूमा UPI पर शुल्क दीपावली तक टला शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है आतंकियों को पनाह ना मिले पत्र ने दिया है चीन को भारत की दो टूक लद्दाख

0: हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेजिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, एआई से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट जेईई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और आइए अब चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले कार्यक्रम के लिए।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

0: नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 14 अक्टूबर का दिन है। 14 अक्टूबर 1946 को दुनिया के 25 देशों के प्रतिनिधि लंदन में मिले थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की नींव रखी थी, और इसी की याद में हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन का आखिर क्या महत्व है। आपको बता दें कि भारत में जो स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी है वो निभाता है भारतीय मानक ब्यूरो, और ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज पर ISI का निशान हो या सोने पर हॉलमार्क का निशान हो तो वो आधिकारिक रूप से अच्छा माना जाता है और उत्कृष्टता का पैमाना माना जाता है। मानक संगठन बस यही काम करते हैं, यानी बाजार में मिलने वाली चीजें सही स्टैंडर्ड की हों, अच्छी क्वालिटी की हों, देर तक टिकें और किसी का नुकसान न करें, इस बात का ध्यान रखता है मानक संगठन। आज का दिन इसी संगठन को सलाम करने का दिन है।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल।

0: संसार।
1: ISO ये एक संक्षिप्त रूप ही नहीं है बल्कि ये यूनानी शब्द ISOS से यानी आइसोस से आया है जिसका मतलब होता है बराबर। दरअसल हम जब जिंदगी में कुछ खरीदते हैं जैसे कि बिजली का सामान खरीदते हैं या बाइक पर जाने के लिए हेलमेट खरीदते हैं या खाना पकाने के लिए जो चूल्हा है वो खरीदते हैं तो हम इन चीजों पर एक निशान देखते हैं जो है ISI का निशान। ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का निशान है। जब हम सोना खरीदते हैं तो उसके ऊपर हॉलमार्क की मुहर होती है और तब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें जिस चीज का वादा किया जा रहा है वही बेची जा रही है। ISI के निशान का मतलब है भरोसा। दुकानदार और ग्राहक के बीच, कारखाने और बाजार के बीच, एक देश और दूसरे देश के बीच भरोसा, यानी यहां कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है।

जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके सस्ते होने पर उसे ना खरीदें, बल्कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जिस चीज के पैसे चुका रहे हैं क्या उस पैसे के बदले में हमें वो क्वालिटी मिल रही है। जैसे बिजली का सामान अगर आपने खराब क्वालिटी का

खरीद लिया तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई और हादसा हो जाए। इसी तरह से हेलमेट की मिसाल हमने पहले भी ली। अगर हमने कोई हेलमेट ऐसा लिया जिस पर ISI का निशान नहीं है और वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हादसे का शिकार होने पर हेलमेट आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यानी चीजों को वैसा होना चाहिए जैसा उनका होना जरूरी है, उनकी क्वालिटी भरोसेमंद होनी चाहिए। इसी को सुनिश्चित करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का निशान इसी बात की मिसाल है और गारंटी भी है। आज हम आपको इस बात की याद दिला रहे हैं कि जब आप एक उपभोक्ता के रूप में कोई चीज खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज है वारंटी और गारंटी का ध्यान रखें, उसके पूरे पैमानों को बारीकी से पढ़ें। किसी भी तरह से किसी भी चीज को खरीदने में धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना है, तभी ये जो मानक दिवस है ये कामयाब माना जाएगा और आप एक अच्छे उपभोक्ता साबित होंगे।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615, 2660617 और 2660619।

अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट से। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।
1: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
2: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
2: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
1: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
3: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तैनूं HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
7: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
8: के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
9: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
8: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: फिल्म एक था टाइगर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, संगीत दिया सुहेल सेन ने।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार का लिखा ये गीत, शारिब तोशी का संगीत।

बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अखिल सचदेव और मनशील गुजराल की आवाजों में, अखिल सचदेव का संगीत।

0: ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: परम सुंदरी इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, म्यूजिक सचिन जिगर का। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक संपन्न होता है।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज का अखबार कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
7: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
8: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
9: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
8: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
9: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
10: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
7: आज का अखबार।
1: नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम आज का अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी। इसी दुआ के साथ कि आप सभी जहां पर भी हों खुश हों स्वस्थ हों और हमारे कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हों। शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। और दोस्तों, हर दिन अपने आप में होता है खास और हर दिन की होती है अपनी कोई ना कोई विशेषता। जैसे कि आज का दिन, आपको बता दें कि आज है विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। और हर वर्ष 14 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था, उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। आइए इसी उपलक्ष्य में सुनते हैं ये संदेश।
11: 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री दीपक कुमार सिंगला का आकाशवाणी चंडीगढ़ के श्रोताओं के लिए ये संदेश।
12: नमस्कार, आज का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विश्व मानक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाना तथा मानकों के विकास में योगदान देने वाले विश्व भर के हजारों विशेषज्ञों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस किसी

0: एक खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण और विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में मानक क्यों महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में इसका उत्तर है कि मानक केवल तकनीकी दस्तावेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता और विश्वास की एक साझा भाषा, कॉमन लैंग्वेज ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड ट्रस्ट हैं, और सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानक गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए मापनीय मानदंड मेजरेबल बेंचमार्क्स निर्धारित करते हैं। प्रत्येक मानक के पीछे एक व्यापक पब्लिक पर्पस होता है, जैसे कि विद्युत उपकरणों के लिए मानक किसी परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, निर्माण सामग्री के लिए मानक हमारे बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करते हैं, ऊर्जा दक्ष उत्पादों के लिए मानक ऊर्जा की कम खपत, कम लागत और बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए मानक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य मानकों का निर्धारण करना है। मानक निर्धारण के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स का भी संचालन करता है, जैसे कि ISI मार्किंग स्कीम, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT प्रोडक्ट्स, सोने और चांदी के आभूषणों के लिए हाल मार्किंग स्कीम। यद्यपि भारतीय मानकों का अनुपालन जनरली स्वैच्छिक है, हालांकि कई ऐसे उत्पाद भी हैं जिन पर लोगों के हितों और सुरक्षा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय मानकों का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCOs क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी करके अनिवार्य किया गया है। अब तक भारत सरकार द्वारा 720 से अधिक उत्पादों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं। विश्व मानक दिवस का उद्देश्य केवल एक दिवस मनाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि सही अर्थों में हमारा उद्देश्य इस अवसर पर उद्योग जगत, उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, रेगुलेटरी बॉडीज, अकेडमिया, R&D इंस्टीट्यूशंस तथा अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना भी है। इसके माध्यम से हम गुणवत्ता की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था के निर्माण में मानकों की भूमिका के प्रति साझे दृष्टिकोण शेयर्ड विजन को और अधिक सुदृढ़ भी करना चाहते हैं। विश्व मानक दिवस 2026 मनाते हुए हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसी एक संस्था और व्यक्ति मात्र की नहीं है। इस व्यवस्था में प्रत्येक हितधारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इस विश्व मानक दिवस पर हम सभी बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण विषय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्दोहराएं और एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य करने का संकल्प लें। आप सभी को विश्व मानक दिवस 2026 की पुनर् बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: ये तो था संदेश भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री दीपक कुमार सिंगला का विश्व मानक दिवस के मौके पर।
2: और श्रोताओं, इस संदेश के बाद अब आपके एंटरटेनमेंट की बारी है, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बम भोले, भोले बम भोले।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।

0: टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2-6-6-0-6-1-5 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9 चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो याद रहे आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2-6-6-0-6-1-5 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9।
1: ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर और आप हमारे कार्यक्रम अपने फोन पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड कर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, आज नवरात्र का चौथा दिन है और हम सभी आज माँ की पूजा अर्चना में माता के रूप कुष्मांडा माँ की पूजा कर रहे हैं। मंद मंद हंसी वाली ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन को हमेशा अपनी कृपा से भरे रखें, हमारे देश को हमेशा सबसे अग्रणी रखें, हम सभी को सुख शांति प्रदान करें। जय माता दी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त

0: ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
1: इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। और श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे देते हैं जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। अपने जिले की कहानी अपनी जुबानी। हमारे देश भारत के हर जिले की अपनी खास पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है, और इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। यानी कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपनी डिजिटली जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसे बाहर लाने का आपके पास है मौका। और इस अभियान के पायलट चरण में हमारा शहर चंडीगढ़ भी शामिल है। अब आपको बता देते हैं कि आपको रजिस्टर यानी कि पंजीकरण इसका कैसे करना है। आपको डाउनलोड करना है माय वेव्स ऐप को और वहां पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो को अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। याद रखिए, इसकी अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2026। तो अगर आपके शहर, गांव या जिले में कोई ऐसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या है कहानी जिसे देश को जानना चाहिए, तो उसे कैमरे में कैद कीजिए और जेम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि हमारे भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है, जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

और श्रोताओं अब आइए आपको जानकारी देते हैं देश विदेश के बारे में, यानी कि हेडलाइंस। राष्ट्रीय समाचारों में यूपीआई लेन देन पर शुल्क का निर्णय दिवाली तक टला। लद्दाख में 28 स्थानों के नाम तय किए जाने के मुद्दे पर भारत ने चीन की आपत्ति को किया खारिज। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आधार सत्यापन हुआ अनिवार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ने कहा, भारत दूसरे देशों की समृद्धि के लिए भी करता है काम। सेंसेक्स 1100 अंक उछला, 4 माह की सबसे बड़ी एक दिनी बढ़त। पुंछ में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, AK-47 और हथगोले बरामद किए गए। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया में चल रहे 130 युद्ध, तेजी से तबाह हो रहे शहर, 1945 के बाद मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट, और हाईजैक अलर्ट पर

0: जर्मनी के दो लड़ाकू विमान पहुंचे, सुरक्षित उतरा यात्री विमान। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार। और श्रोताओ, घड़ी की सुई कह रही है कि फिलहाल आपसे इस कार्यक्रम से ले लें अनुमति। तो मैं शालिनी आपसे इस कार्यक्रम से लेती हूँ अनुमति, इसी प्रार्थना के साथ कि आपका आज का दिन हो शुभ, आप रहें हैप्पी हैप्पी।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।
0: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 10 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: जीता दो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।
2: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 10 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध हैं।
4: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। श्रीमती मुर्मू का कल राष्ट्रीय सरस मेले के उद्घाटन का कार्यक्रम है। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन में भाग लेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधन करते हुए डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। चीन के संबंध में विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर 20 लोग सवार थे जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। खेलों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले रविवार को इंदौर में खेले गए 3रे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यावोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्नोल्ड मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में अब फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश,

0: ओडिशा, विदर्भ, केरलम और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में भी बिजली गिरने के साथ बारिश की आशंका है। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से अप्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो हेलो कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़।

0: नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो चंडीगढ़। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ते हैं अपने फोन से और हमें करते हैं कॉल, और हम और आप करते हैं विचार विमर्श, बातें एक ऐसे विषय पर जो हम सभी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और हमेशा की तरह आज भी एक ऐसा ही विषय हम लेकर आए हैं जिस पर अगर हम सभी जागरूक हो जाएं या जागरूक होने का बीड़ा उठा लें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। दोस्तों, आज है विश्व मानक दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। आज के इस दिन पर हम आपको बता दें कि हमने कार्यक्रम का जो विषय रखा है वो है जागरूक बने, समझदारी से खरीदें। यानी कि जब भी हम कुछ भी खरीदारी करते हैं, हम जागरूक हों इसके प्रति कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि क्या वो क्वालिटी में अच्छा है या नहीं। जब भी हम खरीदारी करते हैं, चाहे वो हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, हम अक्सर ये देखना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उसको उसके ऊपर जो मानक है, यानी कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है, उसकी क्वालिटी की वो है या नहीं है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और इसी पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन को मनाया जाता है, ताकि जो भी हम सभी कंज्यूमर्स हैं, हम सभी को अपने अधिकारों के बारे में पता हो और हमें ये भी पता हो कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है उस पर ये स्टैंप नहीं लगी है, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है, इसका मतलब कि वो क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे जो कॉलर्स हैं वो इस पर क्या कहते हैं, और उनके कोई भी, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस है, आपके जीवन में कोई भी ऐसा अनुभव है, तो आप हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप हमें फ़ोन करते हैं और हमसे ऐसे अनुभव साझा करते हैं तो दूसरे लोग भी उससे सीखते हैं, है ना। और आपको बता देते हैं आपकी हमारे फोन नंबर्स हैं 01722660615, 266017 और 266019, यानी कि 0172 है हमारा एसटीडी कोड, और नंबर्स 2660615, 2660617 और 2660619। और कॉल्स का सिलसिला हो चुका है शुरू, देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी।
1: दीदी धन्यवाद, प्रणाम
0: जी। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: अरे बहुत दूर से फोन कर रहे हैं राम स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी दीदी
0: जी, क्या कहना चाहेंगे। आज हमारे विश्व मानक दिवस है आज, और जागरूक बने, समझदारी से करें खरीदारी इस विषय पर।
1: जी दीदी, इसमें क्या दीदी, अपना सावधानी रखिए, जैसे फोन पे भी कर

0: आते हैं उसमें सावधानी से अपना देख सुन के पैसा निकाले, पैसे उसमें डालें, खरीदारी करें, यानी उसका रेट सही देखे, अच्छा है सामान की बुरा है सामान, बेकार थोड़ी है, यानी उसमें ज्यादा रेट तो नहीं लगा रहा है, यानी पूरा सही सही रेट लगा रहा है, अच्छा साफ सुथरा सामान भी हो, ऐसा है दीदी
1: जी। और हमारे यहाँ पर देखिए, भारत में हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, तो बहुत सारी ऐसी हमें चीज़ें दिखती हैं, जैसे हम कुछ सामान खरीदने जाएं तो ISI मार्क है या नहीं, है ना, सोने की बात करते हैं तो हॉल मार्किंग की बात करते हैं, और फूड की जब बात करते हैं तो फसाई की जो स्टैंप होती है वो उस पर है कि नहीं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम अगर ख्याल रखें तो हमें जो सामान मिलेगा वो क्वालिटी में बहुत अच्छा मिलेगा, है ना।
0: क्वालिटी भी दीदी फायदेमंद भी रहेगा दीदी, हमको अच्छा मिले तो अच्छा है, पूरा सामान भी नया डेट डाल दिया है, हमको नुकसान है
1: बिल्कुल। और देखिए, अगर हम घटिया क्वालिटी का सामान लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना रामस्वरूप जी, कि हम सस्ते के चक्कर में सामान ले तो लेते हैं लेकिन फिर वो चलता भी उतने ही दिन है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, है ना जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें छत्तीसगढ़ से फोन लगाया उसके लिए, धन्यवाद। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है जी। अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम पहले कम कर लीजिएगा, थोड़ी दूरी बना लीजिए रेडियो से।
2: शालिनी बहन को यश कुमार वर्मा जी नमस्कार।
1: यश भाई को भी हमारी नमस्कार, कैसे हैं आप यश भाई?
2: अच्छे हैं, पहले से अच्छे हैं
1: जी, लग रहा है आपकी आवाज से, बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज बेहतर है पहले से जी। और यश भाई आज क्या कहना चाहेंगे?
2: आज यही कहता हूँ कि जैसे हम रोज हमेशा कहते हैं जो आपसे सुनते हैं
1: जी,
2: तो वही आगे बताते रहते हैं
1: जी जी,
2: जैसे हम
1: जी।
2: जो माल लेते हैं सही समझ सोच के लीजिए
1: जी, बिल्कुल
2: पढ़े समझ पढ़ाई का कभी, तो
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यश भाई की कॉल न जाने क्यों कट जा रही है आजकल, और बिल्कुल सही कह रहे थे ये कि जब भी सामान लें तो सोच समझ कर लें। और देखिए आजकल त्योहारी सीजन है ना, अब हम सभी को शॉपिंग करनी रहती है कि हमें अभी परिवार के साथ जाना है, और सब एक दूसरे को त्योहार पर जो है वो कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, और उपहार देने जब हम बाजार में निकलते हैं तो हमें लगता है कि जो छूट जिस प्रोडक्ट पर मिल रही है, यानी कि सेल शब्द जब हमें सामने दिखता है तो हम बिना सोचे समझे बहुत बार ऐसा होता है कि जो सामान आए बस फटाफट से हम उसे उठा लेते हैं, खरीद कर काम खत्म कर दिया, और उसका स्टैंडर्डाइजेशन या उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी जो हमने मानक है वो हमने देखे ही नहीं। तो जब भी हम कुछ सामान लें, अगर हम सभी ये आदत बना लें कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उस पर हम स्टैम्प्स देखें कि जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हैं स्टैम्प्स वो उस पर हैं या नहीं है, तो हम अच्छा सामान ही खरीदेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगले कॉलर क्या बोलते हैं। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं। हेलो
3: चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ जी, अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिएगा, थोड़ी दूरी बना लीजिए रेडियो से।
3: जी मैडम, आवाज
1: आपकी आवाज पहले भी आ रही थी, आपके आने से पहले ही आपकी जो एको थी वो आ रही थी जी। कहिए, स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं।
3: अब ठीक है?
1: हाँ जी, अब ठीक है, अपना नाम बताइए।
3: आपको नमस्कार पहले तो मेरी तरफ से।
1: आपको भी हमारी नमस्कार जी।
3: मैडम मैं शिमला संकट मोचन से प्रदीप बोल रहा हूँ
1: जी। प्रदीप जी कैसे हैं?
3: बिल्कुल ठीक है मैम, आप कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात हो जाती है तो और अच्छे हो जाते हैं प्रदीप जी।
3: अरे मैडम बस हमारा भी रेडियो के साथ कुछ ऐसा वो है ना
1: जी,
3: नाता ऐसा है कि बस इसके बगैर रह ही नहीं सकते है।
1: बस हमारा और आपका ऐसा ही नाता है प्रदीप जी, आपके बगैर हम नहीं है और हमारे बगैर आप लोग उदास हो जाते हैं ना।
3: ये एक तरह की लाइफ लाइन है ये मैडम हमारे लिए ना।
1: जी बिल्कुल।
3: तो मैडम मैं आज के विषय में तो ये कहूंगा कि जब भी हम सामान बाजार से लेते हैं ना तो उसकी प्रमाणिकता जांच लेनी चाहिए
1: जी।
3: किसी भी सामान को मैम खरीदने से पहले ISI मार्क देखना चाहिए, क्योंकि बाजार में आजकल मैडम नकली सामान बहुत बिक रहा है जो देखने में तो बिल्कुल असली जैसा दिखता है, और जांच पड़ताल के दौरान ही सामान को लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए
1: जी जी।
3: और लोग मैडम ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ना गलत सामान बेचते हैं और सस्ता सामान बेचते हैं
1: जी बिल्कुल,
3: तो इसकी हमें पूरी जांच पड़ताल करने के उपरांत ही हर एक कोई भी चीज है चाहे उसे हमें लेना चाहिए मैम
1: जी, और अगर हम ऐसा करते हैं तो समझदारी करते हैं, हो सकता है हमें चार पैसे ज्यादा देने पड़े, है ना, थोड़ी जेब ढीली करनी पड़े, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो हमें फायदा ही मिलता है ना, क्योंकि अगर अच्छा सामान

0: में ऐसा लगता ना कि बहुत महंगा है वो है
1: जी.
0: लेकिन वो जो है मतलब बाद में हमें पता चलता है कि चलो बेशक ज्यादा पैसे दे दिए लेकिन सामान जो है हमने सही लिया है
1: जी. और जरूरी नहीं है कि हमेशा वो महंगा ही हो, कई बार हमें अच्छी डील्स भी मिल जाती है ना प्रदीप जी.
0: हाँ, हाँ, हाँ, ऐसा भी हो जाता है.
1: हाँ, जैसे अभी त्योहार का सीजन है तो हमें बहुत सारी डील्स मिलती है, लेकिन डील्स में भी हमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, थोड़ा पेशेंस रखकर हमें चलना है और देखना है कि जो भी,
0: क्योंकि आजकल जैसे ये मिठाइयां वगैरह या ये है ना, इसमें काफी मिलावट वगैरह आती है.
1: जी जी जी बिल्कुल.
0: त्योहारों के मौसम में ना, तो उसे तो हमें मतलब परख कर ही लेना चाहिए मैम.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है. तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कोई सामान बाजार से ले तो उसका क्वालिटी और उसका मार्क अच्छा वो होना चाहिए मैम.
1: जी
0: उसमें
1: बिल्कुल. प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और इसके बारे में बात की, धन्यवाद.
0: अरे मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, है ना. थैंक यू मैम.
1: धन्यवाद.
0: थैंक यू.

श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और

2-6-6-0-6-1-9 चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2-6-6-0-6-1-5, 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो चंडीगढ़। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जागरूक बने समझदारी से खरीदें इस विषय पर, और देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
5: हेलो नमस्कार, हेलो चंडीगढ़ जी, मैं गाँव मोरनी हिल से बोल रहा हूँ, अरविंद कुमार।
4: अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत, आप कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे आज?
5: मैं अच्छा हूँ मैडम जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमें कुछ ऐसी सामान वगैरह खरीदना पड़ता है थोड़ा क्वालिटी का देख के लें।
4: जी तो आप,
5: हाँ जी
4: जी अरविंद जी, आप भी ध्यान रखते हैं जब सामान खरीदते हैं कहीं से?
5: जी मैडम, हम भी ध्यान रखते हैं, हमारा थोड़ा इसके इस विषय पे ऐसा है कि चलो कपड़े लत्ते में तो हमारा चल जाता है कि सस्ता पा लिया, कैसे पा लिया, लेकिन खाने के लिए और घर में इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी से लेंगे तो सही रहेगा।
4: जी अभी कपड़ों के लिए उतना ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन आई भी नहीं है वैसे अरविंद जी, तो मुख्यतः खाना जो हमारा होता है आहार है ना,
5: खाने के लिए और घर में जो इंस्ट्रूमेंट है वायरिंग वगैरह घर की वो भी चीज है उसके लिए आई ऐसा आई मार्क देख के खरीदना चाहिए।
4: जी जी जी बिल्कुल, और जैसे हम सोना खरीदते हैं तो हॉलमार्क देखकर खरीदना चाहिए, घर की चीजें हैं तो उन्हें ISI और खाने का जो है वो फसाई का जो हमारा स्टैंप रहता है ना, ये सब चीजें देखकर अगर हम खरीदेंगे तो हमारा ही फायदा है।
5: जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारा ही फायदा रहेगा और हमारे नुकसान होने से भी बचेगा मैडम, थोड़ा लॉस होने से भी बचेगा अगर ऐसा रहेगा।
4: जी सेहत भी अच्छी रहेगी अगर हम अच्छा अगर स्टैंडर्डाइज वाला खाना खाएंगे है ना, अच्छे स्टैंडर्ड का खाना खाएंगे सेहत अच्छी रहेगी, अच्छा सोना खरीदेंगे तो घाटे में नहीं रहेंगे है ना, और सामान अगर अच्छा खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा समय चलता भी है,
5: ज्यादा समय चलेगा
4: है ना, और अच्छा भी लगता है खुद को कि हम अच्छी चीज जो है खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: कपड़े लगते हैं पहनने के काम में चल जाता है थोड़ा सस्ता महंगा, उसमें नहीं कुछ भी
4: जी, उसमें हर किसी की अपनी सामर्थ्य है जैसा कोई खरीदना चाहे।
5: जी
4: धन्यवाद अरविंद जी कॉल के लिए। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो
6: हेलो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग।
4: वेरी गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताएं।
6: मैं सूरज बात कर रहा हूँ, तहसील चौक डिस्ट्रिक्ट शिमला SP से।
4: जी सूरज जी कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है, आप सुनाओ।
4: हम एकदम बढ़िया सूरज जी, और आपसे बात हो रही है तो और अच्छे हो गए, शिमला से आप कॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छा आजकल मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं शिमला में
6: तो बहुत बढ़िया।
4: जी जी जी, तो सूरज जी आज क्या कहना चाहेंगे आप जागरूक? और उनकी कॉल कट गई है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे आज हम मना रहे हैं सूरज जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं दोबारा से कॉल लगा सकते हैं। जागरूक बने समझदारी से खरीदें, ये है हमारा आज का विषय। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत।
7: नमस्कार मैडम
4: जी। नमस्कार, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए।
7: मैडम मैं बुराया डिस्ट्रिक्ट जिरंदर से बोल रहा हूँ, रविंदर कुमार।
4: जी रविंदर जी कैसे हैं?
7: बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत अच्छे हैं।
4: जी रविंदर जी क्या कहना चाहते हैं आज?
7: देखो जी, कोई भी चीज है आप खरीदने जाते हो
4: जी,
7: तो जैसे हम कड़ाही जो टनका के देखते हैं ना, ऐसे हर एक चीज को मतलब देख परख के लेना चाहिए। तो मतलब आजकल बाजार में नकल बहुत आ रही है
4: जी,
7: तो इसका भी हमको सावधान रहना चाहिए कि नकली चीजें बहुत मिल रही हैं।
4: बिल्कुल,
7: जो भी चीज खरीदनी है आपने, जो मोहर लगी सरकारी उस पे वो ही खरीदे, बाकी जो खुली पैकिंग है या बगैर

0: कोई मार्केट के हैं वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए, उसका पता नहीं होता कैसी है कैसी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब भी आप कोई भी सामान खरीदने जाए तो डेट बेट और रेट ये तीन चीजों तो मतलब पूरा ध्यान रखें।
1: तीन चीजें दोबारा से बोलिएगा, डेट वेट और रेट।
0: हाँ जी हाँ जी, तीन चीजें हैं।
1: क्या बात है,
0: मतलब इनका मैं ध्यान बेशक रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ। कोई भी चीज नहीं खरीद जाता हूँ, मॉल में भी जाते हैं तो दुकानदारों से भी खरीदते हैं, लेकिन हर एक चीज का तीन चीजें हैं ना जो इसका तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं, क्योंकि दुकानदार कई बार ज्यादा सामान लेते हैं ना तो वो रेट में भी बीच में गड़बड़ कर देते हैं।
1: जी जी।
0: तो चलो मॉल में तो नहीं होता, कंप्यूटराइज होता है ना, तो आम जो दुकानदार है वो ऐसे कर जाते हैं।
1: जी।
0: तो मतलब कोई भी चीज आप खरीदते समय उसकी क्वालिटी जरूर देखें, और खाने वाली चीजों के साथ जो है ना कभी समझौता न करें।
1: बिल्कुल।
0: कि हम हल्की ले जाएं जब ऐसी ले जाएं। तो एक कॉलर ने पहले भी कहा जैसे कि कपड़ा जैसे मर्जी पहन लो आप,
1: जी
0: बाकी चीजों पे समझौता कर लो चाहे, लेकिन खाने वाली चीजों पे कोई समझौता नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि सीधे सीधे हमारी सेहत को वो जो है वो सीधे सीधे नुकसान है अगर हम खराब खाना खाते हैं।
0: बिल्कुल, अगर हमने ऐसी चीजें खरीद ली और बाद में डॉक्टरों को उससे भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे हमको।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए सेहत का ध्यान रखें, और कोई भी चीज खरीदते समय अपना दिमाग जो है बिल्कुल ऊपर रखें, और कोई भी चीज खरीदने से पहले आप पूरी छानबीन करके खरीदें, और जो भी चीज खरीदी है सब्जियां वगैरह भी जो भी है चीज वो ऑर्गेनिक चीजें भी आजकल बहुत आ रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है, बेशक महंगी है लेकिन वो चीजें बहुत बढ़िया है, ऑर्गेनिक लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं आज।
1: जी, और रविंदर जी
0: कोई भी मजाक नहीं कर सकता
1: ऑर्गेनिक लोग। ऑर्गेनिक की जब बात हो रही है ना रविंदर जी, इस पर तो हम बहुत देर बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है, अगर हम चाहें तो अपने घर में भी आजकल बहुत सारे तरीके हैं, छोटे छोटे माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं या अपने घर में ही सब्जियां भी उगा सकते हैं। तो हम अपने आप घर में छोटी मोटी जो खेती है वो करके ऑर्गेनिक सब्जियां घर में भी उगा सकते हैं, अगर महंगी नहीं अफोर्ड कर सकते, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो लोग उगा रहे हैं मैडम,
1: जी जी जी
0: ना लगा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: सब्जी घर खाने के जितनी लग जाती है।
1: बिल्कुल, और अगर हमारे पास जगह नहीं है तो ग्रो बैग्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ये एक बहुत अच्छी बात है रविंदर जी। और आपका मंत्र हमें बड़ा पसंद आया, आपने बोला डेट वेट और रेट, और साथ ही इसके अगर हम स्टैंप जोड़ देंगे तो बहुत सोने पे सुहागा बात हो जाएगी। डेट वेट रेट और स्टैंप, ये चार चीजें देख के खरीदारी करेंगे, है ना।
0: बिल्कुल
1: जी, शुक्रिया रविंदर जी, बहुत अच्छी बात आपने की, और आपका मंत्र हम भी याद रखेंगे। धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।
1: जी जी,
0: थैंक यू।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615 2660617 और 2660619।
2: इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ और यह है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। श्रोताओं, आज विश्व मानक दिवस है और आज हमने कार्यक्रम का जो विषय है वो चुना है जागरूक बने समझदारी से खरीदें। आप हमें फोन कर सकते हैं 2660615 2660617 और 2660619 पर, और देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कहां से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं।

0: जी यश कुमार जी
1: जी
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: बस वही बातें मेरे आ जाती हैं, फिर कुछ दोस्त घर जाते हैं
0: जी
1: तो
0: हेलो जी जागरूक बने समझदारी से खरीदें यश भाई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी हाँ जी बिल्कुल समझदारी से खरीदते भी हैं हम
0: जी,
1: और मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ये कई बार लोग बताते हैं ना कि हम फंस गए, तो मैंने फंस के फंसने तो ज्यादा समझदार होती है ना
0: जी,
1: हम तो सभी ये बात सुन के ना उसके अमल करते हैं उनकी बातों पर
0: बिल्कुल,
1: तो उसकी बातों पर आगे नहीं
0: और फंसेंगे नहीं ना यश भाई, अगर हम पहले ही ध्यान से कोई चीज जब खरीदेंगे उससे पहले ही ध्यान रखें है ना, तो हम फंसेंगे नहीं है ना, जल्दबाजी ना करें, और कई बार हम लालच में भी कोई भी चीज उठाकर ले लेते हैं, तो ऐसा जब भी कुछ खरीदते हैं उससे थोड़ा सा रुक कर सोच समझ कर खरीदेंगे तो हम फंसेंगे भी नहीं।
1: और जैसे आपकी लाइन लाइन लाइन आती है
0: जी,
1: तो लाइनों में बार बार हम सोचते हैं कि लाइन में क्या और आपके शब्दों में भी पूरे अंदर घुस जाते हैं हमारे।
0: जी जी बिल्कुल जी जी यश भाई शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। हेलो चंडीगढ़ का, और यश भाई की कॉल तो लग गई लेकिन एक और कॉल जो है आते आते चली गई, और यही बात हम कर रहे हैं कि जब भी कुछ सामान हम खरीदते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा रुक कर हम ये चेक कर लें कि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सही हैं कि नहीं, कि स्टैंडर्ड्स जो हमारे मानक तय किए गए हैं उनके अनुसार हैं कि नहीं, उनको देखकर अगर थोड़ा सा रुककर हम समझदारी से खरीदारी करेंगे तो ये हमारे ही हित में रहेगा, है ना। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना शुभ नाम बताएं और कौन सी जगह से बात कर रहे हैं
2: जी। मैडम
0: जी नमस्कार,
2: मैं सतपाल सिंह चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ।
0: बिंद्रा जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया मैडम
0: जी,
2: सब कुछ ठीक ठाक
0: जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक ठाक ही रहना चाहिए बिंद्रा जी। और क्या कहना चाहते हैं आज जागरूक बने समझदारी से खरीदें इस विषय पर?
2: मैडम आज के दिन तो मैं युवाओं को एक सलाह देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
2: ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में दो तरह के, एक तो एड्स आती है और नीचे एक शॉप नाउ का बटन होता है, तो उस एड के नीचे ही हम क्लिक कर देते हैं और उस प्रोडक्ट की जानकारी में मिलती नहीं। एड बहुत बढ़िया बनाते हैं उस
0: जी,
2: प्रेजेंटेशन उनकी बहुत बढ़िया होती है,
0: बिल्कुल आई कैची होती है ना, इसीलिए बनाई जाती है बिंद्रा जी, ताकि हम आकर्षित हो जाएं।
2: हाँ, और जब हम ऑर्डर देके, मैं भी भुक्तभोगी रहा हूँ, मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे,
0: अच्छा,
2: ऐड के ऊपर क्लिक करके, तो वो बच्चों के कपड़े भेज दिए गए मुझे।
0: ओ अच्छा,
2: तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो मशहूर कंपनियां हैं उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, उस प्लेटफॉर्म में जाएं और वहां से शॉपिंग करें तो आप सेफ रहेंगे, आपको सही सामान मिलेगा, क्योंकि वहाँ 10 दिन का टाइम होता है
0: जी, रिटर्न पीरियड रहता है,
2: आपको सामान पसंद नहीं आया तो वापस भी कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही बिंद्रा जी, देखिए ऑनलाइन जो रहता है उसमें ये चीज़ रिटर्न पॉलिसी आजकल जो अच्छी से वेबसाइट्स हैं वहाँ पर अक्सर रहती ही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है, तो जब भी कुछ खरीदें हमेशा रिटर्न पॉलिसी, चाहे आप कुछ भी खरीद रहे हैं उसकी देखनी चाहिए, है ना।
2: और एक मैडम आजकल EMI का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है
0: जी,
2: हम EMI में कोई महंगी चीज खरीद लेते हैं, जब वो खरीदने जाते हैं तो हमें पॉलिसी ठीक तरह से समझाई नहीं जाती है
0: जी,
2: रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं और प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं कि 6 महीने की EMI, 9 महीने की या 1 साल की
0: जी,
2: जब हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट लग के आ जाता है, तो इन चीजों पर ध्यान रखें। युवा जो है आजकल क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो इन बातों को ठीक से समझे, उसके बाद ही अच्छी चीज और ड्यूरेबल चीज परचेज करें
0: जी। बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आपने बिंद्रा जी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग युवा तो करते ही हैं, साथ ही साथ चलन जो बढ़ गया है, घर घर में आजकल ऑनलाइन सामान आता है, तो सभी छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे घर में अच्छा सामान और हो सकता है कि कम

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
4: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
5: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर और आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। कार्यक्रम में आज का विषय है जागरूक बने, समझदारी से खरीदें। और श्रोताओं, हमें बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और सभी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हमेशा जो स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि ख़रीदारी के मानक हैं उनका ख्याल रखकर अगर हम ख़रीदारी करेंगे तो हम अच्छा सामान ही घर लेकर आएंगे। देखते हैं अगले जो कॉलर हैं वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। और ये कॉल आते आते कट गई है। और आप जब शॉपिंग करते हैं तो क्या आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर सामान को घुमाकर देखते हैं उसके पीछे वो स्टैंप लगी हुई है, चाहे वो ISI की हो, चाहे फिर वो अगर खाने की बात करें तो FSSAI की हो, या फिर सोना खरीदते समय हॉलमार्क की हो। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है ये बताइए।
6: हेलो दीदी, नमस्ते
5: जी। नमस्कार।
6: नमस्कार, शिवा तिवारी, सेक्टर 9, पंचकूला, वापसी गेट होटल से।
5: शिवा भैया कैसे हैं आप?
6: बस सब अच्छा है दीदी, आपके पास फोन बैट पर लगाता रहता हूँ, आपका बहुत बहुत पुराना मैं श्रोता हूँ।
5: जी बिल्कुल, पुराने श्रोता हैं और नियमित कॉल भी करते हैं। शिवा भाई क्या कहना चाहेंगे आज?
6: आज का ये है कि जो ये दीदी कौन सा विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट गिरा तो मैं
5: जी जी देखिए आज विश्व मानक दिवस है शिवा भाई, तो बात कर रहे हैं जागरूक अच्छा? बने और समझदारी से सामान खरीदें।
6: अच्छा जी। हाँ तो दीदी आज कल तो देखो ऐसा है कि कोई भी सामान लो तो उसमें से महत्व चिपक लगा कि असली है, लेकिन वो असली अपना आता ही नहीं है, सब अच्छा नकली ही आता, क्योंकि खाली उसका गुहार भी देखो लेकिन नकली सब कुछ सवाल तुम्हें हो गया है।
5: बिल्कुल
6: हाँ, जैसा पहले था वैसा तुम्हें चीज अब तुम्हें आता ही नहीं कोई भी।
5: क्योंकि जैसे पहले सामान रहता था कि असली सामान आएगा, आजकल असली आता है साथ ही साथ उसकी नकल भी बाजार में उतार दी जाती है।
6: बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ उनका नकल सेम वैसे रहता है, खाली तुम्हें 19-20 के फर्क है। देखो तो बिल्कुल बिल्कुल
5: हूबहू उसके जैसा होता है, उसकी जिसे कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी, बिल्कुल आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेगा। और सिर्फ हमारे पास एक ही जो है वो मापक वही है कि हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अगर हम देखते हैं कि इस पर स्टैंपिंग है या नहीं है, उसी से हम पहचान सकते हैं।
6: अब दीदी देखो नकली नोट भी ऐसे देखने में लगता है असली, लेकिन उसमें एक ही चीज पर कमी रहता है, वही से आदमी तो जान जाते हैं ना, तो वही वैसा तुम्हें थोड़ा हल्का भी होता नकली और देखने में सेम तो लगता कि वही असली है
5: जी,
6: वैसे में चीज भी आता है
5: जी बिल्कुल। और अगर हम यही सब चीजें ध्यान में रखेंगे शिवा भाई, तो हम अच्छा सामान ही अपने घर लेकर आएंगे, है ना?
6: पैसा भी लगाओ दीदी, सवाल भी ना अच्छा मिले और वो अच्छा का पैसा लेगा और सवाल देगा तुम्हें नकली, तो फिर उसमें आपने ही तुम्हें घाटा है।
5: जी बिल्कुल। और चाहे वो हम खुद सामान अपने लिए जो है प्रयोग करते हैं घर पर, या फिर हम किसी को उपहार देते हैं, जैसे अभी त्योहार आएंगे दीपावली पर, है ना? दीपावली पर सब एक दूसरे को त्योहार देते हैं, तो त्योहार में जो भी उपहार दें वो अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो लेने वाले को भी अच्छा लगता है और देने वाले को भी अच्छा लगता है,
6: दोनों आदमी को अच्छा लगता है। तो नकली दोगे तो फिर एक तो चीज भी तो ऊपर से बनना भी की याद ही आज वो सस्ता और खराब चीज दिया।
5: बिल्कुल, देखिए पैसा तो हम खर्च करेंगे ही, चाहे वो नकली हो असली हो, तो असली लेकर थोड़ा सा अगर हम अधिक पैसा दे देंगे कम से कम हमें ये तसल्ली तो रहेगी कि हमने अच्छी चीज खरीदी है।
6: चीज़ तो दिया
5: जी, बिल्कुल
6: तो
5: बिल्कुल
6: सही बात है दीदी। नहीं तो आदमी का वो है कि देख के तुम्हें सामान बहुत सही वो लेना चाहिए और उसके पैसा भी तुम्हें लगावे लेकिन जो चीज तुम्हें अच्छा ही नहीं है
5: जी
6: सभी लोग का तुम्हें यही तुम्हें देखना चाहिए
5: जी। शुक्रिया शिवा भाई आपने हमसे बात की और इतना अच्छा संदेश दिया।

0: धन्यवाद
1: धीरे धीरे आप तो गांव से भी आपको तो करते रहते थे
0: जी
1: में ना गांव में
0: जी जी
1: आपको फोन
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपने फिर से एक बार वापस आकर आते ही हमें कॉल लगा दिया शिवा भाई कॉल करते रहिएगा
1: ठीक है दीदी नमस्ते ओके
0: धन्यवाद
1: ठीक है रखो दीदी
2: श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2-6-6-0-6-1-5 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9 चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172 तो याद रहे आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2-6-6-0-6-1-5 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हैलो चंडीगढ़ और ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, आज है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस और हर वर्ष 14 अक्टूबर का दिन जो है इस दिन के रूप में मनाया जाता है और मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने पहली बार मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए बैठक की थी और इसके बाद वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि ISO की स्थापना हुई। आधिकारिक तौर पर पहला विश्व मानक दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था। मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी IEC और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU जैसी वैश्विक संस्थाओं द्वारा यह दिन मनाया जाता है। और अगर हम बात करें अपने देश की तो हमारे देश में इसका नेतृत्व भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS करता है। और एक बेहतर दुनिया हो और दुनिया में सभी को एक शेयर्ड विजन के साथ हम सभी चलें एक बेटर वर्ल्ड के लिए, इसी के साथ इस दिन को मनाया जाता है और हम सभी जागरूक हों इसके प्रति कि हम जो भी खरीद रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का सामान हमेशा हमारे पास आए। जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें ये भी अधिकार है कि जो हम पाते हैं वो भी उतना ही अच्छा हो।
1: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
2: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
3: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
4: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
3: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, UP और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
5: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: जग घूमे थारे जैसा ना कोई,
4: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
3: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
4: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: और श्रोताओं, अब इसी के साथ आज का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम यहीं पर होता है संपन्न। जाते जाते आपको बता दें कि आज हमने जागरूक बने, समझदारी से खरीदें इस विषय पर की बातचीत और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत। अब शालिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क

0: लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
1: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
2: भाई हर दिन 6 to 7 crore व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स ते फ्यूल भरवांदे ने। देश विच लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स अते 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल तो E20 ते चल रहे ने।
3: सब तां वधिया चल रहे हैं।
2: ओही तां, अगर E20 तो वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम हुंदी तां हुणे तक सामने आउंदी, पर अजिहा तां कुछ होया नहीं। इसलिए रूमर्स ते नहीं, फैक्ट्स ते भरोसा करो।
4: भारत सरकार दे उपक्रम तेल विपणन कंपनियां वल्लों जारी।
5: आकाशवाणी चंडीगढ़ से अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
6: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में।
7: पेश होता हूं, क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर ये सोचा है कि काश आपकी जिंदगी भी उनके जैसी होती? क्या कभी आपके किसी दोस्त ने ऐसे कपड़े पहने हो जिसको देखकर आपने कहा हो, काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते? शायद आपकी कक्षा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसके काम के लिए हमेशा प्रशंसा और पहचान मिलती है और आपको लगता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं है। क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन की सफलताओं को देखकर आप निराश हो जाते हैं और सोचते हैं, मैं अपने जीवन में कब सफलताओं को प्राप्त करूंगा, जबकि आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं। यही तुलना है और दूसरों से अपनी तुलना करना एक बहुत ही सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। तुलना करना हमारे जीवन में बहुत सामान्य बात है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। हम केवल ये नहीं देखते कि दूसरे लोग हमसे आगे हैं या नहीं, बल्कि कभी कभी अपने वर्तमान जीवन की तुलना अपनी पिछली उपलब्धियों से करने लग जाते हैं। लेकिन लगातार अपनी तुलना दूसरों से करने का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली पर पड़ सकता है। हम उन लोगों की नकल करने लग जाते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, उनकी जीवन शैली को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर और जो वस्तुएं उनके पास होती है, कई बार उन्हें देखकर भी हम प्रभावित हो जाते हैं और अपने जीवन में हम ऐसे बदलाव लाने लग जाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए सही नहीं होते। ये कहना आसान है कि दूसरों से तुलना करना बंद कर दो, लेकिन वास्तव में ऐसा करना कठिन हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम इसी विषय को लेकर है। यदि आप भी दूसरों के जीवन शैली, उनकी उपलब्धियों या फिर उनके धन समृद्धि या सफलता को देखकर प्रभावित हो रहे हो और उनसे अपनी तुलना करने लग गए हो, तो ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। प्रिय श्रोताओ नमस्कार, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ।
8: एक बड़े शहर में रोहन नाम का एक युवा रहता था। उसने हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और एक अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता था। जब भी वह सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था तो अपने दोस्त की नई कार, महंगी वेकेशन या प्रमोशन की तस्वीरें देखकर परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि उसके दोस्त जिंदगी की रेस में उसे बहुत आगे निकल गए हैं। इस तुलना के कारण वह हर समय तनाव, हीन भावना और मानसिक दबाव महसूस करता था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक दिन परेशान होकर रोहन अपने शहर के एक शांत बगीचे में गया। वहाँ एक माली पौधों की देखभाल कर रहे थे। रोहन उस माली के पास जाकर बैठ गया।
9: अरे रोहन बेटा, तुम्हें क्या हुआ, इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो?
10: काका, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं, कोई नया बिजनेस कर रहा है तो कोई विदेश घूम रहा है। मुझे लगता है कि मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ।
9: बेटा रोहन, मेरे साथ चलो, मैं बगीचे में तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो बेटा, एक बहुत ऊंचा मजबूत बांस का पेड़ और उसी के साथ एक छोटा सा खूबसूरत सागौन का पेड़।
10: काका, लेकिन इन दोनों पेड़ों को दिखाकर आप क्या कहना चाहते हो?
9: बेटा रोहन, जब मैंने इन दोनों पौधों के बीज बोए थे,

0: तो मैं दोनों की बराबर देखभाल करता था, दोनों को बराबर पानी और धूप देता था। पहले साल में सागौन का पौधा बहुत जल्दी बढ़ गया और उसने अपने सारे पत्तों से जमीन को खूबसूरत बना दिया, लेकिन बांस का बीज वैसा का वैसा ही रहा, उसमें एक छोटा सा अंकुर भी नहीं फूटा।
1: लेकिन काका, ये बांस का पेड़ तो बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है।
0: तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, जब मैंने दोनों पौधे लगाए थे, दूसरे और तीसरे साल भी सागौन का पौधा और घना होता गया, लेकिन बांस के बीज में कोई हलचल नहीं हुई। अगर मैं चाहता तो बांस के बीज को बेकार समझकर उखाड़ फेंकता और उसकी तुलना सागौन के पौधे से करके हार मान लेता, लेकिन मुझे भरोसा था।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
0: बेटा रोहन, क्या तुम्हें पता है कि बांस का पौधा 5 साल तक क्या कर रहा था? वह जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो इतना ऊंचा खड़ा हो जाए तो तेज हवाओं के झोंकों को झेल सके। अगर वह शुरुआत में ही अपनी जड़ें मजबूत नहीं करता तो इतना ऊंचा कभी नहीं बढ़ सकता था। बेटा रोहन, यही बात हमारे युवाओं और तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो भूल जाते हो कि हर किसी की जिंदगी का सफर, संघर्ष और समय अलग अलग होता है। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त सागौन के पेड़ की तरह जल्दी बढ़ रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। तुम इस समय अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, तुम अनुभव हासिल कर रहे हो, सीख रहे हो और खुद को तैयार भी कर रहे हो।
1: तो काका, इसका मतलब मैं गलत था?
0: बेटा रोहन, युवा अवस्था में अक्सर जवान ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा तुम कर रहे हो। याद रखो बेटा, बांस का पेड़ सागौन के पेड़ को छोटा नहीं समझता और ना ही उससे जलता है। दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती और अपनी अपनी जगह है, इसलिए दूसरों से रेस लगाना छोड़ो। तुम्हारी असली प्रतियोगिता सिर्फ तुम्हारे बीते हुए कल से है। खुद को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दो, ताकि तुम अपने जीवन में सफल हो सको और संतुष्ट भी हो सको।
1: मालिक काका, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करूंगा और ना ही अपने आप को कमजोर समझूंगा।
2: मालिक की बातें सुनकर रोहन की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि सोशल मीडिया की चमक दमक देखकर खुद को कम आंकना कितनी बड़ी भूल थी। उसने तय किया कि वो अब दूसरे की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी काबिलियत और अपनी जड़ों को मजबूत करने पर पूरा ध्यान लगाएगा।
0: प्रिय श्रोताओं, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं होती, दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। इसलिए अपने जीवन में हम जैसे भी हैं, हमें वैसा ही अपने आप को स्वीकार करना चाहिए और अपने मूल्य को समझना चाहिए। हर व्यक्ति अलग है, हर किसी की क्षमता अलग है, हर किसी की अपनी यात्रा है। हमें दूसरों जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी खूबियों को पहचानना और उनका विकास करना चाहिए। हम सभी अलग अलग तरीकों से विशेष हैं, इसलिए अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। कई लोग अपने जीवन में कभी ना कभी दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरे उनसे अधिक सफल हैं, अधिक सुंदर हैं, अधिक प्रतिभाशाली हैं, या दूसरों के पास ऐसी चीजें हैं जो उनके पास नहीं है। कभी कभी लोग अपनी तुलना अपने ही पुराने जीवन, उपलब्धियों या असफलताओं से करने लग जाते हैं। ऐसी तुलना हमें निराश कर सकती है और हमें अपने बारे में कम महसूस करा सकती है। लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह बदलना चाहता है, और हर व्यक्ति के पास ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरों के पास नहीं होती। हम सभी की परिस्थितियां, क्षमताएं, अनुभव और जीवन की यात्रा अलग अलग होती है। यही हमारी समानता भी है। हम सभी अलग हैं, इसलिए जबकि हमें किसी और जैसा बनने की इच्छा हो तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी और की जगह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें सबसे अलग बनाया है। हमें अपने जीवन को स्वीकार करना है, अपनी खूबियों को पहचानना है और अपनी यात्रा में आगे बढ़ना सीखना है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश करने की बजाय अपने वास्तविक स्वरूप में बेहतर बनने की कोशिश।

पेश होता हो, ईश्वर चाहते तो अपनी सृष्टि में हर चीज का केवल एक ही प्रकार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विविधता ही वह चीज है जो सृष्टि को सुंदर और व्यवस्थित बनाती है। विविधता जीवन को रोचक खूबसूरत बनाती है। जब बात मनुष्य की आती है तो निश्चित रूप से ईश्वर केवल एक ही प्रकार के व्यक्ति नहीं बनाते हैं। यदि हम सभी अच्छे खिलाड़ी होते तो गाने का काम कौन करता? यदि हम सभी अच्छा चित्र बनाने वाले होते तो बीमारियों का इलाज कौन करता? प्रिय श्रोताओं, हर किसी के पास अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार से उनके जीवन में कार्य करने की क्षमता होती है। सभी के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। प्रिय श्रोताओं, जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अक्सर उनकी खूबियों और उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं और अपनी उपलब्धियों को भूल जाते हैं। दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी कमियों पर ध्यान मत लगाएं, अपनी खूबियों और उपलब्धियों को भी पहचानिए। अपने साथ उसी प्यार, धैर्य और प्रोत्साहन से बात कीजिए जिस तरह आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं। आमतौर पर जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और कमियों की तुलना दूसरों की उन खूबियों से करते हैं जिन्हें हम देखते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर। हम अपने सामान्य और कभी कभी उबाऊ जीवन की तुलना अपने दोस्तों के शानदार दिखाई देने वाले जीवन से करते हैं। यहाँ तक कि हम सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की भी तुलना अपने से करने लग जाते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। उनके लाइफस्टाइल, उनके रहन सहन, उनके कपड़े या फिर उनके अन्य चीजों को देखकर हम अपनी तुलना उनसे करने लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं भी इतना सामाजिक क्यों नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा खाना क्यों नहीं खाता, मैं भी इस दुनिया की यात्रा को क्यों नहीं कर रहा, मैं भी अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता, मैं भी इस प्रकार का लाइफस्टाइल अपने जीवन में क्यों नहीं जी रहा, ऐसा क्यों लगता है कि बाकी सभी लोग मुझसे ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपने जीवन के सिर्फ अच्छे और खुशहाल पल दिखाते हैं। स्टीव फोर्टिक्स नाम के इस व्यक्ति ने कहा है, हम अपनी जिंदगी के पर्दे के पीछे के हिस्से की तुलना दूसरों की जिंदगी के सबसे अच्छे और दिखाए गए हिस्सों से करते हैं। इसी कारण हम अपने बारे में असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। जब आप यह सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह तुलना वास्तव में उचित नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करते हैं वे आमतौर पर यह तस्वीर नहीं डालेंगे कि वे घर पर बैठे हुए बोर हो रहे हैं और अपने फोन को देख रहे हैं, जैसा कि आप भी कभी कभी कर रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि हमें अक्सर दूसरों के पूरे जीवन की इच्छा नहीं होती, हम केवल उनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनके जीवन को करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से गुजर रहा है, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहा है। जैक कैनफाइल ने कहा, मैं सामान्य यह पाता हूं कि दूसरों से तुलना करना दुखी होने का सबसे बड़ा रास्ता है। इसलिए दोस्तों, आपको किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपको अद्भुत और प्रतिभाशाली बनाया है। आपको भी अपने जीवन में उन प्रतिभाओं को जानने की जरूरत है और आप अपने जीवन को देखकर आगे बढ़ें, अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, जब लोगों को आप ऊंचा उठते हुए देखते हैं और देखते हैं कि वो अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये मत सोचिए कि वह आपसे बेहतर या श्रेष्ठ क्यों है। इसके बजाय उन्हें प्रेरणा और प्रशंसा की नजर से देखिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति से आप अपनी तुलना कर रहे हैं उसने शायद उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है या बड़े जोखिम उठाए हैं। इसलिए केवल ये मत सोचिए काश मेरे पास भी ऐसा होता, बल्कि खुद से पूछिए, मैं भी उसके जैसा बनने के लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने के बजाय उनकी मेहनत, लगन और प्रयास की प्रशंसा कीजिए। देखें कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है उसके पीछे उन्होंने कितना परिश्रम किया है। इससे तुलना करने की बजाय आपको प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा भी पैदा होगी। कई बार हम दूसरों की पूरी कहानी नहीं जानते, उनकी मेहनत, संघर्ष, परिस्थितियां और त्याग भी हमें जानना जरूरी होता है। इसके बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ? मैंने पिछले महीने की तुलना में क्या सीखा? मैं अपने जीवन में किस क्षेत्र में सुधार कर सकता हूँ? आपका लक्ष्य हर किसी से बेहतर बनना नहीं है, आपका लक्ष्य है कल के अपने आप से बेहतर बनना। यही सोच आपको लगातार आगे बढ़ने, सीखने और अपने जीवन में अधिक संतुष्ट होने में मदद करेगी।

0: अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है,
1: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है
0: 8527449955। जी हाँ, 8527449955। तो आप मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अभी आपने सुना, अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं। और अब बारी है अगले कार्यक्रम की, जिसका नाम है सुर बहार, बस कुछ ही पलों में।

0: सुरबहार प्रोग्राम की ये पहली रचना थी कैलाश खेर की आवाज़ में, और इस प्रोग्राम में यानी सुरबहार प्रोग्राम में आप गैर फिल्मी रचनाएं सुनते हैं। अभी मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615 2660617 और 2660619।
0: सुरबहार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं, और अब बारी है गैर फिल्मी गजल की। फनकार हैं हरिहरण।

0: अभी आपने हरिहरन को सुना। इसी के साथ ही आवाज का सुरबहार प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम संजीवनी आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में हम जब भी आपसे मिलते हैं तो किसी न किसी एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और आज जिस विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो हैं होम्योपैथ डॉक्टर विपिन सचदेवा। डॉक्टर विपिन सचदेवा आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, और होम्योपैथी में एलर्जी डिसऑर्डर्स

0: को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में जानकारी देंगे और साथ में हम इनकी पसंद का एक गाना भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर विपिन सचदेवा, प्रोग्राम संजीवनी में आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए सर, आपका बहुत धन्यवाद सर।
0: डॉक्टर विपिन, आज इस प्रोग्राम में जो हमने टॉपिक चुना है, आपसे विचार विमर्श करने के बाद, वो एलर्जी डिसऑर्डर्स हैं। और आपने ये बताया अपनी बातचीत में इस इंटरव्यू से पहले कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत कॉमन हो गए हैं
1: जी,
0: आम तौर से नजर आने लगे हैं, बच्चों में भी
1: जी,
0: नौजवानों में भी, बड़ों में भी, बूढ़ों में भी। इसका कारण क्या है?
1: एलर्जिक बेसिकली एक मेरे बॉडी की एक माल फंक्शनिंग है। जब मेरी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, उसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, अगर वो मेरा इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन बॉडी को, कोई बाहर की प्रोटीन, कोई भी चीज़ आ रही है, उसको वो अंडरस्टैंड ना करके उसके अगेंस्ट मैल फंक्शनिंग करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देता है, अलग किस्म की एक एरर वर्किंग कहते हैं हम उसको। उसको लगता है समथिंग मेरे बॉडी के लिए जो ठीक नहीं है वो आ गई है।
0: अच्छा, तो उससे बचने की कोशिश करता है,
1: बचेगा या फाइट भी करेगा, दोनों चीजें करेगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो उसको बोलते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर्स कहते हैं हम। देखिए, एक होता ना, हम कहते हैं कि भाई इम्यून सिस्टम कम है, बीमार पड़ गया, वो अलग चीज होगी। एक होता है इम्यून सिस्टम माल फंक्शनिंग कर गया, जैसे हम कहते हैं ना आजकल कंप्यूटर सिस्टम में चलता है, एरर वर्किंग कर गया, वायरस आ गया, तो ये भी एक किस्म का वायरस ही है, कोई बॉडी में आ गया,
0: करप्ट हो गया।
1: यस, करप्ट हो गया, तो करप्ट हो जाता है मेरा सिस्टम, वो एरर वर्किंग करता है,
0: तो उसके अगेंस्ट वो काम करता है।
1: यस, उसके अगेंस्ट काम करने लग जाता है, तभी मेरी बॉडी में वहां जहां भी मेरी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है वहां पे रेंडनेस हो जाएगी, कंजेशन हो जाएगी, इचिंग होगी, इरिटेशन होगी,
0: आ जाएंगी।
1: अगर तो जैसे एलर्जी भी डिपेंड करता है किस तरह की एलर्जी है, अगर मेरे को नोज सीजनल एलर्जी है, तो नाक के थ्रू अगर एलर्जी एंटर किया है, तो मुझे छींके, नाक से पानी, आंखों से पानी आना, इचिंग, खुजली होना।
0: अच्छा, आपके क्लिनिक में किस तरह की एलर्जीज आप देखते हैं?
1: देखिए, आजकल एलर्जी स्नीजिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एंड स्किन की जो जब हम खाने में पर्टिकुलर कोई फूड एलर्जन हमारे अंदर बॉडी में जाता है, तो हमें अर्टिकेरिया पैदा करता है, स्किन की एलर्जी पैदा करता है, क्योंकि आजकल खाने में बहुत केमिकल्स आ गए हैं, इतने अत्यधिक केमिकल की रेशो इतनी ज्यादा डालने लग गए हैं ये लोग जब खाना प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे स्किन में भी एलर्जी पैदा करते हैं, अर्टिकेरिया से कहते हैं हम, उसमें भी इचिंग हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, इस तरह के सिम्टम आएंगे सर।
0: मतलब एलर्जी की कई शाखाएं हैं,
1: अलग अलग,
0: किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको घेर सकती है।
1: यस, कहीं भी घेर सकती है, बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किन व्यक्तियों को एलर्जी होने की संभावना, कैसी भी एलर्जी हो
1: जी जी,
0: संभावना जो है वो ज्यादा रहती है?
1: देखिए, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं थोड़े से, या जिनका इम्यून सिस्टम इतना पोटेंट नहीं होता जितना कि अगर आम आदमी का पोटेंट है किसी का है, तो उसको बिल्कुल एलर्जी नहीं होगी। अगर मेरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो वो उसको फॉरेन बॉडी समझ लेगा, बॉडी से बाहर चीज को, तो वो फाइट करेगा।
0: मतलब हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है
1: जी,
0: अगर उसमें ताकत नहीं है
1: जी,
0: तो हमें एलर्जी होने का जो खतरा है वो बना रहता है।
1: हाँ, ताकत के अलावा उसकी फंक्शनिंग, जैसे ना उसको सारा पता होना। देखो, हमारी बॉडी में सारा कुछ ऑर्गेनाइज है, उसको पता है ए के बाद बी, जैसे हमारे को पता होता है ए बी सी डी ऐसे आएगा, ऐसे में इम्यून सिस्टम को सारा पता होता है ए बी सी डी आएगा। अगर वो फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, वो अगर ए के बाद सीधा सी को ले लेता है, तो वो रिएक्शन पैदा करेगा सर। सी
0: मतलब बार बार अगर कोई बीमार पड़ता है या एलर्जी जैसे लक्षण नजर आते हैं
1: जी,
0: तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम है, कमजोर है।
1: कमजोर के जो कंप्रोमाइज, यस कमजोर भी कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं।
0: अच्छा, वो फाइट बैक नहीं करती है।
1: यस, फाइट भी करती है, लेकिन वो एरर फाइट करती है, रॉन्ग वर्क, रॉन्ग फाइट करती है,
0: रॉन्ग फाइट करती
1: है। यस, ये वर्ड राइट
0: है, गलत दिशा में काम करती है।
1: यस, हां, एक होता है मैं फाइट नहीं कर पा रही है, वो अलग हो गया, वो इम्यूनिटी कम हो गया। एलर्जी में फाइट तो कर रही है, पर गलत दिशा में फाइट कर रही है। वो दिशा को दिखाना, सही दिशा पे लेके जाना, यहीं से होम्योपैथी का रोल पैदा होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी,
0: उसको सही दिशा दिखाना
1: जी,
0: वहां आपका काम शुरू होता है।
1: यस, वहां होम्योपैथी का रोल होता है।
0: उसके बारे में तो हम अगले सेगमेंट में प्रोग्राम के बात करेंगे, अभी फिलहाल एलर्जी के बारे में जाने। अच्छा, ये बताइए कि जो आम व्यक्ति है
1: जी,
0: आप तो डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं
1: जी, जी,
0: आप तो व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे से पहचान जाएंगे कि इसे क्या दिक्कत है
1: जी, जी,
0: लेकिन जो आम व्यक्ति है उसे किस तरह से ये मालूम चले कि अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये सामान्य नहीं है
1: जी,
0: ये एलर्जी हो सकती है?
1: राइट, देखिए ऐसा है कि जैसे सपोज किसी को सुबह उठ के खास तौर पे छींके आती हैं, पर्टिकुलर टाइम पे आ रही, और छींके अगर एक की जगह चार पांच कट्ठी आती हैं, और साथ में नोज में हमारी इचिंग और इरिटेशन होती है काफी ज्यादा, एंड ये पैटर्न जो है आपका ये बढ़ता जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि जी तीन दिन चार दिन हो रहा है, फिर ठीक हो गया, तो नो प्रॉब्लम, फिर वो एलर्जी नहीं है। अगर ये पैटर्न बढ़ते जा रहा है, आपको हफ्ते हो गए, पंद्रह दिन हो गए, फिर ठीक हो गया, फिर पंद्रह दिन बाद फिर स्टार्ट हो गया, फिर पंद्रह दिन हो गए, अगर ये पैटर्न बंद नहीं हो रहा है कंटिन्यूसली कुछ टाइम के बाद, प्रोग्रेसिवली फिर से बढ़ते जा रहा है,
0: इसका मतलब कोई
1: इसका मतलब मेरी बॉडी वो आपको शो कर रही है भाई, समथिंग इज रॉन्ग,
0: नाउ इट नीड्स अ डॉक्टर।
1: और देखिए, बॉडी मेरे इंडिकेटर्स देती है।

0: की है, उस इंडिकेटर को समझना मेरा कार्य है बजाय कि मैं इसको इग्नोर करूं।
1: हाँ, अगर हम जैसे इग्नोर करने लगते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं वैसे ही है,
0: हाँ,
1: तो उससे क्या है कि ये दिक्कत और बढ़ने लगती है।
0: जी देखिए, स्पेशली नोज की एलर्जी है मेरी, अगर ये स्नीजिंग वाली प्रॉब्लम को मैं इग्नोर कर दूं और ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लूं, सिंपल कोई भी एंटी एलर्जिक दवाई दागे का दबा लेता हूं सपोज मैं, तो होता क्या है ये एलर्जी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मेरे लंग्स तक चले जाएगी नोज की एलर्जी, अल्टीमेटली पेशेंट मे डेवलप इनटू एलर्जिक अस्थमा। एक देखिए, अब सिंपल डिजीज सिंपल नोज से रहने वाली जो मेरी ईएनटी लेवल पे थी, ईयर नोज थ्रोट के लेवल पे थी, वो मेरे लंग्स तक चली गई और मुझे अस्थमा डेवलप कर दिया,
1: उसे ट्रीट करना
0: और मुश्किल हो जाएगा। तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी, जितना मेरी गहराई में जाएगी अंदर सिस्टम में जाएगी तो कोई ना कोई नया ऑर्गन को अटैक करेगी।
1: मतलब कुछ भी आपके साथ ऐसा वैसा होता है, चाहे वो उसकी डिग्री कम है, उसी वक्त आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
0: यस बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बोला वर्ड कि इंडिकेटर, मेरी बॉडी हमेशा इंडिकेटर
1: इंडिकेट करती है,
0: इंडिकेट को समझना। यस यस, समथिंग इज रॉन्ग।
1: अच्छा डॉक्टर विपिन, ये तो आपने छींकों के बारे में बताया, स्नीजिंग के बारे में बताया,
0: जी, जी,
1: अच्छा जो स्किन की एलर्जी होती है, जो वहाँ जो डिसऑर्डर होते हैं
0: जी,
1: वो स्किन में किस तरह से पता चलता है कि वाकई ये कुछ आम खाज खुजली नहीं है, ये कुछ डिसऑर्डर हो सकता है?
0: हाँ देखिए, इसमें ऐसा है, इसमें भी डिपेंड करता है किस तरह की एलर्जी स्किन में हुई है। साधारण तौर पे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस एक वर्ड होता है, उसमें मेरे को कॉन्टेक्ट में, जैसे मैं किसी डस्ट से कॉन्टेक्ट में आया या मैं किसी साबुन के कॉन्टेक्ट में आया, तो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो उसे एलर्जी पैदा करेगी, तो वहां पे आपको इचिंग रेडनेस दिख जाएगी। तो ये होगा कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में। अगर कोई एलर्जन फूड वाला एलर्जन है, तो वो अगर मेरे अंदर जाता है
1: खाने पीने में,
0: स्पेशली जो मैंने देखा अक्सर आजकल जो फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स पे बहुत सारा इन्होंने केमिकल स्प्रे किया होता है, वेजिटेबल्स भी किया होता है
1: जी।
0: तो स्पेशली फ्रूट्स हमें बड़े धोके खाने चाहिए, हमने अगर सपोज बिना धोए खाए, बच्चे अक्सर कहे कहीं पर आम किसी ने आम आया अच्छी प्रॉपर धोया नहीं फटाफट खा लिया, तो जब
1: अच्छा, मैं यहाँ आपको रुकूंगा, प्रॉपर धोना आप किसे कह सकते हैं?
0: देखिए पर्टिकुलरली देखिए, जो भी वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं, कम से कम हमारे को 15 से 20 मिनट पानी में डुबो कर रखना चाहिए,
1: सिंपल पानी में,
0: सिंपल ताजे पानी में, दो नहीं तो सिंपल हल्का नमक डाल के भी रख सकते हो, या सिंपल ताजे में भी रख दिए तो भी उतना इफेक्टिव करेगा।
1: नींबू की बूंदें भी डालते हैं,
0: हाँ वो भी ठीक है, वो अपना अपना तरीका है, लेकिन अगर 15 मिनट आप सिंपल पानी में भी रख लेंगे वो 99% आपको क्लियर कर देगा,
1: उसके केमिकल्स जो ऊपर छिड़काव हुआ है,
0: एक्स्ट्रा केमिकल्स,
1: कोई वैक्स लगाया है, वो निकल जाए,
0: वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर वो मेरे अंदर जाएगा तो क्या करेगा, मेरे ऐसे अटैक नहीं करेगा, पहले वो मेरे ब्लड में जाएगा, क्योंकि मेरी इंटेस्टाइन्स को चूसेंगी खाने को, वो साथ साथ में ब्लड में चला गया, ब्लड में जाएगा तो मेरी सारी बॉडी की हर जगह जाएगा, तो फिर वो मेरे स्किन के अंदर अर्टिकेरिया कर सकता है, रेड रेड कलर के बड़े बड़े रैशेस पड़ जाते हैं, काफी काफी इचिंग होती है, उसमें इचिंग होगी, बर्निंग होगी और हीट पैदा होगी वहां पे।
1: तो आपका कहने का मतलब ये है कि कच्चा कुछ भी खाना है
0: जी,
1: या उसे यूज करने से पहले हमें प्रॉपर उसे धोना चाहिए और कम से कम 15 मिनट जो है पानी में उसे
0: डालना चाहिए, अनिवार्य समझ लीजिए आपको आज की डेट में करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा स्प्रे है, तो ये सेफ्टी के लिए हमें हर एक प्रसंग करना जरूरी है सर।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई आम एलर्जीज, जैसे छींके हो गई, स्किन की एलर्जी हो गई, और कौन कौन सी एलर्जीज हैं जो आप अपने क्लिनिक में देखते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा? आज इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं, कुछ बताइएगा।
0: देखिए एलर्जिक डिसऑर्डर में जैसे मैंने आपको बताया, अगर सिंपल कोई भी एलर्जी है आपको उसको इग्नोर ना कीजिए, अगर आप अस्थमा के रूप में जा रही है तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा रूप ले सकती है। ऐसे एक सिस्टमेटिक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी मेरी पूरी बॉडी में फैल सकती है, मेरे पूरा बॉडी का सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये लगभग तकरीबन देखने में आता है बचपन में स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे एज के साथ बढ़ते जाती है। तो इस तरह से अगर हम शुरू से ही ध्यान रखते हैं, खान पीन का ध्यान रखते हैं, अपना ईटिंग हैबिट अच्छी रखते हैं, पेरेंट्स भी अगर मदर जो स्पेशली हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, अगर वो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज करती हैं और अपने को स्ट्रेस फ्री लाइफ से रखती हैं, तो ये कई तरह के डिसऑर्डर से बच सकती हैं, इस तरह के डिसऑर्डर से, क्योंकि होम्योपैथी कहती है कि ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं हमें कई कारणों से आते हैं, अकेला खाने पीने में
1: कारण नहीं है,
0: ये एक कारण नहीं है। होम्योपैथी तो देखो, होम्योपैथी इनको बिलीव करती है कि ये जो मेरे एलर्जी, समझना पड़ेगा एलर्जी मेरी बॉडी क्यों कर रही है, मेरी एरर वर्किंग क्यों कर रही है, कहीं ना कहीं मेरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ। वो कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है, या तो मैंने ज्यादा कोई स्ट्रेस लिया, या मैंने ओवरथिंकिंग करी, तो भी मेरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उनका एनवायरनमेंट अच्छा बनाया जाएगा 9 मंथ्स का, तो दे विल गेट हेल्दी बेबी, नहीं तो कोई ना कोई बच्चे में डिसऑर्डर पैदा हो सकता है।
1: यस, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो एलर्जीज हैं एक बार अगर शुरू हो गई
0: जी,
1: क्या ये हर साल होती है, उसी खास मौके पर होगी, उसी खास मौसम में होगी, ये बताइए।
0: देखिए पर्टिकुलर जैसे चेंजिंग वेदर आ गया, मार्च अप्रैल होगा, सितंबर अक्टूबर होगा, इन दिनों में खास तौर पे पोलन्स की मात्रा हवा में बढ़ जाती है, क्योंकि ये फसल के कटाई के सीजन होते हैं। स्प्रिंग वेदर में तो फ्लावरिंग हो रही है, और ऑटम वेदर में जो फसलें कट

0: ये डस्ट पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है,
1: सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो
0: एयर पार्टिकल बढ़ जाते हैं, तो उसमें जितने भी एलर्जिक पेशेंट्स, स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस के और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक अस्थमा, इसके पेशेंट एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाते हैं।
1: तो अस्थमा की बात करते हैं, जो अस्थमा का पेशेंट है, जैसे ही मौसम चेंज होता है
0: जी,
1: उसकी बहुत बुरी हालत होती है
0: जी,
1: संभालना मुश्किल हो जाता है, उसे कुछ ना कुछ स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं
0: जी,
1: या कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है, कई बार भागना पड़ता है इमरजेंसी में
0: जी जी जी।
1: अगर मालूम है कि ये अस्थमा कभी ना कभी इरप्ट हो सकता है
0: जी,
1: तो ऐसे व्यक्ति को कैसे ख्याल रखना अपना? अभी जो है मौसम में हमें गर्मी भी महसूस होती है, ठंड भी लगती है
0: जी,
1: और हमें समझ नहीं आता कि गर्म पहने कि ठंडा पहने
0: जी,
1: तो ऐसे में जो बॉडी का तापमान है वो ऊपर नीचे होता है
0: जी,
1: तो इस स्थिति में जो एलर्जी वाले पेशेंट है वो खास तौर से कैसे ख्याल रखें?
0: देखिए एलर्जी वाले पेशेंट्स के लिए जो मेन है ना, जो पोलन से जो एलर्जी ज्यादा आती है, उसमें ये कर सकते हैं, अपने जो स्पेशली अगर रूम्स में कोई गार्डन के आसपास का रूम है तो अपने विंडो को बंद रखें, क्योंकि पोलन जितने अंदर आएंगे उनको एलर्जी होने के चांस बढ़ जाएगा। दूसरा, अपने जो बाथरूम्स हैं उनमें मोल्ड ना पैदा होने, फंगस ना पैदा होने, उसको क्लीन रखें प्रॉपरली, क्योंकि वो मोल्ड से भी फंगस हमें पैदा होता है। दूसरा, अगर घर में आपके पेट हैं तो पेट को अपने रूम में ना आने दें, ज्यादा क्लोज ना आने दें, क्योंकि उससे भी आपको एलर्जी पैदा होगी। बेडरूम में ना दें, उनको अपने स्पेसिफिक प्लेस में रखें, जितना उसको बेडरूम में या बेड पे चढ़ाएंगे आपको, वो उससे भी आपके डस्ट पार्टिकल उसके अंदर से आके आपको एलर्जी पैदा कर सकते हैं, अस्थमेटिक कंडीशन बढ़ सकती हैं।
1: तो वो आपको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा।
0: थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। बाकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनको ऐसे सिंपली नहीं लेना चाहिए, इनको तभी लेना है हमने जब वो अनिवार्य, बहुत सीवियर अनिवार्य,
1: जब जो स्थितियां हैं वो हाथ से बाहर हो जाए
0: तब, वो क्योंकि दे आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसमें आप ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथी का साथ ले सकते हैं। होम्योपैथी क्या करेगी, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम को इस तंग से बढ़ा देगी कि आपको उस कंडीशन में जाओगे नहीं कि आपका अस्थमेटिक अटैक सीवियर हो जाए, आप सिंपल पफ से ही ठीक हो जाएंगे आप, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा बेटर हो जाएगा।
1: अच्छा डॉक्टर विपिन, किन किन चीजों से होती है
0: जी,
1: आप अपने क्लिनिक में जब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं
0: जी,
1: तो आमतौर से वो कौन सी चीजें सामने आती हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो सकती है और आप उन्हें यूज करने के लिए मना करते हो?
0: देखिए जो एलर्जी है तो इसके बारे में नॉर्मली तो हमें इसके टेस्ट से ही पता लग पाता है कि हमें किस चीज से एलर्जी है।
1: अच्छा, एक टेस्ट होता है
0: जी, इसमें आप जैसे स्किन प्रिक टेस्ट हो गया या एक स्किन पैच टेस्ट होता है। सबसे पहले तो हम सिंपल आईजीई टेस्ट करते हैं, आईजीई अगर लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में तो ही हमें पता लगेगा कि उसको एलर्जी है। आईजीई की तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, ये तब बढ़ेगा जब मेरे बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है। अगर आईजीई लेवल बढ़ता है तब मैं उसको डायग्नोस कर पाऊंगा कि डेफिनेटली उसको एलर्जी है, या उसका इजनोफिल का लेवल बढ़ गया तो मैं समझ पाऊंगा उसका एलर्जिक प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको टेस्ट रिकमेंड कर सकता हूँ। स्किन प्रिक टेस्ट हो गया या स्किन का पैच टेस्ट होता है, उसमें अलग तरह के पैचेस लगाए जाते हैं स्किन में और उसके अबाउट 48 आवर्स या कई बार 6 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, तो हमें उससे पता लग जाता है उसको पेशेंट को किस किस तरह से एलर्जी है, किस किस फूड से,
1: तौर से पता चल जाता
0: है। कुछ फूड से एलर्जी है, उसमें हर तरह का फूड भी आ जाएगा,
1: ट्रीटमेंट हो
0: जाएगा। वो फूड देखिए, एलर्जी का सबसे बढ़िया तरीका जो है ट्रीटमेंट का ये है कि वो चीज हमें खाना छोड़ दें जिसे हमें एलर्जी है
1: जी,
0: और इसका और कोई बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर उसमें रिपोर्ट में आता है कि मुझे बीन्स एलर्जी है, मैं बीन्स खाना छोड़ दूं।
1: और कई बार अक्सर ये होता होगा कि जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है
0: जी,
1: वही छोड़ने के लिए डॉक्टर बोलता होगा।
0: ये एक विडंबना है, समझ सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं एलर्जी के बारे में, एलर्जी डिसऑर्डर्स के बारे में
0: जी।
1: लेकिन इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमान की पसंद का एक गाना भी शामिल करते हैं, हमारी रिवायत है इस प्रोग्राम की, तो उस रिवायत को निभाने में आप भी हमारा साथ दीजिए। बताइए अपनी पसंद का गाना।
0: जब कोई बात बिगड़ जाए
1: जी, बहुत प्यारा गाना आपने चुना, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में ये गाना है।
0: थैंक यू।
1: इसका गाना हम प्ले करते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम में आपसे फिर मिलते हैं।

0: संजीवनी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन सचदेवा, होम्योपैथ, एलर्जी डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी सर।
0: तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एलर्जीज के बारे में आपने बताया कि कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन्हें इत्मीनान से स्टडी करना होता है और फिर एक जांच होती है। तो डॉक्टर साहब, इन तमाम बातों के बाद अब बात आती है कि होम्योपैथी में एलर्जी को कैसे देखा जाता है, वो तो आपने बता दिया।
1: जी।
0: एलर्जी का इलाज किस तरह से होता है
1: जी,
0: बेसिक किस तरह से शुरुआत होती है
1: जी,
0: और आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है होम्योपैथी में?
1: देखिए, होम्योपैथी ये कहती है कि भाई चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो इन्फेक्शन है, या मुझे फीवर है, या मुझे कोई भी पता का डिसऑर्डर है, तो वो क्यों हुआ है। वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं पे मेरा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उस कारण से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। तो वो होम्योपैथी एक आपके जो अंदर का जो सिस्टम है वर्किंग का प्रॉपरला, वो उसको बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग में लेके आती है, हार्मोनी बनाती है बॉडी में,
0: वो दिशा दिशा yes,
1: वो एक दिशा, जब वो, yes, दिशा बनाएगी, जब मेरी बॉडी में एक हार्मोनी बन जाएगी कि मेरे अंदर कोई चीज बाहर की चीज आ रही, तो मैंने उससे कैसे फाइट करना है, कैसे उसे मोल्ड करना है, कैसे सिचुएशन को समझना है, अगर मेरी बॉडी इसी को सीख जाएगी तो मेरी बॉडी ओवर रिएक्ट करेगी नहीं, क्योंकि ये ओवर रिएक्शन है मेरी बॉडी की, रॉन्ग फंक्शन है। अगर मेरी बॉडी ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है, उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो मैं उस बीमारी से आजादी पा चुका हूँ उसका मतलब।
0: तो ये चीजें आपको समझने में काफी मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती होगी
1: जी। देखिए, खास तौर पे होम्योपैथी में माइंड सिम्टम्स हमारे को लेने बहुत जरूरी होते हैं। जब तक हम
0: मानसिक स्थिति क्या है,
1: मानसिक स्थिति क्या है, हमारी तो स्टडी तभी
0: स्टार्ट हो जाए। उसकी मानसिक स्थिति से आपको लगता है कि ये जो आदमी है तनाव में है
1: जी, जी,
0: तो आपको समझ आ गया कि एलर्जी जो है तनाव की वजह से,
1: तनाव की वजह से बिल्कुल।
0: अगर वो बिल्कुल खुश है
1: जी,
0: तबीयत उसकी खुशनुमा है
1: जी, जी,
0: तो ऐसे में फिर
1: देखिए, उसमें ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, एक ना चीज होती है मेडिकल वर्ल्ड में, हमारे इसको बोलते हैं एफेक्टेशंस। जैसे आपके प्रॉब्लम है, लेकिन आप जैसे कहते एक गाना था, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो होता क्या है, पेशेंट अंदर से तो परेशान है, लेकिन वो हंस के शो कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ।
0: मतलब हर स्थिति में खुश रहने की आदत है उसको।
1: आदत नहीं, वो इन्फेक्शन, वो चाहता नहीं है कि मैं किसी को शो करूं कि मैं बीमार हूँ या मैं डाउन हूँ या मेरे अंदर कोई स्थिति चल रही है। वो हमेशा अपने आप को अच्छे लेवल पे शो करता है। वो उसको लगता है कि अगर किसी को पता चल गया मैं बीमार हूँ या मेरी मानसिक खराब है, तो मेरी एक इमेज खराब हो जाएगी। तो यहाँ एक अच्छे होम्योपैथी का रोल पैदा होता है, वो उस एक्सपेक्टेशन को पकड़े कि वो क्या सिम्टम दबा रहा है, उसको
0: उसे टटोलने की कोशिश करे,
1: उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर, जब तक हम रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। होम्योपैथी कभी फेल नहीं होती सर, होम्योपैथी डॉक्टर फेल होता है, याद रखिए सर। अगर वो पिंक पॉइंट नहीं कर पाया तो डिजीज को राइट मेडिसिन पिक करने में फेल हो जाएगा।
0: इसलिए कहते हैं कि जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो लक्षणों पर आधारित होती है, सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट।
1: देखिए, होम्योपैथी जब भी बारिश पड़ती है, एक इंद्रधनुष आता है सर, इंद्रधनुष में हम एक हर तरह का रंग दिखते हैं, कोई बैंगनी है, कोई हरा, पीला, नीला। ऐसे ह्यूमन बीइंग के बारे में हम कहते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या है, एक इंद्रधनुष कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें से एक कलर जो होता है बड़ा

0: में से शाइन कर रहा होता है, बाकी थोड़े कम शाइन कर रहे होते हैं। मेरे को वही कलर पिक करना है, वही उसकी बेसिक नेचर है। अगर मैंने वो पिक कर लिया तो मैंने उसकी राइट मेडिसिन पिक कर ली, तो वो ठीक होगा ही होगा, ना ठीक होने का मतलब ही नहीं।
1: नहीं मतलब वो आपके लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती, केवल ये नहीं कि ये बीमारी और ये दवाई है आपने खानी और 5-10 दिन का कोर्स है।
0: यस, मेरे लिए डायग्नोसिस जरूरी नहीं है कि बस सिंपल मैंने डायग्नोस कर लिया कि आईजी बॉडी बढ़ गई है और उसका ये एलर्जिक टेस्ट आ गया तो ये प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे को उसके अंदर और भी डिटेल देखनी पड़ेगी, उसकी बेसिक कॉज क्या था, रूट कॉज क्या था, होम्योपैथी
1: हुआ क्यों,
0: हुआ क्यों, क्यों उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ। मेरे को उसके डेप्थ पे जाना पड़ेगा, मुझे जैसे समुद्र में गोता लगा के मोती निकालना है वैसे निकालना पड़ेगा, तो ही मैं इसकी बीमारी ठीक कर पाऊंगा।
1: इसीलिए होम्योपैथ जो है वो काफी समय लेते हैं
0: जी जी
1: एक पेशेंट के साथ।
0: यस यस, देखिए मैंने जैसे पहले बोला वर्ड वाला एक्सपेक्टेशन, क्योंकि पेशेंट हाइड करता है चीजों को, वो हाइड वाली चीज अगर आपने नहीं पकड़ी और आपने जो ऊपर प्रोसेस दिखाया पेशेंट ने वो पकड़ा, तो आप रॉन्ग दिशा में चले गए। अगर आपने उस चीज को पकड़ लिया और आपने सही दिशा में जाओगे तो बीमारी ठीक होगी होगी उसकी।
1: वो जितना आपको बताता जाएगा
0: जी,
1: उतना जो मेडिसिन का सिस्टम है वो चेंज होता जाएगा।
0: यस, उतना मैं उसकी
1: वो मतलब स्टीक होती जाएगी।
0: यस, स्टीक होते जाएगी, मैं उसके रियल एसेंस पहचान जाऊंगा। अगर मुझे तक रियल एसेंस मिल गई तो मैं विनर हो जाऊंगा सेशन में।
1: जी जी, कई लोग जैसे बाकी मेडिसिन खाने की आदत है
0: जी,
1: कि ओवर द काउंटर
0: जी
1: जाके केमिस्ट को बोला
0: जी
1: और दवाई ले ली
0: जी।
1: अब बहुत सारी होम्योपैथी की दुकानें हैं
0: जी
1: जहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन मिलती है, तो ओवर द काउंटर कई लोग जाकर गूगल करने के बाद पढ़ने के बाद एलर्जी के लिए ये दवाई लेनी है, ये होम्योपैथी में बेस्ट है।
0: देखिए ऐसा है कि ये चीज जो सिस्टम है ये थोड़ा सा गलत है मैं मानूंगा, क्योंकि होम्योपैथी में कभी भी क्विक सॉल्यूशन नहीं मिल सकता आपको। हर एक पेशेंट की अलग इंडिविजुअलिटी है, अलग पहचान है, उसके अकॉर्डिंग उसकी दवाई चेंज होगी। एक दवाई 10 लोगों को नहीं मिल सकती। जैसे
1: छींके अगर 4 व्यक्तियों को आ रही है
0: जी,
1: तो उनके अलग अलग सिम्टम्स,
0: चारों की सिम्टम अलग अलग होंगे, चारों को अलग ही तरह की दवाई सूट करेगी,
1: सिम्टम्स के मुताबिक दवाई देंगे।
0: क्योंकि जो ओवर द काउंटर दवाई मिलेगी वो ऑलमोस्ट एक उसको जब तक खाएगा आराम आएगा, जैसे उसको छोड़ देगा दोबारा स्टार्ट होगी। यानी कि ओवर द काउंटर जो दवाई मिली उसने सिम्टोमेटिक रिलीफ किया लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया। देखो होम्योपैथी कहती है बीमारी को रूट से खत्म करती है, होम्योपैथी बिलीव इसी पे करती है टू क्योर द डिजीज बाय रूट। मैं क्योर रूट से कैसे कर पाऊंगा जब तक मैं उसकी रियल एसेंस नहीं पहचान पाया। अगर मैंने एसेंस पहचान ली तो मैं उसके रूट कॉज पे जा पाऊंगा, फिर मैं क्योर उसको बाय रूट दे पाऊंगा बजाय कि मैं उसको टेम्प्रेरी रिलीफ दूं।
1: जी जी जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है
0: जी।
1: ऐसा नहीं है कि पेशेंट सामने आया
0: जी
1: और आपने जो उसकी प्रॉब्लम है उसे देखा
0: जी
1: और झट से दवाइयां लिख दी।
0: हाँ,
1: आपको उसे टटोलना पड़ता है, समझना पड़ता है,
0: बिल्कुल सर,
1: उसके दिल को खंगालना पड़ता है।
0: सर बच्चों से स्टार्ट हो जाता है, सिंपल बच्चों से। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया, कुछ बच्चे क्लिनिक में आके तेज तेज दौड़ रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, कुछ एकदम शांत बैठे होते हैं, कुछ से हम बात करते हैं तो वो आंखें तक नहीं मिलाते, दूर रखते हैं। वो क्यों आंख नहीं मिलाते हैं? क्योंकि वो सिम्टम वो आपको वो शो नहीं करते मैं बीमार हूँ, इवेड करते हैं। कोई मस्त खोर होते हैं, मजे कर रहे हैं, तो हमारा काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसको देख लिया मैंने कि वो खूब मस्ती कर रहे हैं, उसको एक्टिविटी, बोर्ड पेशेंट के अंदर हाइपर एक्टिव है, तो हाइपर एक्टिव भी एक तरह का सिम्टम है, मुझे उसको पिक करना पड़ेगा। एक है वो इतना हाइपर एक्टिव को तोड़ फोड़ कर देता था, क्लिनिक में आएगा कोई मैगजीन फाड़ दी, कुछ फाड़ लिया,
1: तो हाइपर
0: एक्टिव वो डिस्ट्रक्टिव माइंड थिंकिंग वाला है। तो हमारी जो सोच है होम्योपैथी की वहीं से स्टार्ट हो जाती है, द मोमेंट पेशेंट एंटरिंग द क्लिनिक वहीं से मेरे को सिम्टम पिक करने स्टार्ट करने पड़ते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरह से जो ट्रीटमेंट का तरीका है होम्योपैथी में एलर्जीज का
0: जी,
1: उसका सक्सेस रेट किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए मैं तो होम्योपैथी में इसको 100% मानता हूं सर
1: जी,
0: पूरा 100%।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, पर एक सवाल मेरा और है
0: जी,
1: जो आपसे मैं पूछना चाहता था
0: जी।
1: आमतौर से ये कहा जाता है कि एलर्जीज के लिए या स्किन डिसऑर्डर्स के लिए जैसे ही होम्योपैथी मेडिसिन शुरू की जाती है
0: जी,
1: तो वो जो इरप्शन है, जो दबी हुई चीज है
0: जी, जी,
1: वो
0: जी,
1: और बाहर आने लगती है।
0: देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इससे कि ऐसा होता है जब बीमारी बढ़ती है, इसमें दो तरह की से बढ़ती है, एक होती है डिजीज एग्रेवेशन, एक तो मेडिसिन एग्रेवेशन। एक बीमारी बढ़ना, एक मेडिसिन दिया, मेडिसिन से बढ़ाया, उसको बोलेंगे मेडिसिन एग्रेवेशन। तो उसमें एक अच्छा होम्योपैथिक जो डॉक्टर होगा वो कभी भी ज्यादा एग्रेवेशन को नहीं देगा, क्योंकि देखिए पेशेंट हमारे पास आराम के लिए आया है, कंफर्ट के लिए
1: डरा हुआ है,
0: वो आगे परेशान है। अगर मैं उसको ऐसी मेडिसिन दूंगा, एग्रेवेशन से बाहर निकालूंगा, फिर ठीक करूंगा, तो वो सिस्टम में कहीं ना कहीं पे उसको पेशेंट आके पास आएगा ही नहीं, वो परेशान होकर फिर चले जाएगा। तो हमने पेशेंट को क्या आराम तो नहीं दिया, और परेशानी दे दी। तो यहाँ पे एक अच्छे होम्योपैथी का पर्पस स्टार्ट होता है कि उसने जो दवाई देनी है उसको देख के देनी है कि उसको बीमारी जो उसकी है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मेडिसिन की जो पावर है इतनी अधिक ना हो कि वो बीमारी को बाहर निकाले। उसकी एक मात्रा देखनी है डॉक्टर ने, सही सही अच्छा, मात्रा अच्छा। में सही डोज देनी है ताकि सिचुएशन ऐसी ना आए।
1: धीरे धीरे चल मना
0: यस धीरे धीरे वो बीमारी निकले और पेशेंट को पता में चले कब वो ठीक हो गया
1: क्योंकि आमतौर से पेशेंट जो है डर जाते हैं ऑलरेडी उनको डर होता है घबराहट होती है
0: घबराहट होती है
1: ऊपर से कई बार दवाई खाने के बाद वो कुछ और इरप्शन हो जाती है

0: देखिए एक्चुअली क्योंकि एलर्जी वाले पेशेंट जितने भी होम्योपैथिक में आते हैं उसमें हमारे पास ये समस्या होती है, बहुत सारों ने ना काफी हद तक स्टीरॉइड्स खाए होते हैं,
1: ओहो,
0: तो उससे बीमारी काफी हद तक दबी होती है। तो होम्योपैथी निकालने में बिलीव करती
1: क्योंकि
0: है
1: वो जड़ से
0: इलाज करती है। तो इसमें एक अच्छा होम्योपैथ उसको मेडिसिन देखेगा कि मैंने कौन सी मात्रा देनी है ताकि ये इतनी भी ना निकले कि पेशेंट परेशान हो, धीमे धीमे गति में निकल के और क्लियर हो जाए।
1: जी जी जी, तो काफी आपको समझाना पड़ता होगा ना।
0: हाँ देखिए बिल्कुल, ये होम्योपैथी के बारे में समझाना पड़ता है कि भाई किस तरह से दवाई काम करेगी, एंड बेसिकली कॉन्फिडेंस पे देना है पेशेंट को हमने। अगर आपने ठीक करोगे डेफिनेटली पेशेंट आप बेटर फील करेगा।
1: एक जो मरीज है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आप पर भी होना चाहिए और आपका पेशेंट पे भी होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत
1: तब जो है वो चीज जो रंग लाती है,
0: गिव एंड टेक है सर।
1: अच्छा डॉक्टर विपिन सचदेवा, अब प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है, जाने से पहले आप हमारे श्रोताओं को जो एलर्जी से ग्रसित हैं
0: जी,
1: उनके लिए जब मौसम में बदलाव होता है
0: जी,
1: तो वो किस तरह से अपना ख्याल रखें उसके बारे में कुछ बताइए।
0: देखिए उसमें तो पर्टिकुलर तो यही हो सकता है कि एक तो पानी की मात्रा ज्यादा पिएं, क्योंकि पानी अपने आप में ही काफी हद तक जो है एक्सेस में अगर लेंगे तो आपको एक तरह की हाइड्रोथेरेपी का पर्पस सॉल्व करता है, आपको बीमारी कम से कम होगी, सिम्टम कम पैदा आएंगे। दूसरा कुछ खाने में परहेज करें, जैसे कि जो एलर्जिक प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं खट्टी चीज़ें हैं वो कम खाएं, खट्टी चीज़ें खाएंगे तो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वाय वाली चीज़ें जैसे कि माँ की दाल होगी, राजमा होगी, सफ़ेद चने होंगे, वाय वाले भी प्रॉब्लम से एलर्जी बढ़ती है।
1: ये बिल्कुल नहीं खाना,
0: ये कम खाने, जितने कम खाएं। इसके अलावा
1: महीने में एक आध बार खा लिया,
0: हाँ जितनी कम मात्रा खाएंगे तो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम कम से कम होएंगी। अस्थमेटिक पेशेंट है वो राइस की अमाउंट कम खाएं, बनाना कम खाएं, क्योंकि रेशा बनाते हैं चश्मे जाके, तो अगर ये चीज कम खाएंगे तो उनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स अगर होएंगी तो सिम्टम कॉम्प्लिकेशन कम से कम आएंगी।
1: जी जी,
0: हो सकता है कॉम्प्लिकेशन आए ही ना, वो जल्दी ठीक हो जाए।
1: जी जी, अच्छा जिन्हें एलर्जी नहीं है
0: जी,
1: स्वस्थ है
0: जी,
1: वो स्वस्थ बने रहे, इसके लिए क्या ख्याल रखें?
0: बस तरीका तो यही है, अपना जो स्वास्थ्य का राज बाकियों को बताते रहें कि किस तरह
1: अच्छा अच्छा
0: यही है सर।
1: बहुत अच्छा आपने ये बताया
0: जी।
1: तो डॉक्टर विपिन सचदेवा, आप हमारे प्रोग्राम संजीवनी में आए, आज आपने एलर्जी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया
0: जी,
1: क्योंकि इस प्रोग्राम में पहले भी एलर्जीज के बारे में बात हो चुकी है
0: जी सर जी।
1: आपने ये बताया कि ये बहुत कॉमन है
0: जी,
1: यही वजह है कि आज इस प्रोग्राम में हमने भी आपसे इसी विषय पर बातचीत की है।
0: थैंक यू,
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी प्रोग्राम में पधारने के लिए
0: जी।
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
0: जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। मैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संजीवनी प्रोग्राम में आया, मैं इसका आपका बहुत आभारी हूँ सर
1: जी। जी दोस्तों, ये तो था आज का संजीवनी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे डॉक्टर विपिन सचदेवा होम्योपैथ। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया, प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी आकाश भारद्वाज ने। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से, बस अब से कुछ ही पलों में।

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के

0: मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग $10 ट्रिलियन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग $70 ट्रिलियन हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम है यादों की महफिल, बस कुछ ही पलों में।
3: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
4: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: और आइए अब आपको लिए

ये है कार्यक्रम का पहला गीत। कैफी आजमी का लिखा गीत है, एसडी बर्मन का संगीत है, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम कागज की फूल।

गीता दत्त और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कागज के फूल का ही गीत। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे एसडी बर्मन। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आवारा से सुनते हैं। स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: बजते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
5: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
6: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
7: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
5: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
8: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं जयदेव के संगीत निर्देशन में सुदर्शन फाकिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है दूरियां। आवाजें प्रीति सागर, रेणु मुखर्जी और साथियों की।
1: इकड़ तुकड़ भंबे भो 80-90 पूरा तो 100 गलोटा तीतर मोटा चेहरा

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत सुना। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीत एस डी बर्मन का था।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

कल्याणपुर और कमल बारूद की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे का ये गीत, शब्द शकील बदायूनी के थे। कृपया से दोबारा सुने, शब्द शकील नोमानी के थे और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की थी। और ये है राजेश रोशन का संगीत, पयाम सईद की रचना, नितिन मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संत ज्ञानेश्वर का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कर्ज़।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नील बट्टा सन्नाटा से हमने लिया है। स्वर है रोहन उलपत, आरती शेनाई और साथियों के, गीतकार नितेश तिवारी हैं, संगीतकार हैं रोहन और विनायक।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: थी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ।
5: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615 2660617 और 2660619।

0: ये था फिल्म दे दनादन का गाना।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
5: ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
6: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615 2660617 और 2660619।

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर का 1 बजा है और आप सुना करते हैं हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। तो अब से बस थोड़ी ही देर में श्रोताओं 1:05 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे आप। प्रादेशिक हिंदी समाचार शाम 6:10 पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक पंजाबी समाचार भी हम आपके लिए अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे, पहले दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर भी। श्रोताओं, हमारे यहाँ से फिल्म संगीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर। शाम 5:05 पर भी हम आपको कुछ फिल्मी गीत सुनवाएंगे।

विविध भारती के मुंबई केंद्र से आप सुना करते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर। फिर वहीं से श्रोताओं दोपहर 2 बजे त्रिवेणी कार्यक्रम होता है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम हिंदी में समाचार रिले करेंगे आपके लिए।

हिंदी में समाचार हम आपके लिए रिले करेंगे। सदाबहार नगमे आप सुन सकते हैं हमारे मुंबई केंद्र से दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम होता है हर रोज दोपहर 3:00। ये कार्यक्रम भी मुंबई केंद्र से ही रिले किया जाता है। फिर वहीं से शाम 4:00 होगा कार्यक्रम पिटारा। आज के मेहमान सिलसिले के तहत इस कार्यक्रम में आप मुलाकात कर पाएंगे आज लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के साथ।

हमारे केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुन सकते हैं शाम 5:20 पर। एक और प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाएंगे आपको उमंग, ये NCERT द्वारा प्रायोजित है। श्रोताओ, समय रहेगा शाम 5:30।

0: हमारे केंद्र से आज शाम 6:30 मिनट पर आप सुन सकते हैं कुछ पंजाबी गीत। श्रोतो, पंजाबी गीतों का हमारा एक कार्यक्रम होता है सुर सांझ, ये आप सुन सकते हैं रात 10:32 पर। विविध भारती के मुंबई केंद्र से हर शाम 7:00 सैनिक वीरों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम होता है जयमाला। फिर हमारे केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। आज रेडियो डायरी कार्यक्रम भी हम प्रसारित करेंगे आपके लिए अपने केंद्र से। समय है शाम 7:47 श्रोताओं। रात 8:00 हवा महल कार्यक्रम में आज सुनेंगे एक प्रहसन शीर्षक की खोज। प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी आप सुन सकते हैं रात 8:15 पर। रात 9:30 पर मुंबई केंद्र से आज के फनकार कार्यक्रम रिले किया जाएगा। फनकार हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु थैया और श्रोताओं उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत सुना करते हैं आप रात 10:00। आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4:00 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2-6-6-0-6-1-5, 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9। ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। प्रादेशिक हिंदी समाचार अब आप सुनेंगे। इसके फौरन बाद 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। पुलिस के अनुसार कल इन नेताओं ने कथित तौर पर बंद गेट और बैरिकेड पार किए। इस दौरान वे राष्ट्रीय ध्वज लेकर नारे लगा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। तीनों नेताओं और अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी जमावड़े तथा आदेश की अवज्ञा सहित विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में शिक्षा विभाग का स्वयंसेवक शिक्षक पंजीकरण पोर्टल जारी किया, जिसके माध्यम से स्कूल

0: स्कूलों में स्वैच्छिक रूप से पढ़ाने के इच्छुक स्वयंसेवी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजसेवियों और स्वैच्छिक स्वरूप से सेवा देने के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा विभाग में शैक्षणिक कार्यों से जोड़ने के लिए जारी किया गया यह पोर्टल प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकृत स्वयंसेवियों में से उपयुक्त व योग्य व्यक्तियों के चयन के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस विभाग से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने कहा है कि हरियाणा में औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में मारुति सुजुकी ने 18,000 करोड़ रुपए, एटीएल कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए, आदित्य बिरला ग्रुप ने 1140 करोड़ रुपए और टोयोटा बोशुकू ने 400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा अमूल ने 300 करोड़ रुपए से दूध व डेयरी उत्पाद क्षेत्र में और फ्लिपकार्ट ने 1300 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है। इन प्रमुख कंपनियों के अलावा यामाहा, एस्कॉर्ट्स, वर्लपूल, इंडियन ऑयल, एशियन पेंट्स, जेसीबी होंडा, हार्ले डेविडसन, सन फार्मा व पैनासोनिक सहित अनेक कंपनियां हरियाणा में अपनी परियोजनाएं स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नए उद्योगों की स्थापना और विदेशी निवेश के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सिंगापुर का दौरा किया है, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ परिवहन, भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, रखरखाव, निर्माण, सुरक्षा, खानपान और अन्य सहायक सेवाओं में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। करनाल के भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में रबी किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में किसानों ने संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेहूं एवं जौ की उन्नत किस्मों के बीज प्राप्त करने के साथ आधुनिक खेती की तकनीकों की जानकारी भी ली। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से 700 से अधिक किसान पहुंचे हैं, जिन्हें गेहूं की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने किसानों को गेहूं की बिजाई से पहले मिट्टी की जांच करवाने की सलाह दी, ताकि वे मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने प्राकृतिक खाद के अधिक उपयोग और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर भी जोर दिया। डॉक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि देश ने पिछले वर्ष 121 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड कायम किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पंचकुला में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत अंगदान का संकल्प लेकर मानवता और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने हितेशी फाउंडेशन की ओर से आयोजित देहदान अंगदान सम्मान समारोह में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर पंजीकरण कराया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को हरियाणा के सभी जिलों तक पहुँचाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक लोगों से नमो सेवा पोर्टल के माध्यम से अभियान से जुड़ने की अपील की और हितेशी फाउंडेशन के अनुरोध पर उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनना भी स्वीकार किया। इस समारोह में देहदान और अंगदान का संकल्प लेने वाले नागरिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हां दी सरकार पंजाब दी सिक्ख्या प्रणाली नूं बदल रही है अते नौजवानां नूं मजबूत बनाउण लई रोजगार दे मौके पैदा कर रही है। उन्हां जोर दे के कहा कि मुख टीचा नौकरी लब्भण वालियां नूं नौकरी देण वालियां विच बदलना है। कलाइके गुजराल पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी कपूरथला दे 14वें कन्वोकेशन विच बोलदे उन्हां कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलां दा नवीनीकरण कीता ते योग्यता दे आधार ते 70,000 सरकारी नौकरियां पैदा कीतियां ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्वोकेशन ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੀ ਐਸ ਧਨੋਆ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 9ਵੀਂ CII ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में आपने आनंद बख्शी का लिखा ये गीत सुना, एक दूसरे के लिए। ये था फिल्म का नाम। आइए अब सुनते हैं होटल फिल्म के लिए अलका याग्निक और मनहर का गाया ये गीत। श्रोताओं, अलका याग्निक के साथ ये गीत गाया है अमित कुमार ने।
1: देखो प्यार में ऐसा नहीं करते।

0: जाना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615 2660617 और 2660619। और लीजिए अब सुनिए लैला फिल्म से ये गीत।

0: आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
3: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
2: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
4: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
0: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2-6-6-0-6-1-5, 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2-6-6-0-6-1-5, 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9।
5: बॉन्ड, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड का किरदार 6 कलाकारों ने निभाया, पर नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर किसी कलाकार से पूछा जाए तो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाना चाहता भी है। एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा हीरो नाम है मोगेम्बो और हीरोइन में मोना डार्लिंग। वही एक श्रोता ने लिखा है कि भारत नाम पसंद है क्योंकि भारत यानी अपने देश की याद करवाते हैं मनोज कुमार जी, और फिल्मों में वो इसे यूज करते हैं, उनका नाम भारत रखा जाता है, वो बेहद अच्छा लगता है। और वही कि प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, जब वो बोलते हैं तो वो बहुत पसंद आता है। जी तो सवाल फिर से दोहरा देते हैं जिन्होंने अभी अभी रेडियो से ट्यून किया है। हो सकता है किसी काम से श्रोता समय पर इस सफर में नहीं आ पाते हैं, तो हमारे सवाल ये हैं कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अभी हमने बहुत से श्रोताओं के जवाब पढ़े और उन्हें अच्छा लगा जो नाम उन्होंने बताए, तो आपको भी बताना है कि जैसे विजय नाम बहुत था फिल्मों में, चांदनी, ऐसे जो नाम हैं जो हमें बहुत पसंद आए उनको आपको बताना है। और वहीं जैसे हमारा दूसरा सवाल था कि प्रेम नाम है प्रेम चोपड़ा और मोगेम्बो खुशवा, इस तरह के जो किरदार मशहूर हो गए और आज भी हमारे दिल में घुसे हुए हैं, उनका जिक्र आपको करना है, किसी एक किरदार का और किसी एक नाम को पसंद करना है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है स्वर्ग नरक। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: वहीं एक श्रोता को गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हैं, ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे मनोज कुमार जी का नाम हमेशा बहुत ही पसंद रहा है, आज भी है। भारत गीत तो पूर्व पश्चिम का गीत, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अमरीश पुरी साहब तो मोगम्बो के नाम से घर घर में मशहूर हो गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गए। बहुत ही अच्छे विलन के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। बिल्कुल, उनका चेहरा देखकर ही डर लगता था जब वो कहते थे मोगम्बो खुश हुआ, है ना, कितना अजीब सी घबराहट होती थी।

वहीं एक श्रोता को शत्रुघ्न सिन्हा का नाम जो कहते कि नाम चीनू कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो शत्रुघ्न सिन्हा का अगर ये डायलॉग आपको पसंद है तो एक डायलॉग और अच्छा लगता होगा खामोश जो अक्सर उनके साथ जुड़ता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे राज अनिल जय ये नाम बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और करण अर्जुन फिल्म में अमरीश पुरी का नाम ठाकुर है जो इन्हें पसंद आता है एक श्रोता को। एक श्रोता ने कहा है कि अमजद खान का शोले में गब्बर सिंह का नाम भूले से भुलाया नहीं जाता, बिल्कुल सही कहा, वो तो नाम इतिहास में लिख दिया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजराती फिल्मों के कलाकार फिरोज ईरानी जो कि विलेन का रोल करते थे कई फिल्मों में, उनका प्रेम चोपड़ा के जैसा ही डायलॉग होता था, गुलाब गुलाबनी बात गुलाब जी भी अच्छा। और वहीं एक श्रोता को विजय और रवि नाम ही पसंद है। एक श्रोता लिखती है कि रेखा और हमारा ही नाम हमें ज्यादा पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी फिल्मी चरित्र को मेरे वाला नाम प्राप्त हुआ होगा। हाँ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हमारा नाम किसी फिल्मी चरित्र से मिले। हमने तो ये पूछा, ऐसा हो सकता है कई बार हमारा नाम कहीं आया हो और हमें याद हो। वहीं एक श्रोता को मनोज कुमार का भारत कुमार, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, मोगेम्ब खुशवा ये बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता को देवानंद साहब का जो है हीरा नाम, हीरा पन्ना फिल्म में हीरा नाम था, वो बेहद पसंद है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और ये गीत भी बहुत कम सुना गया है। बताइएगा ये गीत आपने सुना था बहुत पहले कभी?

0: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुण अप्लाई।
1: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाईवुड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615 2660617 और 2660619।
3: मुझे लिखते हैं कि आप एक नाम तो भूल ही गई हैं, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। बिल्कुल नहीं भूले जनाब, पिछले कार्यक्रम में इस गाने को हमने शामिल कर लिया था, इसलिए इस बार इस गाने को हमने नहीं लिया। वहीं एक श्रोता को मेरा नाम है लखन, राम लखन बहुत पसंद आता है, और एक श्रोता कहते हैं कि आज तो नामों की भरमार रहेगी, नाम करने के लिए सब कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं। रही बात फिल्मी नामों की तो वो तो सर चढ़कर बोलते हैं, जैसे मेरा नाम राजू, घराना अनाम, जूली आई लव यू, लीना उलीना, मिली, ये सभी गाने पसंद हैं या नाम पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मैं खो सी जाती हूँ, संगीत पे इतनी शक्ति होती है कि हर दुख दर्द आदमी भूल जाता है, ऐसा ही इंसान की भी

फितरत होनी चाहिए, उसकी बोली में इतनी सच्चाई और अपनापन होना चाहिए कि राह चलता आदमी भी अपना बन जाए। क्या बात है। कार्यक्रम का अगला गीत रविंद्र रावल का लिखा हुआ, राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया हुआ है, आवाजें उषा मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है तराना।

बारिश रोदा लिख रहे हैं कि नाम अब्दुल है मेरा शान फिल्म का ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है जो अब अगला गीत है बिल्कुल हाँ रफी साहब की खनकती आवाज में आप सुनना चाहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन में सुनील दत्त का नाम भोला और किशोर कुमार का गुरु इतना लोकप्रिय हुआ कि वे दोनों कलाकार जीवन पर्यंत एक दूसरे को गुरु और भोला कहकर बुलाते रहे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो अभी पूछा जमीला वाला गाना हमने ये पहली बार सुना है और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरा नाम है जमीला ये गाना उन्होंने पहली बार सुना है। चलिए अच्छा लगा ना आपको ये गाना। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सच कह रहा हूं मेरा नाम किसी एक्टर का फिल्म में वही होता है जो मैं खुश होता हूं या किसी गीत में या कृष्ण जी के किसी भजन में मेरा नाम आता है तो खुशी होती है क्योंकि कृष्ण जी का पर्यायवाची ही मेरा नाम है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे अमृता सिंह का रूबी नाम पसंद है क्योंकि मेरा घर पर पुकारने वाला नाम यही है सब मुझे कहते हैं सुन रूबिया। अरे वाह क्या बात है क्या बात है बहुत सुंदर अच्छा लगता है जब हमें इस तरह से नामों से चिढ़ाया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या अभी तक किसी ने मुगले आजम और सलीम और

नारकली को याद नहीं किया। और वहीं एक श्रोता को कटी पतंग का बिंदु का गीत बहुत पसंद है, जो अभी हमने आपको सुनवाया। और एक नाम मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, बसंती। बसंती नाम है मेरा, ये भी किसी ने याद नहीं किया। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां शान फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सुनवा रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: क्या? हाँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर
1: जी। सबकी खबर आप रखे न रखे, लेकिन अपनी खबर, अपने लोगों की खबर आपको जरूर रखनी है, अपने नाम को बचाए रखना है। और इसी उम्मीद के साथ आज का सुरीला सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी ना अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 14 अक्टूबर का दिन है। 14 अक्टूबर 1946 को दुनिया के 25 देशों के प्रतिनिधि लंदन में मिले थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की नींव रखी थी, और इसी की याद में हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन का आखिर क्या महत्व है। आपको बता दें कि भारत में जो स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी है वो निभाता है भारतीय मानक ब्यूरो, और ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज पर ISI का निशान हो या सोने पर हॉलमार्क का निशान हो तो वो आधिकारिक

0: रूप से अच्छा माना जाता है और उत्कृष्टता का पैमाना माना जाता है। मानक संगठन बस यही काम करते हैं, यानी बाजार में मिलने वाली चीजें सही स्टैंडर्ड की हों, अच्छी क्वालिटी की हों, देर तक टिकें और किसी का नुकसान न करें, इस बात का ध्यान रखता है मानक संगठन। आज का दिन इसी संगठन को सलाम करने का दिन है।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल।

ISO, ये एक संक्षिप्त रूप ही नहीं है बल्कि ये यूनानी शब्द ISOS से यानी आइसोस से आया है, जिसका मतलब होता है बराबर। दरअसल हम जब जिंदगी में कुछ खरीदते हैं, जैसे कि बिजली का सामान खरीदते हैं या बाइक पर जाने के लिए हेलमेट खरीदते हैं या खाना पकाने के लिए जो चूल्हा है वो खरीदते हैं, तो हम इन चीजों पर एक निशान देखते हैं जो है ISI का निशान। ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का निशान है। जब हम सोना खरीदते हैं तो उसके ऊपर हॉलमार्क की मुहर होती है और तब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें जिस चीज का वादा किया जा रहा है वही बेची जा रही है। ISI के निशान का मतलब है भरोसा। दुकानदार और ग्राहक के बीच, कारखाने और बाजार के बीच, एक देश और दूसरे देश के बीच भरोसा, यानी यहां कोई धोखेबाजी नहीं हो रही है।

0: जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसके सस्ते होने पर उसे ना खरीदें, बल्कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जिस चीज के पैसे चुका रहे हैं क्या उस पैसे के बदले में हमें वो क्वालिटी मिल रही है। जैसे बिजली का सामान अगर आपने खराब क्वालिटी का खरीद लिया तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई और हादसा हो जाए। इसी तरह से हेलमेट की मिसाल हमने पहले भी ली। अगर हमने कोई हेलमेट ऐसा लिया जिस पर ISI का निशान नहीं है और वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हादसे का शिकार होने पर हेलमेट आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यानी चीजों को वैसा होना चाहिए जैसा उनका होना जरूरी है, उनकी क्वालिटी भरोसेमंद होनी चाहिए। इसी को सुनिश्चित करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI का निशान इसी बात की मिसाल है और गारंटी भी है। आज हम आपको इस बात की याद दिला रहे हैं कि जब उपभोक्ता के रूप में कोई चीज खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज है वारंटी और गारंटी का ध्यान रखें, उसके पूरे पैमानों को बारीकी से पढ़ें। किसी भी तरह से किसी भी चीज को खरीदने में धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना है, तभी ये जो मानक दिवस है ये कामयाब बना जाएगा और आप एक अच्छे उपभोक्ता साबित होंगे।
1: कहो जी तुम क्या, सुनो जी तुम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद

0: प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं आसियान भारत हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है
1: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है
0: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती मानव तस्करी अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं
1: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट करने का सुझाव दिया श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडिल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो लेकिन यह पुराने अनुभवों देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी जीडीपी लगभग $4 trillion है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले चार वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा मेक्सिको मर्कोसुर यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है
3: From $10 trillion of GDP.
4: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 trillion की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 trillion की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 trillion की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है
1: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे
4: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार रक्षा तकनीक महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है

0: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणाली और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
3: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में 2 सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में

0: अधिकतर संपर्क सुनिश्चित है। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से तुरंग बेहद महत्वपूर्ण, इस लाइन पर स्थला दर चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की वजह सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। फिल्म का नाम था गंगा की लहरें। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले से चुना है। शब्द आनंद बख्शी के, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: रवि के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है खानदान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर, जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2-6-6-0-6-1-5, 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2-6-6-0-6-1-5, 2-6-6-0-6-1-7 और 2-6-6-0-6-1-9।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत।
1: फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक,
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी आपने मन्ना डे और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। गीत को शैलेंद्र ने लिखा था और तर्ज शंकर जयकिशन की थी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़, फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम। गीत को इंदिवर ने लिखा था और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ।
7: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615 2660617 और 2660619।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली तुम्हें और हमारे सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: मैं समझ गई आपका हेल्दी नमस्कार होगा और भी नवरात्रि का त्योहार
1: बिल्कुल
0: बड़ी जोर शोर से पूरे देश में मना रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है व्रत भी करती हैं,
1: बहुत तो, सारे भाई भी करते हैं बहुत, और बच्चे भी करते हैं, युवा को भी बहुत देखा है करते हैं, और ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखना तो बहुत
0: जरूरी है। कुछ लोग जो है बिल्कुल भी यानी सिर्फ पानी पर रहते हैं या फिर बहुत ही कम खाते हैं, या कुछ लोग जो है बहुत सारे करिष्ट चीजों का सेवन करते हैं, तो हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा।

0: करती है।
1: बहुत सारे भाई भी करते हैं, बहुत और बच्चे भी करते हैं, युवा को भी बहुत देखा है करते हैं। और ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखना तो बहुत
0: जरूरी है। कुछ लोग जो है बिल्कुल भी सिर्फ पानी पर रहते हैं या फिर बहुत ही कम खाते हैं, या कुछ लोग जो है बहुत सारे करिष्ट चीजों का सेवन करते हैं, तो हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं इन दिनों में, उपवास के और फलहार बना जाता है
0: जी।
1: कई सारी जगह पे कई लोग अलग अलग रेसिपीज शेयर भी करते हैं अपने, और ऐसी इसी तारतम्य में हमने सोचा चलिए शकरकंद के आपको अलग अलग व्यंजन बताया जाए।
0: शकरकंद जो है बहुत हेल्दी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, उपवास में खाया जाता है। तो शकरकंद के जो व्यंजन है वो आज हमारे बहुत सारे सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने ऑलरेडी लिख भेजे हैं, वे भी हम शामिल करेंगे। और भी अगर आप कुछ अलग शकरकंद के व्यंजन बनाते हैं तो वो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा।
1: बिल्कुल। अच्छा, नवरात्र के दिन हो और तरह तरह के परिधान हम पहनते हैं, साड़ियों का तो देखो सदाबहार मौसम रहता है, जब पहनिए तब अच्छा लगता है
0: जी।
1: तो अलग अलग हम प्रदेशों की साड़ियों को उसकी जानकारियां हम बताना चाहते हैं आपको। तो आज तेलंगाना की पोचमपल्ली इक्कत साड़ी जो है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बहुत सारे संदेश भी आए हैं और ऐसा लग रहा है हमारी सहेलियों को ये वाली साड़ी बहुत पसंद है,
0: और हम पूछ भी लेते हैं ना अपनी सहेलियों से कि उनके पास में ये साड़ी है कि नहीं। बहुत सारे हमारे श्रोता भाइयों से भी पूछते हैं कि आपने अपनी पत्नी जी के लिए पोचमपल्ली साड़ी दिलवाई है, उन्हें गिफ्ट दी है या नहीं।
1: और अगर ना दी होगी ना तो आज की जितनी जानकारियां हैं वो सुनने के बाद जरूर दिलवाइएगा।
0: साथ ही आज जो है एक खास दिन है, विश्व मानक दिवस है
1: जी,
0: उस विषय पर भी हम बात करेंगे। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है दीपा, कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा।
1: बिल्कुल, जो आज का युवा है 26 के बाद घरों में आमतौर पे भारतीय घरों में ये होने लगता है कि भाई शादी करनी है, हम तुम्हारे लिए लड़का देखें या लड़की देखें, इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है। वहां फिर देखिए हमारे बच्चों को लगता है अभी नहीं करनी, अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी तो ये वक्त ही नहीं है, अभी हमारी नौकरी प्रॉपर नहीं है, इस तरह की सारी बातें शुरू हो जाती है। कोई स्टार्टअप लेके बैठा है तो कहता है अरे भाई स्टार्टअप लेके हम बैठे हैं, कहां हम ये शादी और इन सब के झमेलों में हमें मत डालिए मम्मी पापा। इस तरह के घर में बातचीत शुरू हो जाती, कहीं कहीं तो बहस भी हो जाती है।
0: और पहले ये बातें जो हुआ करती थी ना दीपा, ये सिर्फ लड़के करते थे, पर आजकल लड़कियां भी इस तरह की बातें करने लगी।
1: जी
0: सही बात है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत से अपने करियर को सजाया सवारा है, पर हर चीज का एक वक्त होता है। शादी अगर बहुत एक वक्त होने के बाद में अगर शादी हो तो बहुत सारी आगे जाके दिक्कतें आ सकती है।
1: बिल्कुल, तो हम इस बातों पे विचार विमर्श तो करेंगे ही, और चाहते हैं कि आप सब भी, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत आपके अनुभव में घर में
0: जी,
1: तो आप जरूर शेयर कीजिए।
0: और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखे हैं, पर वे जैसे बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं वो कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो अपने विचार लिखिए कि इस बारे में आपके विचार क्या है।
1: घर में कोई ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है, या कुछ चल रही है इन दिनों, या आप अपने बच्चे को या पोता पोती को किसी को समझा रहे हैं और वो ना मान रहे हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो जरूर बताइएगा।
0: और एक खास और एक और सेगमेंट है, ये है कि शब्द हमारा विचार आपके
1: जी,
0: इसके अंतर्गत आज का शब्द चुना है प्रार्थना, जिसको तो सुनते ही सुकून हमें महसूस होता है।
1: तो चलो शब्द बात की है प्रार्थना की, तो एक प्रार्थना ही सुने
0: जी, सुनते हैं।

0: तो दीपा हम भी माँ को हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी के जीवन में खुशहाली हो और बस आनंद के साथ हम जिंदगी गुजारें।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो भक्तिपूर्ण माहौल हो गया है, प्रार्थना भी हमने कर ली है और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं, और जिंदगी भर करते ही रहना चाहिए। हम जिस चीज को मानते हैं, जिस भी बात पे आस्था है, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। और देखिए बहुत सारे हम विशेष दिनों की बातें करते हैं, तो आज है विश्व मानक दिवस, जो हर साल आज के दिन यानी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व को समझाने के लिए और उन विशेषज्ञों को उन्हें योगदान, उनके योगदान का सम्मान उन्हें हो सके, उनको समर्पित किया जाता है ये दिन। तो जो वस्तुएं होती है ना, सेवाओं और तकनीकी प्रणालियों के लिए एक मानक तैयार करते हैं। मानक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रतिदिन अनेक ऐसी वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं सोनाली, जिनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानकों की अहम भूमिका होती है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही दीपा। और चाहे मोबाइल फोन हो, बिजली के उपकरण हो, खाद्य पदार्थ हो या दवाइयां हो, हर क्षेत्र में मानकों का विशेष महत्व है। और विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आगे चलकर इसी प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO की स्थापना हुई।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1970 में ISO के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे उस वक्त फारूक सुंटर, इन्होंने 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाने की पहल की। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानकों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
0: और इस वर्ष की जो थीम है ना दीपा 2026 की, वो है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इस वर्ष का संदेश है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, भरोसेमंद, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में अंतर्राष्ट्रीय मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मानक क्या होते हैं? मानक यानी किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया की गुणवत्ता, सुरक्षा, आकार, माप और कार्यक्षमता के लिए निर्धारित नियम या दिशा निर्देश है। अब उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा, बिजली के उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के नियम और मोबाइल और इंटरनेट उपकरणों के बीच तालमेल, वजन और माप में एकरूपता, जैसे 1 किलोग्राम और 1 मीटर का समान माप।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से इमारत और जो पुल होती है उनकी सुरक्षा से संबंधित भी नियम होते हैं। तो इन मानकों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। तो ISO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। ये संगठन अलग अलग उद्योग या सेवाएं या प्रक्रियाओं

0: के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी IEC ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के मानकों पर काम करता है और इसी तरह से फिर एक और है ITU अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का इसका फुल फॉर्म है। ये दूर संचार और संचार नेटवर्क और डिजिटल तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देता है। अब ये तीनों जो संस्थाएं मिलकर विश्व मानक दिवस के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
1: और भारत में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS राष्ट्रीय मानक तैयार करने और उत्पादों की गुणवत्ता और अनुरूपता से संबंधित कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। हमारे दैनिक जीवन में मानकों के महत्व को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क देखना, निर्धारित गुणवत्ता वाले बिजली के उपकरण चुनना, उत्पादों पर ISI चिन्ह और अन्य लागू प्रमाणन चिन्हों की जांच करना, वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी और गुणवत्ता संबंधी विवरण पढ़ना, हर उत्पाद पर एक चिन्ह लागू नहीं होता, हर उत्पाद पर हर चिन्ह लागू नहीं होता है, हर उत्पाद पर एक ही चिन्ह लागू नहीं, इसलिए खरीदारी करते समय संबंधित उत्पाद के लिए लागू मानक और प्रमाणन देखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो हमें लगता है अब सखियां हमारी सच में इस बात इस जो जानकारी है इससे और सचेत हो जाएंगी और हमेशा मानक की महत्व
1: चिन्ह देखकर ही
0: खरीदारी करेंगे।
1: अब जैसे कोई सोने के गहने खरीदते हैं तो उसमें भी मानक हमें देखना है, चिन्ह देखना है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कोई भी चीजें हैं तो उसे उसका चिन्ह देखकर ही हमें खरीदारी करना चाहिए।
0: फिलहाल अभी क्या करना चाहिए,
1: गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए

0: सपनों का रंग देखो कभी कभी परिधानों पे भी आ जाता है
1: और कभी कभी डरा भी देता है।
0: कैसे?
1: जैसे हमेशा एक ही सपना आता है कि हम परीक्षा में लिखने बैठे हैं और हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमें कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है, या फिर हम दौड़े जा रहे हैं और रेगिस्तान में हमारे पैर ही उठ रहे हैं।
0: ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी कोई साड़ी खरीदने की इच्छा होती है ना, तो आप देखिएगा कितनी सारी हमारी सखियां इस बात से सहमत भी होंगी, वो सपने में आने लग जाती है।
1: हाँ, आपकी आती है?
0: आती है।
1: हाँ?
0: बिल्कुल, सच में ऐसी इच्छा है कि कभी हम जाएं ऐसी बर्फीली पहाड़ियों पे, हम भी कोई ऐसे शिफॉन की साड़ी लहरा करके एक बढ़िया सा कुछ वीडियो बनवाएं,
1: यानी जैसे फिल्मों की हीरोइन।
0: हाँ, जैसे फिल्मों की हीरोइने करती है, हीरोइंस करती है भाई। अभिनेत्री हर महिला अपने जीवन की अभिनेत्री तो होती है ना, और साड़ी उनका वही खूबसूरत परिधान है। और ये सिर्फ परिधान नहीं है, हमारे देश की कला संस्कृति और परंपराओं को अपने आंचल में समेटे हुए एक खूबसूरत विरासत है। देश के अलग अलग हिस्सों की साड़ियों की अपनी अलग पहचान होती है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
0: इन्हीं में से एक जो हम आज बात कर रहे हैं ना, पोचमपल्ली इक्कत, जिसे अपने जिसमें उसमें बड़े अट्रैक्टिव ये होते हैं
1: डिजाइन,
0: ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं, हिंदी में अपन ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, और उसकी अनोखी बुनाई होती है जो कि दुनिया भर में जानी जाती है।
1: और पोचमपल्ली तेलंगाना के भुवनगिरी जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पीढ़ियों से बुनकर परिवार इक्कत की कला को संजोते आए हैं और पोचमपल्ली इक्कत को भारत की पारंपरिक हाथकरघा कलाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ
0: जीआई
1: टैग, यानी हमने मानक की जो बात की,
0: मानक की बात की,
1: तो इसे भी जीआई टैग मिला हुआ
0: जी। अब इस साड़ी में ऐसा क्या खास है? तो असल में इक्कत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगाई और बुनाई की तकनीक है। सामान्य साड़ी में अक्सर कपड़ा बुनने के बाद उस पर डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन इक्कत में धागों को बुनने से पहले एक खास तरीके से बांधकर उनमें रंग भरा जाता है, यानी डिजाइन कपड़े पर बाद में नहीं बल्कि जब बुनाई होती है ना तो धागे में पहले से ही तैयार किया जाता है।
1: और इस प्रक्रिया को समझना भी बहुत दिलचस्प है। ताने या बाने के धागों के जिन हिस्सों को किसी खास रंग से बचाना होता है उसे कसकर बांध दिया जाता है, फिर धागों को रंगा जाता है। बांधे गए हिस्सों पर रंग नहीं चढ़ता, इसके बाद अलग अलग हिस्सों को खोलकर दूसरे रंगों में रंगा जाता है और अंत में इन्हीं रंगे हुए धागों को करघे पर बुनकर मनमोहक पैटर्न तैयार किया जाता है। इसी वजह से इक्कत के डिजाइनों में हल्का सा धुंधलापन या धागों के मिलने का प्रभाव दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती और पहचान दोनों है।
0: बिल्कुल। अब हमारे जिन सखियों ने ये साड़ी खरीदी होगी या जिन्हें पसंद है, तो वो जानती है कि इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे हीरे वाला जो पैटर्न है ना, हीरे का आकार या चौकर डायमंड शेप या चौकर पैटर्न होंगे, धारियां मिलेंगी या फिर पारंपरिक मोटिफ दिखाई देते हैं। कलर की बात करें तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, काला, ऐसे सारे चटक रंग इस्तेमाल होते हैं इनमें। और आज के समय में बुनकर पारंपरिक रंगों के साथ कुछ पेस्टल और आधुनिक रंग ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, वैसी साड़ियां भी पसंद की जा रही हैं।
1: और पोचमपल्ली इक्कत की परंपरा का इतिहास कई पीढ़ियों पुराना है। यहाँ के बुनकरों ने इस कला को अपने परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। कभी ये कला मुख्य रूप से स्थानीय और पारंपरिक जरूरतों से जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ पोचमपल्ली इक्कत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज साड़ी के अलावा इक्कत से दुपट्टे, कुर्ते, स्टोल, शर्ट और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।
0: अब भाई बात होगी कि चलिए, आपकी इतनी सारी जानकारी से अब हमारी तो इच्छा जाग

0: दिक्कत हो गई कि हमें साड़ी खरीदनी
1: है। इसमें शर्ट का जिक्र किया है तो हमारे पुरुष जो भाई है
0: वो भी खरीद सकते
1: हैं इक्कत का शर्ट।
0: अब वो जानेंगे भाई मैं शर्ट लूं उससे पहले मुझे घर में जो महिलाएं उनको दिलाना पड़ेगा, तो कीमत क्या है इन साड़ियों की? तो कीमत जो है उसके कपड़े धागे डिजाइन बुनाई की जो जटिलता है या हस्तकरघा का काम या पावरलूम पर बन रही है उस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अब अगर आप मिक्स्ड फैब्रिक का मिक्स्ड कपड़े का लेते हैं ना हिक्कत की साड़ियां, तो 1500 से 2000 या 2500 तक की भी मिल सकती है शुरुआती उसके जो रेट हैं। और आप बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन की लेते हैं या सिल्क कॉटन साड़ियां तो लगभग 3000 से 7000 के बीच में ये मिल जाती हैं। और वहीं शुद्ध रेशम से की हाथ से बनी हुई जटिल डिजाइन वाली और एकदम प्रीमियम पोचमपल्ली इक्कत साड़ियों की कीमत अगर आप जानना चाहें तो 10000 से 25000 तक या उससे ऊपर भी हो सकती है। अब अगर उसमें जितने ये है कि कितना बारीक काम है उस पर निर्भर करता है इसका रेट। और हाँ फैब्रिक पर भी कि किस तरह का आपने कपड़ा चुना है।
1: जी, और इसलिए जब अगली बार आप किसी पोचमपल्ली इक्का साड़ी को देखें तो सिर्फ उसके रंग और डिजाइन पर नजर मत डालिएगा, उसके पीछे छिपी उस मेहनत को भी महसूस कीजिएगा जिसमें एक एक धागे को बांधा जाता है, रंगा जाता है, फिर करघे पर बड़ी कुशलता से बुना जाता है। यही तो भारतीय हथकरघे की खूबसूरती है। कपड़ा केवल बुना नहीं जाता, उसमें हमारी परंपराएं, कारीगरों की मेहनत और पीढ़ियों की कला भी बुनी जाती है।
0: सही बात है। और ये जो सपनीली दुनिया है इसको बुनने के लिए क्या सबसे खूबसूरत साधन है?
1: गीत।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो।
2: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता और उपचार। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग डॉक्टर वीनू सिंगला के साथ आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 2660615 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो याद रहे, आज बातचीत की जाएगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2660615 2660617 और 2660619।
3: आपका फूल भी लेके जाते हैं, वो फूल देखकर भी बहुत खुश हो जाती है कि अरे मुझे याद किया, क्या बात है।
4: या उनकी पसंद की कोई चीज है ना, भले ही वो छोटी सी चॉकलेट क्यों ना हो। और अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का,

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। इतने सारे संदेश आए हैं ना कि वो ब्रेक खत्म होने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। हमारे एक सखी ने लिखा कि कुछ महीने पहले मेरे भतीजी की शादी के एक कार्यक्रम में मैंने पोचमपल्ली साड़ी खरीदी थी और अच्छा उनका अनुभव रहा, ऐसा वो कहती हैं। तो सच में अलग अलग हथकरघा या आप अलग अलग प्रदेशों की साड़ियां जब आप पहनते हैं अलग अलग हमारे अनुभव होते हैं। और सच में बहुत जो आपस में जो ये जो कहते हैं ना महिलाओं वाली बातें, उसमें साड़ियों का जिक्र तो निकलता ही है।
0: वैसे प्रार्थना की बात चली है तो हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे स्कूल में शुरुआत में सभी स्टूडेंट और टीचर प्रिंसिपल एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। वे प्रार्थना आज भी याद है। कुछ खास बात प्रिंसिपल को कहनी होती तो उसी समय कहते थे। प्रार्थना का असर क्या होता था पता नहीं, पर मन बहुत शांत हो जाता था। मैं रोज सुबह नहाने के बाद 10 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए बैठती हूँ। उस समय जो भी भगवान से जो कहना होता हूँ वो कह लेती हूँ। आखिरकार उस परम पिता की कोई तो शक्ति है जो इतनी बड़ी दुनिया को चला रहा है। प्रार्थना से शांति तो मिलती ही है।
1: बहुत सही कहा, बिल्कुल सही। और इसी तरह से विचार हमारे एक श्रोता के कहते हैं, हमारे विचार से प्रार्थना करने से हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पर कई सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। ये तभी संभव है जब सच्चे दिल से प्रार्थना की गई हो।

0: नियमित प्रार्थना करने से अहंकार दूर होता है, स्वभाव विनम्र बनता है, जिससे आंतरिक बल और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन से जुड़ी समस्याओं और उलझनों का समाधान मिलता है। आगे कहते हैं, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब है मानव तू प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना कर।
1: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना केवल कुछ शब्दों को दोहराना या हाथ जोड़कर घुटने टेकना नहीं है, बल्कि आत्मा की वे गहरी पुकार है जो सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती है जिसे हम ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं। जब हम कहते हैं शब्द हमारा विचार आपके, तो इसका अर्थ है कि यह शब्द केवल एक माध्यम है, लेकिन उनके पीछे की भावना, गहराई और चिंतन पूरी तरह से आपका अपना होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में एक ऐसा सेतु है जो हमें अशांति से शांति की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और संदेश अगला कहता है कि पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तित्व आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
1: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना हृदय का गीत है। चाहे आप शब्दों का प्रयोग करें या मौन रहकर केवल अपने मन के भावों को अर्पित करें, यदि उसमें सच्चाई और श्रद्धा है तो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भूलकर उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक होता है, के भीतर क्षमा, करुणा और प्रेम जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को सुंदर, अनुशासित और उद्देश्य पूर्ण बनाने का सबसे सरल माध्यम है। यह हमारे भीतर छिपी असीम शक्तियों को जगाने और ईश्वर के साथ एक अटूट व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का जरिया है। शब्द चाहे कोई भी हो, यदि आपके विचार और भावनाएं शुद्ध है तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार्य है। कितनी सुंदर बात, कितने सुंदर विचार लिखे हैं हमारे सभी।
0: सही कहा सुनाली। हमारे एक श्रोता ने कुछ फिल्मों में दिखाए गए प्रार्थनाओं में जिक्र किया है, जैसे कि हे प्रभु आनंद दाता, ए मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये सारे फिल्मों में प्रार्थना के रूप में इन्हें जो गीतों को दिखाया है, आज भी हम बेहद पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति आभार, सम्मान और मार्गदर्शन व्यक्त करना, जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। आगे लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्रार्थना करवाए जाते थे, पहले हमारे समय में, और एक स्वस्थ और अच्छी दिनचर्या मानी गई है सुबह की प्रार्थना। बच्चों के मन को शांत करती है और दिन भर की पढ़ाई के लिए उनका ध्यान केंद्रित रखती है। और आगे कहते हैं कि कतार में खड़े होकर साथ में प्रार्थना करने से बच्चों में अनुशासन, नियम और की पाबंदी की जो कि ये जो आदत है ये विकसित होती है।
1: एक साथी कहते हैं, पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
0: एक और कहते हैं कि प्रार्थना शब्द सुनते ही वो स्कूल की सुबह की प्रार्थना याद आ जाती। छोटा सा ढोलक और एक खंजरी बजाकर तीन लड़कियां सामने बैठकर गाती थी और उनके पीछे सब गाते थे। हर दिन एक नई प्रार्थना गाई जाती थी, हमें बड़ा मजा आता था।
1: एक कहते हैं, प्रार्थना दुखी मन को न केवल शांति प्रदान करता है अपितु हृदय में धैर्य भी भरता है, और इस दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हुए जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
0: एक अगला संदेश कह रहा है कि प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि जो मिला है उसका धन्यवाद करने के लिए भी होना चाहिए। किसी असहाय की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, दुखी को सांत्वना देना जैसे काम भी प्रार्थना के ही रूप है।
1: एक साथी कहते हैं, हम सभी लगभग प्रार्थना करते ही है, परंतु अगर हम संसार के रचयिता से सच्चे मन से भगवान से जुड़कर प्रार्थना करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी प्रार्थना स्वीकार न हो। जरूरी होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है, सुख और दुख दोनों में प्रार्थना कर जगत के पालनहारी से प्रार्थना करें। और अब
0: गीत सुनते हैं।

0: प्रार्थना से देखिए, सच में कहा ना, सभी हमारी जैसे सखियां बता रही थी कि मन में एक सुकून आ जाता है और शांति आ जाती है, है ना। और सबके लिए ऐसा लगता है एक शुभ कामनाएं निकलती हैं दिल से कि इसका भी अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो, जो हमारे संबंधी हैं उन लोगों का सबका अच्छा हो, है ना।
1: और जो माताएं होती, जो मम्मियां होती है जिनके युवा शादी नहीं करते, तो वो भी प्रार्थना करती कि जल्दी से हमारे घर में बहू रानी आ जाए या फिर हमारे घर में दामाद आ जाए। हमेशा हाथ जोड़ के कहती कि भाई हमारे बच्चों को अब इस तरह की इच्छा जागृत हो कि वे जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दे।
0: बिल्कुल। लेकिन आज के जो बदलते सामाजिक परिवेश है ना सोनाली, उसमें जो युवा है, यूथ जो है, उनकी सोच, जीवन शैली और उनकी जो प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं हैं वो बहुत बदल गई हैं आजकल। एक समय था जब विवाह को जीवन का एक स्वाभाविक हम

0: पड़ाव मानते थे कि हाँ अब इस एज के बाद तो ये शादी होनी है, पढ़ाई पूरी करना, नौकरी पाना, विवाह करना और परिवार बसाना, ये जीवन का एक सामान्य रूपरेखा हुआ करती थी। लेकिन आज जो युवा है वो विवाह करने और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं।
1: इसके पीछे अनेक कारण हैं दीपा, कि जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने शादी कर ली तो फिर हमारे करियर में, खासकर महिलाओं को, युवतियों को ऐसा लगता है कि हमारे करियर में बाधा आ जाएगी, या फिर हमने इतना बड़ी मेहनत से हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने अपने करियर को इतना अच्छा सजाया संवारा है, और अगर हम शादी के बाद में उसमें बाधा आ जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो ये वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपके क्या विचार है, आपको ऐसा लगता है क्या पुराने जमाने में भी करियर भी हुआ करते थे, शादियां भी हुआ करती थी, तब हमारे मन में विचार नहीं आता था, पर आजकल के युवाओं के मन में विचार क्यों आने लग गया?
0: आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा, हम भी यहाँ पर से अपनी तरफ से इस बातों को, इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये समझना आवश्यक है कि विवाह का अर्थ स्वतंत्रता का अंत नहीं है। सबको लगता है कि अरे भाई शादी हो गई ना, सारी आजादी खत्म, बस एक शब्द बोला जाता है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच समझदारी, सहयोग और आपसी सम्मान का ये रिश्ता है। और आज के युवा पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, आर्थिक स्थिरता, फिर अपना घर, सुरक्षित भविष्य, और ये सब उनकी प्राथमिकताएं हैं। वो चाहते हैं कि विवाह से पहले उनका करियर स्थापित हो जाए, ताकि वे अपने जीवन साथी के साथ एक आर्थिक तनाव के बिना जीवन बिता सकें।
1: और जैसे दीपा मैंने भी कहा था कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों युवा ये बात को सोचने पे मजबूर हो गए, उसके पीछे एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि माता पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़े भी बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होकर वे भी इसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहेंगे। हालांकि हर विवाह का अनुभव एक जैसा नहीं होता है, स्वस्थ संवाद, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल, और अपने आसपास शादियों का जो टूटना देखते हैं ना, पारिवारिक विवाद भी देखते हैं, घरेलू तनाव और रिश्तों में कड़वाहट देखने वाले युवाओं के मन में भी एक विवाह को लेकर ना थोड़ी एक डाउट डर आ जाती है, डाउट सा बनने लग जाता है। वे सोचते हैं कि यदि विवाह के बाद जीवन में शांति के बजाय अगर ये तनाव इस तरह मिलना है तो ऐसा रिश्ता बनाने का क्या लाभ है।
1: अब देखिए, दोस्ती के बीच में भी जब हम दोस्ती बनाते हैं ना किसी से, तब भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
0: ये बात
1: कि
0: तो
1: हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक समान
0: वो भी
1: होता,
0: एक समान
1: तो हर इंसान कैसे एक समान।
0: अरे भाई, घर में भाई बहन जो होते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे, वो भी तो सब अलग अलग तरह से होते हैं।
1: तो हमें एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है कि लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही। और देखो, एडजस्ट करने की जो यहाँ पे बात कर रहे हो ना सोनाली, हम आजकल अपने बच्चों को थोड़ा कम समझाते हैं कि थोड़ा सा आप संभल के चलिए, या थोड़ा सा आपस में एक कोई अगर एक या हम कोई एक दो में से कोई एक में अगर हमने ही पहले थोड़ा सा झुक गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं हमारा क्या वो हमारा अहंकार है जो आड़े आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं भी तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं क्यों झुकूं। ये बात, ये अहम की भावना कहीं पहले आके दीवार बना देती
1: और रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। वे हमारे साथियों ने भी लिखी है कुछ बातें। हमारे एक साथी कहते हैं कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा बड़ा रोचक मुद्दा है। नई शादी होने के बाद युवक और युवती अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। युवक त्योहार उत्सव में जाना बड़ा आनंद लेते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ना, फिर काम पर जाना, अभी हम सेटल नहीं हुए, अभी हम पढ़ रहे हैं, इस जंजाल में युवा फंसे होते हैं। हमारी माँ तो कहती है प्रभु ही शादी कराएगा, असल में प्रभु ही इनकी शादी करवाएगा, ऐसी उन्हें चिंता लगी रहती है।
0: एक संदेश ये भी कह रहा है कि भाई जहां तक वैवाहिक जवाबदारी से बचने की बात है, जवाब कम है, दुनियादारी ज्यादा है। आजकल के युवा 21वीं सदी के हैं जो कह रहे हैं हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, वो मंजिल है नौकरी या कोई बिजनेस, फिर बाद में छोकरी, मतलब ये गुजराती में शायद उन्होंने लिखा है कि भाई वो कहते हैं कि सब सेटल हो जाए, हम उसके बाद ही विवाह करना चाहेंगे। अच्छा, माता पिता के बीच भी लगातार होने वाले झगड़ों में भी बच्चों का मन, ये अगर घर में कुछ ऐसा माहौल है ना कि माता पिता के बीच में बहसबाजियां अगर बच्चों ने देख रखी है तो उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर वो बड़े होकर उसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहते हैं। हालांकि अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर विवाह का अनुभव एक जैसा होता भी नहीं है। स्वस्थ

0: संवाद होते हैं आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बना सकती है। अब ये भी बात है सोनाली कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं है ना, इसके साथ हम इमोशनल तरीके से भी जुड़ते हैं, फिर घर की व्यवस्था भी देखनी होती है, आर्थिक योजना क्या है या परिवार के प्रति संवेदनशीलता और भविष्य से जुड़े निर्णय भी आ जाते हैं।
1: और अब क्या किया जाए,
0: एक गीत सुना जाए,
1: सुनते हैं गीत।

0: सुना ली। बच्चे कहते हैं आजकल कि हमें ये तो यकीन है कि अभी शादी हमें नहीं करना है। और एक संदेश ये कहता है कि विगत सालों से सोशल मीडिया और खबरों ने शादी विवाह के मामले में ऐसा दहशत फैला दिया है कि लड़के लड़कियां क्या माँ बाप भी बेहद सहम गए हैं। बच्चों की शादियों की बातों से वो भी डरने लगे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सभी की कहानी एक समान होती जा रही है। कई सालों तक साथ रहने के बाद भी वैवाहिक जीवन का जो सुनहरा रंग है वो बदलता जा रहा है। यहाँ पर दबाव की ही नहीं, यहाँ बातचीत करके किसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है उसे बदला जाए या उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो अच्छे लोग और अच्छे विचारों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में ये तय नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही लड़के लड़कियों के दिमाग में बैठाना होगा कि वैवाहिक सूत्र दाम्पत्य जीवन एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें दो परिवार बनते हैं, दो लोग मिलते हैं, परिवार बढ़ता है और कई तरह की जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो ये जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही।
1: एक हमारे साथी ने कहा है आज के युवा वैवाहिक जीवन से ज्यादा करियर पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। वे मानते हैं कि शादी कर लेने से घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी और करियर खत्म हो जाएगा। अभी कुछ कमा कर पग भर हो जाए तभी शादी तो बाद में होगी। मेरे घर में भी मेरी बेटी 29 साल की हो गई पर शादी से मना कर रही है और नौकरी के साथ साथ एग्जाम भी दे रही है ताकि और बेहतर नौकरी कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत कर रही है पर शादी की ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक उम्र के बाद में

0: बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं, शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, मानसिक बदलाव आ जाते हैं। फिर वो एक उम्र के बाद में ना, जो महिला है या पुरुष यानी लड़के लड़के कोई भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की सोच की एक और संदेश है कि आज के युवा, उन्होंने लिखा है, दोनों महिला और पुरुष अपने करियर और वित्तीय स्थिरता को पहली प्राथमिकता देते हैं। वे शादी से पहले एक मजबूत बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, जिसके कारण विवाह में देरी होती है या युवा इससे बचते हैं। और एक और संदेश कहता है कि आधुनिक युवा अपनी जीवन शैली, प्राइवेसी और आजादी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके व्यक्तिगत विकास और सपनों में बाधा बन सकती है। बढ़ते तलाक के मामले और रिश्तों में अस्थिरता, समाज में टूटते हुए परिवारों और कोर्ट कचहरी के मामलों को देखकर युवाओं के मन में विवाह जैसी संस्था के प्रति एक अदृश्य डर बैठ गया है। ये बात सही है कि कभी कभी अगर ये मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है तो जो बच्चे जिनकी शादी होने वाली होती है तो वो बहुत डर जाते हैं। और अगर घर में ही कुछ, आपके घर में इस तरह का कोई आपने किस्सा देख लिया हो या आपके रिश्तेदारों में, तो और डर बैठ जाता है कि अरे भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, अभी हमें थोड़ा वक्त दीजिए।
0: अभी जो आज का जो मुद्दा है ना, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा, थोड़ा सा हमारा मन भी भारी हो गया बात करते करते, क्यों ना व्यंजन की ओर बढ़ा जाए।
1: हाँ बिल्कुल,
0: शकरकंद के व्यंजन। तो एक हमारे साथी ने लिखा है, शकरकंद को उबालें, स्टीम कर लें, ठंडा होने पर इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक को मोटा दरदरा कूट लें। अगर फलाहार बनाना है तो इसमें सेंधा नमक और नींबू, कूटी मूंगफली के मसाले मिलकर चटपटा शकरकंदी तैयार है। और इसे मीठा भी बना सकते हैं ना, तो उसे मीठे को उबाल के उसको छोटे यानी मीठा भी खा सकते हैं। तो उबले शकरकंद को टुकड़ों में काट ले, थोड़ा सा घी में भून ले, कढ़ाई में गुड़ को पिघला ले, उसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर उलट पुलट कर सुखा ले, मीठे शकरकंदी तैयार है। आप इसे घी में भुनना नहीं चाहते तो ऐसे भी गुड़ में बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब एक गीत
1: सुन सकते हैं।

0: हम तो ये कहेंगे अपनी हमारे श्रोताओं से कि जिन परिवार में बच्चे नहीं सुन रहे उन्हें ये गीत सुनाइए जहाँ पे उन्हें बताइए कि एक छोटा सा बंगला बनाकर एक नई दुनिया बसाए जो बहुत खूबसूरत है।
1: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता सिंह। इस बातचीत की पहली कड़ी हमने पिछले सप्ताह सुनी थी और अब सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी आपका

0: भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ममता जी,
0: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
1: धन्यवाद।
0: और अब आपकी दूसरी फिल्मों का जिक्र करते हैं विशाल जी। इसके पहले भी आपने फिल्में बनाई हैं, तो उन फिल्मों के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव और लिखने का चुनाव कैसे आपके मन में आता है, क्या क्राइटेरिया होता है?
1: मुझे लगता है कि एक तो मैंने पहले ये डायरेक्टोरियली मेरी पहली फिल्म है। इसके पहले मैंने फौजी 2 मतलब फॉलोअप सीजन ऑफ फौजी 1 जो शाहरुख खान जी का जो सीरियल था उसका एक फॉलोअप सीजन मैंने पिछले वर्ष लिखा,
0: द गर्ल ऑन द हाईवे।
1: वो हमारे अपना हम बहुत सारी आईपीज हमने क्रिएट किए उसमें। okay. वो अपनी आईपी अपना कंटेंट है। द गर्ल ऑन हाईवे प्लस जो है ना हुड़दंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं। बहुत से मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, प्लस जो है ना कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना बहुत समय से वायरल फिल्म्स तो बना रहा था जो कि शॉर्ट्स थी, 10 मिनट 12 मिनट की फिल्म्स होती थी वो, और एड्स भी थे मेरे बहुत वायरल हो जाते थे। तो वायरल शॉर्ट से वायरल सोशल

0: की फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव और लिखने का चुनाव कैसे आपके मन में आता है, क्या क्राइटेरिया होता है?
1: मुझे लगता है कि एक तो मैंने पहले ये डायरेक्टोरियली मेरी पहली फिल्म है, इसके पहले मैंने फौजी टू मतलब फॉलोअप सीजन ऑफ फौजी वन जो शाहरुख खान जी का जो सीरियल था उसका एक फॉलोअप सीजन मैंने पिछले वर्ष लिखा
0: द गर्ल ऑन द हाईवे।
1: वो हमारे अपना हम बहुत सारी आईपीज हमने क्रिएट किए उसमें वो अपनी आईपी अपना कंटेंट है। द गर्ल ऑन हाईवे प्लस जो है ना हुड़दंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं, बहुत अच्छे मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, प्लस जो है ना कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था। तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना बहुत समय से वायरल फिल्म्स तो बना रहा था जो कि शॉर्ट्स थी, 10 मिनट 12 मिनट की फिल्म्स होती थी वो, और एड्स भी थे मेरे बहुत वायरल हो जाते थे। तो वायरल शॉर्ट से वायरल सोशल मीडिया वायरल कंटेंट से थिएट्रिकली वायरल फिल्म बनाने का मुझे एक चस्का भी था कि ऐसी फिल्म बनानी जो सब एक्सेप्ट करें, उसको सब देखें, जिसके बारे में कोई नेगेटिव ना बोले। अब ये अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझ की आवश्यकता थी जो मुझे बहुत समय से जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि कैसे मैं ऐसा कंटेंट लिखूं जिसको सब प्यार करें, जिसमें आप महिलाएं तो महिलाएं, बच्चे तो बच्चे, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर, मौसा फूफा, जो भी आप पॉसिबल है, दोस्त मित्र, आपको हर व्यक्ति के लिए हर रोल के लिए आपको एक कुछ मिल जाए फिल्म के अंदर और आप उस फिल्म को सराहें। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि हो कैसे गई मुझे पता नहीं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी कितना भी अच्छा आप कर लो लेकिन आपको नेगेटिव करने वाले कोई ना कोई जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप समझिए, सोचिए, आपके 9.7 की रेटिंग है, ऑलमोस्ट 10 ही हो गया ऑन बुक माई शो, 1.5 लाख से ऊपर रिव्यूज हैं उस पे। आप नेगेटिव ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। इंटरनेट सोशल मीडिया पे आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा नेगेटिव,
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो ये कैसे हो गया, ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगता था कि लोग लेंगे साइड, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। चूंकि फिल्म में कोई विलन नहीं है, चूंकि फिल्म में किसी को भी एंटागनाइज नहीं किया, चूंकि फिल्म में ऐसा कोई मुद्दा समाज का नहीं है जिसको मैंने केटर नहीं किया। अगर वो पति पत्नी के बीच में वो है तो सबको एड्रेस किया है समाज समस्याओं को। तो मैं इस फिल्म को बोलता हूँ, जब मैं फिल्म को पोजीशन कर रहा था तो मैं बोलता हूँ इसको कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। ये मेरे लिए वो फिल्म है। मैं एज अ फिल्म मेकर क्या बोलूं, एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ,
0: मानवीयता
1: को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ, कुंडलिनियों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मैं एज अ डॉक्टर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन और somebody who's a filmmaker और वो समाज को कुछ तो दे है ना भाई, आप फिल्म बना के दे क्या रहे हो एंटरटेनमेंट के साथ में, बट किसी भी समय पे फिल्म में से एंटरटेनमेंट जाना नहीं चाहिए कि आपको फिल्म जो है ना टिटलेट करती रहे, आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना वो एक
0: बांध
1: के रखे और आपको मजा भी आता रहे।
0: तो यहाँ एक गाना सुनते हैं
1: जी,
0: बताइए कौन सा गाना सुनना है?
1: मुझे लगता है कि मेरी जोरा जबी, वो सुनाइए,
0: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद वापस की फिल्म पर आते हैं विशाल जी, एक आध्यात्मिक कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है, ये तो आपने इसमें हनुमान अंश में तथ्य समय और कहानी को कैसे तीनों में संतुलन बनाया आपने?
1: तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तथ्यात्मक रूप से मैंने रेफरेंसिंग करी अच्छे से, प्रॉपर रेफरेंसिंग करी, तो उसमें बहुत गलत ना चला जाऊं, सिनेमेटिक लिबर्टी तो लेते ही हैं हम सब, लेकिन कहीं गलत ना चला जाऊं, गलत का मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए, उनकी उनके परिवार वाले इनफेंड ना हो जाए, उनके फॉलोअर्स इनफेंड ना हो जाए, या एक आप सनातन को मानने वाले हैं, आप अगर हिंदू धर्म में के बिलीवर हैं, आपकी भक्ति पे कोई किसी तरह का आपको ना बुरा लग जाए, तो संवेदनशीलता जब हम, मुझे मेरा कहना मानना ऐसा है कि संवेदनशील आप जब होते हो, आप जिस सब्जेक्ट पे भी काम कर रहे हो, तो आप एक अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सेंस रहता है कि आप कहीं गलत ना कर दो, तो तथ्यात्मक रूप से मैंने कोई उसको जो है ना बैलेंस करके रखा। कालखंड को मैनेज करना, क्योंकि पीरियड फिल्म्स जनरली बहुत टफ मानी जाती हैं, और माना जाता है कि आप उस कालखंड को करोगे, क्रिएट करोगे तो बहुत महंगा होगा, जबकि मैंने उसको उल्टा सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला कि 4 कलर्स के कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, पांचवा नहीं होगा, और थान खरीदो और उनको कलर करो, तो पगड़ियां बनेंगी या धोती बनेगी या कुछ भी बनेगा, वो सेम कलर, 4 कलर के अंदर पांचवा कलर नहीं होगा कॉस्ट्यूम्स में। सिमिलरली ऑन द वॉल्स, जो भी वॉल्स हैं, एक तो मैं सेलेक्ट ही ऐसी जगह करूंगा जहां पे किसी तरह की मॉडर्निटी ना हो, तो उसको बचना वहां से, लेकिन जो मैं पेंट करना है, पेंट करने के लिए भी लगभग 4 कलर है, उनका पैलेट है एज एन वॉल का, जिसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं, और कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको बोलते हैं, तो कॉस्ट्यूम के कलर्स में और इसके कलर्स में इनको 4-4 कर दिया, प्लस मैंने पूरी फिल्म को 9 भाग में बांट दिया, लगभग 9 चैप्टर्स थे, उनको बांट दिया। और ये करने से हुआ ये कि हम कहीं ना कहीं वो जिन गलियों में घूम रहे थे, जिन वॉल्स को हम देख रहे थे, जिसको जो हमें कलर्स पता था, सबको क्लैरिटी थी कि यार ये कलर नहीं हो सकता, कोई कलर हो ही नहीं सकता मॉडर्न है, तो पेंट करो, रीपेंट करो उसको, मतलब जो आपको वापस करोगे तो रीपेंट कर दो, इफ दे आर ओके विद द सेम पेंट इट्स ओके। तो ऐसे करते करते करते मिट्टी के बने हुए मकान, पुरानी जो वॉल्स, पुराने कोतवाली, पुरानी जगह, उन सबको हमने टारगेट किया, फोकस किया, और मिलते भी गए हमको, तो ढूंढते ढूंढते हमको मिलते भी गए। तो ऐसे करके मैंने पीरियड अप्रोप्रिएट किया। और तीसरा सवाल था आपका
0: कि कालखंड और इसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना
1: कैसे? बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हूँ बहुत समय से, पिछले 20 साल से। मैं उसका श्रेय पूरी तरह मैं अपनी माताजी को देता हूँ, मुझे कंसिस्टेंटली जो है ना वो पुश करती रहती हैं और कुछ कुछ बताती रहती हैं कि ये सुन लो, ये हो गया, वो हो गया, ये किताब पढ़ लेना, भले मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ उनकी बात को मना नहीं करता, मैं कहता हाँ मैं कर लेता हूँ। और कई बार वो बोरिंग भी होता है जो बोलती हैं, कह रही नहीं ये सुन लो वो सुन लो, अब मैंने जिस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गए मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं नई नई चीज़ों में जंप नहीं करता, उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 साल से मैं जो फॉलो करते आया, बिकॉज ऑफ मदर, आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर प्रिंसिपल्स। किसी का कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, अगर सिद्धियां आई तो कुंडली जागरण हुआ होगा, कुंडली जागरण के बिना तो सिद्धियां नहीं आएंगी, तो सिद्धियां कहां से आई होंगी? तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको यू हैव टू डीप डाइव, यू हैव टू फिगर आउट कि हुआ क्या होगा। तो नाथ संप्रदाय के जो साधु मिलते हैं, जहां पर सासा हाले हासा चाले सॉन्ग है, जहां पे वो इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपके भीतर जो है ना, भीतर बड़ा उजाला भासे, एक मणिधर आगे, दीज लाइन्स जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल, कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं, जिसको मणि बोलते हैं, कि कुंडलिनी का जो मणि है, तो भीतर बड़ा, और जो अंधेरे में जो ताला खोले, वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले, अंधेरा ही है ना, आप जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी, वो मुझे मेरी अपनी माताजी की वजह से बहुत मिली, प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट, ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ। मैं एक वंदे भारत ट्रेन में बैठा था, 6 घंटे का समय था, मेरे पे आईपैड पे वो बुक थी, मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया, उसके 58वें पेज पे

0: बजे सासा आले आसा चाले मिल गया, जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से, और वो इतनी सिंपलीफाइड और उतनी गूढ़ और सिंपलीफाइड, येट सिंपलीफाइड. सो आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंपलीफाइड. यू विल लव टू हियर देम इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड. गूढ़ इन्फॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिले, पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल. इफ यू विश टू गो इन टू, आप डीप डाइव करोगे, अगर आप मैंने तेरे ही भरोसे अनुमान, आप डीप डाइव करोगे तो आपको उसके अंदर वो मिलेगा जो आप शायद जिंदगी में ना खोज पाओ.
1: बिल्कुल.
0: उतनी क्लैरिटी ना मिले. तो मेरा ये जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, दैट आई प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. कि अगर आप उसमें डीप डाइव करना चाहते हो तो आप कर लो फिर.
1: बिल्कुल.
0: आपके पास में ये रास्ता है, सुगम रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए. मैंने समझा है, मैंने आपको समझा दिया. हो सकता है कि मैंने 5% ही समझाओ, लेकिन एटलीस्ट 5% 4% तो समझेंगे आप. फिर आपकी जर्नी, आप देखेंगे आप कैसे कहाँ जाना है.
1: तो यहाँ पर ये आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है. और माँ पिता से हम बहुत कुछ सीखते हैं, कभी डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो ऐसी कोई शरारत वाली घटना भी बताइए. अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे कि तो डांट पड़ी हो वो भी बताइए.
0: बहुत, मैं अपने भाई की वजह से बहुत मार खाता था. मेरे भाई मुझे जो है ना ट्रैप करा देता था कुछ कुछ चीजों में. कभी बचपन में भाई ने मुझे बहुत जो है ना इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है.
1: जी.
0: तो मार तो मैं खाता था. हाँ. लेकिन भाई की वजह से खाता था. और वो तो फिर माता जी के हाथ में जो आ जाए, फिर वो. हाँ. पाइप होता था जिससे.
1: हाँ.
0: बेलन पाइप, चिमचा, तो कर, ये तो आप सब देखते हो. लेकिन जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना जिसमें.
1: हाँ.
0: पानी भरते हैं.
1: हाँ.
0: वो बड़ा खतरनाक होता था, वो चिपकता भी बहुत था वो. तो वो तो मैंने बड़े काफी उम्र तक खाया है वो. अच्छा. मुझे याद नहीं कौन से, मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया है.
1: तो लेकिन क्या बात होती थी, घटना क्या रहती थी?
0: Of course, she will just get furious and then she will beat and then now you don't have any option because you ये तो जॉब है.
1: तो मतलब कौन सी गलती आप करते थे जिससे मारना पड़ती थी?
0: मैं एक्चुअली कोई सच वो नहीं थी. इन्फॉर्मेशन कैसी कैसी पास होती है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी कि आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको आप यू वर्क इट आउट. एंड आई टेल यू वन ऑफ द सीन जहां पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को और महाराज जी को उतार देते हैं. आपको जो हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही नहीं उस सीन के अंदर. किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी अरोगेंट है, उन्होंने अपने गुस्से में आके उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया. मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम, सोचता हूं मैं इस बारे में. तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया. तो अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है
1: जी.
0: पूरे सीक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं बोलता क्योंकि डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे. वो चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे, अगर आप याद हो आपको वो जब रोने लगता है, वो कहते हैं यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी साधु संत को नहीं उतारेंगे, तो ही लुक्स एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही नोज दैट ही इज, ये मेरे लिए कर रहे हैं. तो मैं उनका साथी, मुझे भाई भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं, और मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं. दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स. तो इंटरप्रिटेशन है. अगर आपने इंटरप्रिटेशन में ध्यान नहीं दिया होता मैंने, तो शायद वो सीन इतना अच्छा वर्क नहीं करता. हो सकता कोई भी ना मुझसे क्वेश्चन करता.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन फिर भी मैं उस बात पे गौर किया और उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए फिल्म का इंटरप्रिटेशन चेंज किया. दैट वर्क्ड फॉर पीपल. किसी ने मुझे कल ही बोला कि द वे ही लुक्स एट महाराज जी एंड स्टार्ट्स क्राइंग, वो मेरे लिए सीन में सबसे ज्यादा वर्क किया.
1: तो यहाँ माँ का ही जिक्र चल रहा है, तो मुझे लगता है कि माँ के नाम एक गाना होना चाहिए. माँ पिता के नाम कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
0: माँ के नाम पे, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे.

0: बहुत सारी बातें माँ पिता के बारे में संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे थे, मैं MBBS कर रहे थे, बाकायदा एक डॉक्टर बन चुके थे, फिर अचानक फिल्मों की ओर झुकाव कैसे हुआ, मतलब वो बीज कैसे आया? आप इतनी बड़ी, मतलब एक आपको नौकरी मिल चुकी है और फिल्मों की ओर जाना कितना बड़ा रिस्क था, तो कैसे आपने चयन किया ये?
1: आई थिंक बहुत टफ था, मुझे लगता है कि मैं आ तो गया मुंबई और आया क्यों, मैंने बता दिया कि मैंने लखनऊ में ऐसा माहौल में चला गया मैं कि मुझे आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंट आर्ट फॉर्म में पोइट्रीज लिखने शुरू कर दी मैंने, तो वो कॉलेज में भी करता रहा, परस्यू करता रहा करता रहा, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेडिसिन पसंद आ गई। अब वो दोनों पसंद है, अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बना नहीं कुछ सालों, मैंने जो है ना यहाँ पे नौकरियां भी की मुंबई में और उसके बाद में कुछ समय मैंने अपनी क्लिनिक भी चलाई, और बाय द एंड ऑफ इट मुझे समझ में ये आया है कि एक समय ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि इट इज टू एग्जॉस्टिंग टू, ये दोनों अलग अलग दुनिया है, मैं इस दुनिया में जाता हूँ फिर इस दुनिया में आता हूँ, और मेडिसिन जो है ना, चूंकि आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन, मैं अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यानी साइलेंट भी नहीं करता था, पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो है ना जोखिम में हो और वो बोल रहे हो, लेकिन लोग कॉल ऐसे भी करते थे, सर 2 बजे के, सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज है, बोल रहे पेट में गैस बन गया, तो फिर मुझे एकदम समझ में आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पे चलते हुए मैंने अचानक से एक दिन क्लिनिक बंद कर दिया, और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से तो ऐसा नहीं है उनको छोड़ दिया जी। सागर में नैया डाल दी, उनको मजार में नहीं छोड़ा मैंने जी। तो खैर, विद देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 में मैंने अपनी क्लिनिक बंद की, और उसके बाद से मैंने उसी समय मैंने कैमरा खरीदा, और सेम समय मैंने म्यूजिक भी छोड़ा था, म्यूजिक और मेडिसिन दोनों छोड़ दी मैंने। मैंने एक फिल्म साइन की थी और काफी बड़े प्रोड्यूसर थे उनके, मैं आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया बाद में आगे जाके, तो उनकी एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैं कर रहा था, सारे गाने सेलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल तक उस पर काम चलता रहता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गाने शायद वो डायरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या वो डिसाइडेड कि मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हूं नहीं, मैं म्यूजिक कंपोजर शायद सिंगर सॉन्ग राइटर ज्यादा अच्छा हूं, मैं अपने लिए अच्छा गाने म्यूजिक बनाता हूं, गाने बनाता हूं, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए मैं शायद बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं इस बात को क्वेश्चन करने लगा, और अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट करना था, लिखना था और डायरेक्ट करना था, मेरा वो अल्टीमेट उद्देश्य था, तो मैंने कहा कि जब वो ही अल्टीमेट है तो मैं क्यों ना उस पे ही लगूं। 2011 से 26 तक, 15 साल तक, 14 साल तक, वो 25 तक मैं कहूंगा, वो यात्रा पूरी मेरी चर्निंग चली है टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, टू राइटिंग, ये वो सब कुछ जो भी है। तो पहली स्क्रिप्ट मैंने 6 साल में लिखी, 6 साल तक एक ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास में, दूसरी स्क्रिप्ट मेरे 1.5 साल में, अनदर स्क्रिप्ट फिर साल में, फिर हर 2 महीने पे एक स्क्रिप्ट लिखने लगा मैं, तो ऐसा मेरे पास कुछ 53 कॉन्सेप्ट 54 स्क्रिप्ट प्लस कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं अलग अलग समय पे काम करता रहा हूं या करना चाहता हूं भविष्य में।
0: और ये स्क्रिप्ट 15 दिन में लिखी, तो अगली स्क्रिप्ट 10 दिन
1: नहीं, ऐसा नहीं,
0: डिजिटल माध्यम से।

0: गाने के बाद विशाल जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि एमबीबीएस आपने बचपन की उस संसार के बारे में बताया जहां माँ की मार थी, डांट थी. जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस समय टीचर्स की, प्रोफेसर्स की डांट भी तो रही होगी. उनके बारे में भी बताइए, कोई दिलचस्प घटना बताइए.
1: तो मेडिकल कॉलेज में जो है ना, कुछ होता नहीं, इज्जत नहीं होती है जूनियर की, है ना. मतलब ऐसा होता है कि वो कॉलेज के अंदर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति होती है पहले साल में. और मुझे क्या था कि मुझे, अब वो नया नया कॉलेज में हो लेकिन जाना तो बंबई है
0: जी.
1: तो मैं दोस्तों के साथ में, दो तीन दोस्त मिलके बंबई चले गए. हमने 15 दिन का बंक मार दिया. अब उसमें मेरा दूसरा दोस्त था, वो भी एमबीबीएस ही कर रहा था, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, निरंजन पांडे. उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था. और वो बहुत ही होमसिक भी था, ये सब चीजें थी. हम तीनों दो लोग और मेरा एक लखनऊ का दोस्त, हम सब लोग बंबई आए कि वहाँ पे जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो हम पिच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. करके 15-17 दिन मैंने वहाँ पे करके वापस गया अपने कॉलेज. तो वहाँ पे बंक मारना, अच्छा तो वहाँ पे मेरे बहुत, अभी तो बहुत बहुत दिल अजीज टीचर हैं वो, रामजी पवार उनका नाम है, डॉक्टर रामजी पवार. एनाटॉमी पढ़ाते थे वो, ऐसा टॉल, डार्क, हैंडसम, 6 फीट, और मतलब क्या पर्सनालिटी थी. मतलब हमारे कॉलेज के अमिताभ बच्चन थे वो, सब फैसिनेटेड रहते थे उनसे. लेकिन वो बहुत फ्यूर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे.
0: अच्छा.
1: और वो पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे. तो मेरे थोड़े से बाल लंबे हो गए, थोड़े लंबे बालों, मुझे लंबे बाल करने का शौक भी था, बंबई से आया लंबे बाल के साथ में. और गलती से मैं जो है ना, आगे वाली सीट पे बैठ गया.
0: अच्छा.
1: अब उन्होंने पहले से नोटिस कर रखा था कि ये लड़का गायब है, या बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया है. तो उन्होंने बोला, किसी को सवाल किया कल, क्या एनाटॉमी का कुछ तो सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे नहीं पाया. और वो पता नहीं, वो आगे बैठने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने मेरा सर पकड़ा, ऐसा बाल पकड़ और बाल पकड़ के पूरा ऐसा, और कई बार उन्होंने 7-10 मिनट का लेक्चर बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते किया. तो जो जो इंसल्ट थी, जो जिसको बोलते हैं, हाँ, जो अनभिरा की, और क्या रे, क्या कर दिया मैंने, और ये आगे क्यों बैठना था. तो ये सारी चीजें जब हुई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से मेरा एक इंटरेस्ट वापस पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, क्योंकि इंसल्ट हो गई है. अभी तक तो आप म्यूजिशियन हो, पोइट हो, एवरी

0: वन इज टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू समाउ मैं ऐसा था कि मैं जब पहुंचा था अपने कॉलेज तो पहुंचने से पहले लोगों को पता था कि देयर इज दिस गाय जो कि इसका बैंड है लखनऊ में और बहुत अच्छा गाता है ऑल ऑफ दैट. तो मैं ऐसा छोटे से स्टार की तरह एंट्री हुई थी कॉलेज में और वो जो धुलाई हुई मेरी उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया नहीं तो पहले साल में फेल हो जाता मैं.
1: जी, यहाँ पर पढ़ाई और धुलाई दोनों की बात हो गई. बैंड का जिक्र किया लखनऊ में, कौन सा बैंड था? म्यूजिक बैंड?
0: म्यूजिक बैंड था, अपने मेरे अपने कंपोज सॉन्ग्स थे. मेरे एक मित्र हैं शिखर श्रीवास्तव, अभी वो गल्फ में चले गए, वहाँ म्यूजिक टीचर हैं. और भी दो दोस्त थे ऐसे, तो हम मिलके जो है ना वी हैड अ बैंड, तो वहाँ पे जाके लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे ओरिजिनल सॉन्ग्स के. सो वी वर इन अ वे लिटिल पॉपुलर ऑल्सो. But then move to गोरखपुर. तो गोरखपुर में तो क्या ही होता है, मतलब कॉलेज कल्चरल साल में एक बार होते हैं, उन तीन दिन में ही अपन स्टार होते हैं, उसके बाद फिर वापस वही जो है जैसे बोलते ना कि रेगुलर डेज ऑफ लाइफ. तो वो पांच छह साल मैंने बहुत म्यूजिक को मिस किया कि मैं सीख नहीं पा रहा था और ये सब कुछ था. लेकिन फिर आके मुंबई आके भी मैंने एक बार इन बिटवीन 2017 एंड 2020 आई डिड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, शॉट देम वेल, ऑल ऑफ दैट. तो वो एक इंटरेस्ट जो था उसको मैंने पूरा कर लिया.
1: अगर याद है वो म्यूजिक बैंड का कुछ,
0: I can sing a song. Yeah, I can sing a couple of lines. एक हवा का हूँ झोंका उड़ता ही फिर रहा हूँ इस गली उस डगर को घूमता फिर रहा हूँ रास्ते ये जिंदगी क्या है गम क्या है खुशी कौन जाने यहाँ
1: क्या बात है.
0: This was one song.
1: बहुत
0: उसकी उसकी एक दो लाइनें बहुत सुंदर लाइनें, वो मैंने लद्दाख में पूरा फिल्माया था उसको.
1: यहाँ जिक्र कविता का भी चला ना, और यादों के गलियारों में इस समय सैर कर रहे हैं, तो कोई कविता याद है वो जो उन दिनों में लिखी है, कोई खास कविता?
0: एक खास कविता है जो मैं अभी मैंने रिसेंटली एक जयपुरिया स्कूल है लखनऊ में वहाँ पे बच्चों के सामने भी पढ़ी मैंने, क्योंकि लगभग मेरी उस समय की कविता है. अभी मैं कविताएं लिखता हूँ पर मैं वो थोड़ी मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड. जीवन क्वेश्चन अपने आप से हरदम होता है ना कि ये जीवन है किस लिए, क्यों जी रहे हैं जीवन, अल्टीमेटली क्यों जी रहे हैं. उसको क्वेश्चन करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूँ, मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ.
1: क्या बात है,
0: इतना ट्रिवियल है ह्यूमन लाइफ. मैं कुछ नहीं बस मैं एक बात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ, जमी से हूँ उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया.
1: क्या बात है, वाह.
0: जमी से हूँ उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया, देख तेरा लाल माँ तुझे सांझ ढले मिल गया.
1: वाह वाह वाह,
0: ईश्वर माँ है. और डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, हूँ धन्य मेरी खाद से जो एक फूल खिल गया.
1: क्या बात है, वाह. तो आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू उजागर हो रहे हैं और तो अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं. बताइए कौन सा गाना सुनवाए.
0: गाना आप सुनाइए रहमान साहब का वंदे मातरम. That's my one of the favorite tracks.
1: सुनते हैं ये गाना.

0: अब गाने के बाद विशाल जी चाय वाली एक कविता
1: जी
0: बड़ी मशहूर हुई है आपकी, तो याद कीजिए और सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी, तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या जो सिनेमा में मैंने सीखा है, स्टोरी टेलिंग में जो सीखा है, क्या मैं उसको किसी कविता पे अप्लाई कर सकता हूँ।
0: जी,
1: तो चाय को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना के, यानी चाय को एक हीरो बना के मैंने एक कविता लिखी।
0: जी,
1: इसके अंदर वो सब कुछ है, इसके अंदर विलन भी है, इसके अंदर महिमा मंडन भी है, इलेवेशन सीन भी है, जो होते हैं ना फिल्मों के जो थ्री स्ट्रक्चर होते हैं, तीन स्ट्रक्चर भी हैं, फिर रेजोल्यूशन भी है।
0: तो क्या तरन्नुम में भी गाते हैं?
1: नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप इसे
0: सुनिए। ठीक है, सुनाइए।
1: चाय को मना कौन करता है भाई,
0: चाय को मना कौन करता है भाई।
1: कत्थई सी, रसीली सी, नशीली सी, अदरक सी तीखी, गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक, करंट मारती, जगाती, हंसाती, मूड बनाती, मिलने के बहाने सुझाती,
0: क्या बात है,
1: मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय,
0: क्या बात है,
1: होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: कत्थई सी, रसीली सी, नशीली सी, अदरक सी तीखी, गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक, करंट मारती, जगाती, हंसाती, मूड बनाती, बातें कराती, मिलने के बहाने सुझाती, मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय, होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई। लेखक रसपान कर उपन्यास लिख दें, कवि मीठी जुबान लिख दें, फिल्मकार कहानी कर दें, पात्र सब मुंह जबानी कह दें,
0: क्या बात है,
1: पात्र सब मुंह जबानी जुबानी कह दें, टपरी पे की कटिंग देती है गुहार, सुगंध छोड़ती है, ले आती है बाहर, और कड़वी है कॉफी, यहां से विलेन की एंट्री,
0: और कड़वी है कॉफी
1: और कड़वी है कॉफी और चाय की है अपनी ही मिठास,
0: क्या बात है,
1: और कॉफी बोले अंग्रेजी पर अपनी चाय करती है हिंदी में बात,
0: वाह,
1: थकान मिटा देती है, इसे मना कौन करता है भाई। अब ये हो गया, विलेन खड़ा कर दिया, अब रेजोल्यूशन है भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है,
0: क्या बात है
1: भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है, उसकी अपनी शान होगी, कोई ऊंची दुकान होगी, होंगे एयर कंडीशन में मोका अमेरिकाने की चुस्की के अपने स्वाद, तुम्हारी कॉफी रहे आबाद,
0: क्या बात है, वाह,
1: पर अपनी चाय जिंदाबाद जिंदाबाद,
0: वाह,
1: और फिर कांच के कप में मचलती चली आए, और कैसी चमक छोड़ती है, इसे मना कौन करता है भाई,
0: वाह,
1: इसे मना कौन करता है भाई, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे हुनर आपके सामने आ रहे हैं आज की इस बातचीत में। विशाल जी, एक बार फिर आपकी फिल्म की ओर चलते हैं, हनुमान अंश की ओर। इसमें जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा, तो ये पात्र कैसे मिले, मतलब कैसे आपने चयन किया कलाकारों का, एक बच्चा है फिर बड़ा बड़े कलाकार का, सत्य
1: शोभना सत्य
0: कहाँ से मिलेगी?
1: तो मैं एक ही करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जिनको आप कलाकार को देख रहे हैं,

0: जिनका नाम है चंदन के आनंद, जिन्होंने डॉक्टर भोसले का रोल प्ले किया है,
1: जी जी,
0: वो मेरे मित्र थे, एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे। पर बहुत समय के बाद में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, नॉट भोसलेस, मुझे चाहिए था नासिर अली के रोल के लिए
1: जी।
0: तो मैंने उनको नासिर अली के रोल के लिए चयनित किया था। एक राजीव मिश्रा जी हैं, उनको मैंने सुकाम के लिए चूज किया था। और हुआ सेट पे ऐसा कि चूंकि मुझे डॉक्टर भोसले, जिनको मैं कास्ट करना चाह रहा था, कोई बड़े एक्टर थे
1: जी,
0: वो जब उनका नहीं हो पाया आखिरी तक, तो मैंने फिर इनको नासिर अली की जगह डॉक्टर भोसले पोज किया, और जिन जो सुखी राम प्ले कर रहे थे वो नासिर अली पोज किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि, और वो ऐसे फिट हुए दोनों के दोनों, आई हैड एन आइडिया कि ये होगा, और मैं दिमाग में था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। तो चयन तो किसी और कैरेक्टर के लिए, पांच कैरेक्टर्स उस दो सीन के अंदर थे जिनको अपग्रेड किया मैंने। तो जो नीचे वाले रोल पे था ऊपर गया, उसके ऊपर वाले ऊपर पे गया, ऐसे ऐसे करके सब सबका ऐसा हो गया। देन जो बच्चा है विहान शेडगे, जिसने लक्ष्मी नारायण जी का रोल प्ले किया है, बचपन का लक्ष्मी नारायण का रोल प्ले किया है, उसके साथ मैंने एक ऐड किया था पिछले साल, उसके पहले साल, और वो और जो पार्वती जिन्होंने प्ले किया है नेहा परांजपे, उन दोनों दोनों मराठी हैं, और वो मैंने मरा, हाँ,
1: नेहा परांजपे विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर थी,
0: रही हैं। अच्छा, क्या बात, क्या बात है,
1: अभी भी कैजुअल
0: आकाशवाणी करती हैं,
1: जी जी।
0: तो नेहा और इन दोनों ने, मैंने एक मराठी एड किया था, और वो इतना पॉपुलर हुआ एड, वो मैं मराठी मैं बोल नहीं सकता, समझता हूँ, मैंने वो मराठी एड था, और वो इतना पॉपुलर हुआ, ये दोनों ने इतना अच्छा उसमें एक्टिंग की थी, और इतने सिंगल टेक एक्टर्स थे लोग, दोनों के दोनों, एक पुणे से आया था और एक यहाँ से आया था, बट इट्स सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन दैट आई ऑलवेज थॉट कि मैं इनको किसी दिन कास्ट करूंगा। तो ये दो कैरेक्टर वहां से आए। फिर जिन्होंने राम बेटी श्रीमती राम बेटी शर्मा जी का, मतलब महाराज जी की पत्नी का रोल प्ले किया है, वो उनको मैंने चयनित किया, उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने पहली बार कैमरा फेस किया है। ज्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो है ना, वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सिक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं, वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं, वो तीनों के तीनों एक एल्बिनो है, और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ के लेके आके हमने उनको उनसे एक्टिंग कराई है, जो पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। शोभना सत्य जो है ना, वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरे लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है, और वो नीम करोली बाबा जैसे महाराज जी से दिखता था वो। मैं जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आया था, तो मैं एग्जैक्टली सीधे इमीडिएटली मैंने बोला, तो महाराज जी हैं, और मैं उस पर गुस्सा था कि वो तीन दिन बाद आए, लेट आया था वो। सो आई वाज एंग्री एट हिम, कह रहे यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम तीन दिन लेट आ रहे हो। तो मैं गया, लेकिन भूल गया, मैं तो बोला रही महाराज जी, बट मेरे लीड एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है उन सेट। तो रिप्लेसमेंट के तौर पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ मंदाकिनी रिवर पे, तुलसी घाट पे, चित्रकूट के तुलसी घाट पे, जहाँ पे तुलसी जी ने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं, उसी घाट पे मैं उसका 5 घंटे तक टेस्ट करता हूँ, और फिर वो सुर पकड़ लेता है। जब वो सुर पकड़ लेता है, तो मेरी एक आदत है, आदत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि मैं एक्टर्स को बहुत ओवर गाइड नहीं करता हूँ, मैं उनको ओवर इन्फॉर्म भी नहीं करता, मैं सिर्फ उनसे उनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ।
1: अच्छा,
0: मेरी टेक्निक ही है कि मैं सारे एक्टर्स को, चाहे नया हो पुराना हो, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली बताता रहता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना रिसेप्टिव होता है और इतना समझदार है कि जैसे ही वो अपने कैरेक्टर को समझ पाएगा, वो बिहेव करने लगेगा वैसा।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने बच्चे के सामने पिता की तरह बिहेव करते हैं, वही हम पत्नी आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, और मैं माता आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, दोस्त आता है तो अरे यार करके बात शुरू कर देता हूँ। हम अपने जीवन में जैसे ही हम अपने रोल को समझ पाते हैं, हम इमीडिएटली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतने सिंपल प्रोसेस है, मैं किसी भी, जितने भी आपने एक्टर्स देख रहे हैं, उसमें कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, कुछ लोग बहुत वीक एक्टर्स भी हैं, पर उनका एक ही मेरा तरीका है, मैं सब किसी को कैमरे के सामने डांटता नहीं हूँ। अगर मुझे किसी एक्टर से बात करनी है, मैं उसको साइड में ले जाऊंगा और फिर से वही बात समझाऊंगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले से। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स, तो यही शोभना के साथ में भी हुआ कि मैंने उसको ओवर इन्फॉर्म नहीं किया। वंस ही कॉट द कैरेक्टर, जब उसने कैरेक्टर पकड़ लिया, डायलॉग्स उसको याद है, हिंदी उसकी अच्छी है, तो मैं क्यों उसको ओवर इंस्ट्रक्ट करूं। और वो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई कि हमने 22 दिन में रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने 2.5 घंटे की फिल्म शूट करी है।
1: हिट हुई। तो अब यहाँ एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से हनुमान अंश फिल्म का ही एक गाना प्ले करें, जिसका टाइटल है सासा हाले हासा चाले।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: विशाल जी, संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जब आपका संघर्ष चल रहा था उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है कि कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लें तो फिर वो सब चलता रहता है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैसे कमाने का या नाम कमाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए इम्पैक्ट सिनेमा, समाज पे इम्पैक्ट होना, समाज पे क्या असर डालेगा, आप कैसे, क्योंकि इंफॉर्मेशन की दुनिया है, इंफॉर्मेशन का एज है, इस एज में इंफॉर्मेशन ही सबको ड्राइव कर रही है। हम ये पानी के बॉटल से पानी पीना चाहिए हमको, ये बेसिस इंफॉर्मेशन है और यही ड्राइव कर रहा है, तो गलत है सही है वो एक वो बात की बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के दुनिया में आप इंफॉर्मेशन को कैसे पॉकेट करो और समाज में एक एक, एक नई राह पे उनको एक नया इंटरेस्टिंग कोई पर्सपेक्टिव दो, ये ड्राइव करता है मुझे, तो वो इसलिए मुझे कभी कभी हुआ नहीं। और मैं बहुत ही, रघु जी जानते हैं बात, कि मैं बहुत मॉडेस्ट लाइफ जीता हूँ, कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है और पार्टियां वार्टियां नहीं करता हूँ, किसी तरह कोई खर्चा अदरवाइज है नहीं, जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है वो, खाने पीना और जो किराए हैं यही मेरे खर्चे हैं, इसके ऊपर किताबें खरीदना और फिल्में देखना ये दूसरे खर्चे हैं, जो एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि जो लग्जरी है, या कभी टेंटिंग वेंटिंग करने के लिए उस तरह, उसमें बहुत मुझे मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाके मतलब टेंटिंग करूं और एकांत में जाके, तो ये मेरे शौक है, जिस वजह से मैंने काफी अपने जीवन को बहुत ही मॉडरेट लाइफ में, मिनिमल और मॉडरेट लाइफ की तरह से जीता हूं, तो बहुत आवश्यकताएं जब नहीं होती हैं तो आप किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका जीवन चलता रहता है। जीवन जब चलता नहीं है, जब उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है और आप किल्लत में हैं, इसमें हैं, उसमें, फिर आप उल्टी सीधी संगत में जाते हैं, फिर आप नए नए रास्ते निकालते हैं जो सही रास्ते नहीं है, तो इनकी वजह से मुझे खास कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और मैं बहुत जो मेरे अंदर है वो बहुत वोकल हूं उसको लेके मैं, और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, तो मुझे इस परिवेश में रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हूं या मुझे सक्सेस पानी है। फिल्म बनानी है, ये एक

0: डेफिनेटली एक बात थी जो कि हरदम खिचोड़ती थी कि यार सब कुछ कर लिया है, फिल्म ही बन रही है अपनी।
1: जी विशाल जी, रघु का जिक्र आपने किया, रघुविंदर सिंह
0: जी,
1: और फिल्म में इनका नाम भी बाकायदा हम देखते हैं
0: जी,
1: तो इनके बारे में बताइए, इनकी फिल्म में क्या भूमिका है और क्या योगदान रहा है आपकी इस फिल्म मेकिंग में?
0: मुझे लगता है कि जीवन में मतलब काफी मेरे मित्रों के नाम फिल्में हैं, और जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड्स में से, मतलब मैं कहूँगा रघु ही एक अकेले फ्रेंड है जो मेरे घर में मतलब घर की तरह से ही रहे हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं था, ये मेरे घर पे आके टिका करते थे ना, अपना जॉब करके आ गए तो अपना जागरण में काम करते थे, फिर फिल्म फेयर चले गए, तो उनके साथ में एक जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक वो भी है कि हम एक दूसरे से सलाह भी बहुत लेते हैं, तो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से, और मैं भी इनका सलाहकार हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सलाह लेते हैं। फिर मैं डॉक्टर हूँ इनका
1: जी।
0: तो इनकी तबीयत जब जब खराब होती थी तो जो होता था तो मैं इसका इलाज भी करता, तो मेरे घर पे आके ही फिर मेरा इसको हॉस्पिटल बना के उसमें इलाज भी कराते थे
1: जी।
0: लेकिन हमने साथ में काम, शायद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ काम ऐसा किया, अब हम साथ में काम करेंगे भविष्य में। लेकिन रघु की जर्नी, रघु का जो उसकी बेस्ट उसकी क्वालिटीज हैं वो ये हैं, वो बहुत सारा बहुत सीखता हूँ उससे कि कैसे हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, हाउ टू द पूरी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो पीपल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है, इफ यू नो हाउ टू मैनेज, एंड ही नोज इट सो सो वेल, एंड बहुत बैलेंस्ड है, बहुत शार्प है, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी थॉट है, और हिंदी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे, तो हमें हिंदी भी बहुत जोड़ती है आपस में, मतलब मैं भी अपने आप को हिंदी नाजी नाजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे लगता है फ्लैग बेयर हूं मैं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना चाहिए इसको, मैं बॉलीवुड नहीं कहना पसंद करता हूं, मेरे ट्विटर वगैरह जहां भी जाएंगे आपको लिखे लिखा मिलेगा फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नॉट बॉलीवुड, तो वो हमारा
1: वो इलाहाबाद के आप लखनऊ के
0: जी,
1: ये भी एक रिश्ता है, तो
0: मिले तो ही मुंबई में थे, मेरे पेशेंट थे जब मैं क्लिनिक चलाता था, तो ये एक दिन एक मित्र मनीष,
1: अभी तो आपके बहुत सारे पेशेंट हो गए फिल्म के माध्यम से, जो मरीज हो गए हैं कि आपसे मिलने के लिए इच्छुक है एक लंबी तादाद, अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन होते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर और राइटर के इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं आप, बहुत सारी बधाइयां। यहाँ हमें हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुंबई में रहते हुए आप लखनऊ रहे और बुंदेलखंड का जीवन जिया है, तो यहाँ उन शहरों को क्या चीज मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं?
0: एक तो वो शांति और जो बेफिक्री होती है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा वहां जाते से ही आपको एक शांत वो महसूस होता है, जैसे कि जीवन चल रहा है उसी पेस पे चल रहा है, प्रॉब्लम जैसे मेरा अंतरंग मेरा मन चल रहा है मेरा शरीर चल रहा है, यहाँ पे शरीर और वो सब पीछे रहता है, और आप हरदम कॉन्स्टेंटली उसको कोपअप करने के लिए कॉफियां चाय दुनिया भर के का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि आप जो है ना उसके साथ कोपअप कर पाओ। लेकिन मुंबई जो है मुझे बहुत सुंदर शहर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो यहाँ लोगों के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता प्रॉब्लम, तो एक बहुत सिक्योर्ड शहर लगता है
1: जी, बिल्कुल बहुत ऐसा अनुशासित
0: है, लोगों से आपको भय नहीं होता, लोगों ऐसा लगता नहीं कि आपको ये व्यक्ति कुछ बात मांगने पूछने जाएंगे तो वो आदमी मना कर देगा, बहुत सौहार्द रहता है, लोग बहुत हेल्पिंग है, और जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित शहर है, जिस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, ऑटो वाला कभी आपको मीटर उल्टा नहीं मारता है, ऐसी हजारों खूबियां हैं शहर के अंदर
1: जी।
0: जो वहां पे आपको टेंशन होती है वहां पे उलझन होती है, जिस तरह से लोग जो है ना हर चीज को मतलब ग्रैब करने के लिए दे कॉम्पीट एंड बहुत ज्यादा, तो मुंबई में उतना वो मुझे लगता है इस मामले में बहुत रिलैक्स है, लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे कि सुबह कहाँ की अच्छी होती है और शाम कहाँ की अच्छी होती है, तो वह लखनऊ से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं होती है,
1: बिल्कुल बनारस की सुबह और
0: लखनऊ की शाम, अवध की शाम,
1: अवध की शाम
0: जी।
1: जी विशाल जी, एक आखिरी बात जो पहले हमें जाननी चाहिए थी, मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ कैची धाम जहाँ पर आप रहे हैं, कैची धाम की पहाड़ियाँ तो किस तरह से आपको मोहित करती रही, और फिल्मांकन भी उन्हीं इलाकों में किया है, तो कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में।
0: तो आप चूंकि आप देख के आपको लग रहा है कि वो उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं, वो सब चित्रकूट है।
1: ओहो,
0: और
1: चित्रकूट
0: चित्रकूट है।
1: ओहो,
0: तो जो भी आप उसमें बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब हमने VFX पे क्रिएट किया है।
1: चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश, चित्रकूट
0: उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो है ना।
1: वाह क्या बात है, और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम,
0: कैची धाम है,
1: क्योंकि आपने कई बार
0: धाम भी दिखाया, जो भी आपने कहा वो अगमर्षण कुंड है जहाँ पे यक्ष का और युधिष्ठिर का

0: बाद हुआ था। हाँ। वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट के डीप इन जंगल्स है, जहाँ पे तेंदुए और दुनिया भर के वो सब हमारे यूनिट ने भी देख लिए, तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं वहाँ पे, और अजगर वजगर सब कुछ था वहाँ पे,
1: घने जंगल हैं।
0: तो हमने वहां जाके शूट किया उसको, अगमर्षण कुंड में धारकुंडी आश्रम था वहां पे शूट किया। इसके अलावा चित्रकूट में जितनी भी आप लोकेशन देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, सब वो हमने मैच कर दिए। तो फिल्म मेकिंग जो है ना, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, इट्स ऑल अबाउट मेक बिलीव, इट्स ऑल अबाउट चीटिंग टू, जिसे बोलते हैं चीट सीन करना। रियल लोकेशन है वो, लेकिन किसी और जगह की है, पर आपको वो ऐसा महसूस कराती है भावनात्मक लेवल पे, आपको ऐसे वहां पहुंच ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो जो भी आप एलिमेंटली जो चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो वहां का, वो आप कर लेते हो। इस तरह से हमने किसी तरह से चित्रकूट में ही, और चित्रकूट नहीं होता तो शायद ही फिल्म उस बजट में जिसमें बनाई बन नहीं पाती।
1: बिल्कुल। अब चलते चलते हमारे जो नए श्रोता, युवा श्रोता, उन्हें कुछ दो लाइन में संदेश दे सकते हैं तो दीजिए।
0: तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो संस्कृति है, जो संत परंपरा है, जिसने धागे की तरह से पूरे पिछले 5-7 हज़ार साल में सारा टेक्स्ट, सारा लिटरेचर और समाज को बांध के रखा है। संत समाज से बाहर निकल जाता है, ना उसका जाति होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है। संप्रदाय होते हैं, पर वो संप्रदाय फिल्म के अंदर आपने उसमें देखा भी, उसी ने विरक्ति उसको हो जाती है, वो ना नाम से अटैचमेंट रखता है, ना किसी जेंडर से अटैचमेंट रखता है, वो पूरी तरह से ईश्वर का हो जाता है। जब आदमी अपने आप को बिल्कुल बाहर रख के थर्ड पर्सपेक्टिव से, दृष्टा भाव से देखता है, एक संत दृष्टा भाव से ही दुनिया को देखता है, तो सारे जो मैल होते हैं ना, वो सारे मैल आपको दिखने बंद हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीन चीजें जो नीम करौली बाबा भी बोलते थे, लव ऑल, सभी को प्रेम करो, फीड ऑल, भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाओ, सबसे पहले खाना पूछो आदमी को, और तीसरा राम राम लिखो, ईश्वर को हरदम याद करते रहो। ये तीन चीजें वो सिखा के गए। मुझे लगता है कि जो जेंजी है या जो नई जनरेशन है, वो भी ऐसा ही कुछ सोचती है, जस्ट दैट उनको अलाइन करने की आवश्यकता है। वो भी यही बातें कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे, यही बातें कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली कोर है। और यही तो, इसलिए नीम करौली बाबा की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जेंजी और जैन अल्फा को सबसे ज्यादा प्रभावित, जो मैं करना चाहता भी था, करेगी।
1: बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, क्या एक दो लाइन गुनगुनाएंगे?
0: जी। अब ना देर लगाओ देर, अब कृपा करो महादेव, अब ना देर लगाओ देर, बस कृपा करो महादेव, ये दुनिया एक छलावा, तू साचा ठोर है बाबा, के आहवा के जावा,
1: क्या बात,
0: के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, हर हर महादेव। इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रेयरेस्ट सॉन्ग्स जो मुक्ति चाह रहा है, पर वो हंस के मांग रहा है, इतने ज्यादा फन भाव में, इतने अच्छे सुंदर भाव में, हंसते हंसते बोल रहा है कि आवागमन मिटा दो बोले शंकर।
1: जी जी, विशाल जी यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी बातें, यादें साझा की, बड़ी दिलचस्प लगी हमें, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगेंगी हमें उम्मीद है। आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, 1960s में कहीं बैठा हूँ, सर फीलिंग आ रही है।
1: नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।

0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, कुछ लिखा और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है, दिल तो
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
5: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
5: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है। भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
4: उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है।
5: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
4: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
5: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। और पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। जन्म से उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी, करीब करीब 27 लाख दिव्यांगजन इस पेंशन के कार्यक्रम में लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
4: मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों

और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री का संदेश संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने पढ़कर सुनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को

0: समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं अब पेश है फिल्म संगीत। इंद्रनील की रचना सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सचिन जिगर वरुण जैन राघव चैतन्य की आवाजें हैं। संगीत सचिन जिगर का है। फिल्म का नाम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

बॉर्डर टू फिल्म से ये अगला गीत हमने चुना है। इसे गाया है दिलजीत दोसांझ, परंपरा और साचेत टंडन ने। कौशल मुनीर के लिखे गीत को संगीत से सवारा साचेत परंपरा ने।

0: धड़क टू फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, विशाल मिश्रा की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: हर बुधवार चंडीगढ़ की बातें, कामयाबी के रंग और जिंदगी की हलचल, रेडियो डायरी सिर्फ आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर। रेडियो डायरी,
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ FM 107.2 MHz पर। प्रस्तुत है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Depression क्या है? जानिए लक्षणों और इलाज के उपाय इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त है। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। डिप्रेशन किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन का असंतुलित होना, गर्भावस्था और अनुवंशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है, दैट मीन्स हेरिडिटरी। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहना तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियां धीमी होना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बने रहते हैं,

तो DSM-5 यानी परीक्षण तकनीक के अनुसार इसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द एक्सेट्रा। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोगी चिकित्सा से मिल सकती है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत जरूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध है। एक साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या मिक्स ट्रीटमेंट। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीज में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। अगर आपके किसी परिचय या आपको डिप्रेशन है तो आप इस तरह उस व्यक्ति और अपनी सहायता कर सकते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें। इस समस्या को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने आप को अकेला न रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले गपशप करें। खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स न बनाएं। सुबह शाम टहलने जाएं। अपने आप को काम में व्यस्त रखें। उदासी भरे गाने न सुने। दिल ही दिल में घुटने के बजाय अपनी बात किसी विशेषज्ञ या फिर साइकोलॉजिस्ट से करें या फिर काउंसलर से करें। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्ते से गुजरें। अगर आप दुखी हैं तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप बहुत खुश हो। सिर्फ एक्टिंग करने में क्या जा रहा दोस्तों, थोड़ी सी एक्टिंग आपके लिए, खुद के लिए भी करिए। सहकर्मियों के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रोता। हंसने पर दुनिया साथ में हंसने को तैयार हो जाती है। सकारात्मक बातें पढ़िए और बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फायदा उठाएं। हो सके तो कुछ कोर्स ज्वाइन करें। योग का सहारा लें और प्राणायाम रोज करें। राइट ब्रीथिंग विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। रात में सोने के एक घंटे पहले टीवी बंद कर दे और अपना मोबाइल भी बंद करे। आजकल के डिस्ट्रैक्शन से बचे। Have a deep and nice sleep. Depression एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है। Depression पागलपन नहीं होता है और depression के अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। Depression के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। यूं तो डिप्रेशन की रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय यही है कि नकारात्मक विचारों को दूर रखने का प्रयास करें और जितना हो सके सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहे। लेकिन कुछ बिंदु है जो बहुत महत्व रखते हैं। अपने जीवन की हर परिस्थितियों में आपके साथ कुछ लोगों का हमेशा साथ होना चाहिए। कुछ ऐसे फैसले जो डिप्रेशन की वजह बनती है, जैसे नौकरी बदलना, प्रेम करना, विवाह या तलाक लेना। ऐसे फैसले अकेले न करें। हमेशा उन लोगों से राय ले जो सालों से आपके करीब है। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। जितना हो सके डिप्रेशन के बारे में पढ़ें और जानें ताकि आपके मस्तिष्क जागरूक रहे। शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन से बचें। तो दोस्तों, यह थे डिप्रेशन से निजात पाने के तरीके। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी साथियों से

0: करें।
1: आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपने आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहें लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। बात है 1564 की। इंग्लैंड

छोटे बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि यह काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओ, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं। साथियों, वो था ग्रेफाइट यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था। हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे। यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया। उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB। तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक। इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बनी गई। समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा

0: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो गया, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, पर वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आईं, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम।

0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 बजन वाले ने कुछ ही पलां जसी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार रिले करांगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
4: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
4: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
5: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSME इसको सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यता का यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला

0: Miles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Miles से मुक्ति पाएं।
1: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
2: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सन माइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: जहाँ रहती है साफ सफाई वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई। दवाई से नाता तोड़ो, सफाई से नाता जोड़ो।
4: हर बुधवार चंडीगढ़ की बातें, कामयाबी के रंग और जिंदगी की हलचल। रेडियो डायरी सिर्फ आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर। रेडियो डायरी।
5: श्रोते हों तुहानू गैर फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं आवाजा ने मधु शर्मा, स्वरित शुक्ल ते अशोक मस्कीन दिया।

0: ਜੀ ਪਲਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: ਨਮਸਕਾਰ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਬ ਆਪ ਪੁਸ਼ਪਾ ਠਾਕੁਰ ਸੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने को मंजूरी दी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना में दिव्यांगजनों के लिए विकलांगता का मानदंड 80% से घटाकर 40% किया गया आईडीबीआई बैंक का पुनर्गठन होगा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा राजनीतिक भागीदार की मदद से बैंक में नई पूंजी डाली जाएगी सेवा संकल्प अभियान के तहत अंबाला छावनी और हथीन में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा प्रिथला विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा अब समाचार विस्तार से केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक में गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने को मंजूरी दी गई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है
1: श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है लगभग 1,65,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है
2: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा के लिए 53,428 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना में दिव्यांगजनों के लिए विकलांगता का मानदंड वर्तमान 80% के बजाय अब 40% होगा
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा और पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा करीब करीब 27 लाख दिव्यांगजन इस पेंशन के कार्यक्रम में लाभार्थी होंगे टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 जाएगी
1: उन्होंने कहा कि वृद्धजनों और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाएं और पारिवारिक लाभ योजनाएं अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैंक के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन कर लिया गया है और इसकी मदद से बैंक में नई पूंजी डाली जाएगी श्री वैष्णव ने कहा कि पुनर्गठित बैंक में भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की 34% हिस्सेदारी बरकरार रहेगी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में

0: अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
1: Materials are very important.
2: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
1: Which becomes good for us, good for the world.
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज अंबाला छावनी की जाटव धर्मशाला में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हरियाणा के परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करते हुए उपस्थित चिकित्सकों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे माह जनसेवा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में पूरे मास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मेडिकल चेकअप कैंप भी लगा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, हर आंगनवाड़ी तक हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हर स्कूल तक हमारे कार्यकर्ता गए हैं। हमारे चार मंडल है अंबाला छावनी विधानसभा, तो आज ये तीसरा मेडिकल चेकअप कैंप है, एक अभी और रंगिया मंडी में लगेगा। मकसद ये है, प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हर आदमी सेवा के कामों में लगे।
0: श्री विज ने कहा कि इन शिविरों में लोग भारी संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक चारों मंडलों के तहत लगे रक्तदान शिविरों में लगभग 450 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया है। आज हथीन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा योगदान के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 231 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिनमें 133 महिलाएं शामिल रहीं। शिविर के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, खून की कमी, बच्चे के स्वास्थ्य, टीकाकरण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दंत रोगों की जांच तथा नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर होडल से विधायक हरेंद्र सिंह पिथला से विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि दिशा की बैठक में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना निर्धारित तिथि और समय अनुसार करके निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यो को गति प्रदान की जा सके। बैठक में पृथला के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया द्वारा उठाई गई पृथला विधानसभा क्षेत्र में सड़कों से संबंधित शिकायतों को लेकर श्री गुर्जर ने कहा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र का बिना किसी भेदभाव के समुचित विकास किया जाएगा।
4: विधायक का ये मोदी जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। उनके क्षेत्र वो भी हमारा क्षेत्र और उसमें भी हमारे लोग रहते हैं, वहाँ की जो भी समस्याएं उनको निश्चित तौर पर दूर किया जाएगा।
0: श्री गुर्जर ने बताया कि बैठक में जो अधिकारी गैर हाजिर रहे हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। वोट चोरी पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में वोट चोरी नहीं हो रहा है, कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज चंडीगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशुधन विकास बोर्ड तथा हरियाणा गौ सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को चारे के उन्नत बीजों का प्रबंध करने की दिशा में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई नीति बनाने की संभावना भी तलाशी जाए। उन्होंने देसी गाय की डेयरी खोलने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित कोई योजना तैयार करने की हिदायत भी दी। मंत्री ने कहा कि इससे जहां नस्ल सुधार को संरक्षण मिलेगा, वहीं इनके गौमूत्र से तैयार जीवामृत

0: प्राकृतिक खेती में खाद के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने गांव के पशुओं के लिए पंचायती भूमि पर डे बोर्डिंग पशु सदन जैसी कोई योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना में दिव्यांगजनों के लिए विकलांगता का मानदंड 80% से घटाकर 40% किया गया। IDBI बैंक का पुनर्गठन होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रणनीतिक भागीदार की मदद से बैंक में नई पूंजी डाली जाएगी। सेवा संकल्प अभियान के तहत अंबाला छावनी और हथीन में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा, प्रिथला विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक
1: केंद्रीय वातावरण मंत्री भुपेंद्र यादव ने पंजाब ते हरियाणा च पराली साड़न नूं रोकण लई जमीनी पद्धर ते निगरानी ते कारवाई नूं तेज करन दी जरूरत ते जोर दित्ता है। मानसा विच नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह झोटा दा कथित कातल गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिता इस विच शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा। BSF ने तरन तारण की ड्रोन विरोधी टीम च तैनात पंजाब पुलिस के कॉन्सटेबल तो 15 किलो तो वध हैरोइन जब्त की। पंजाब कर विभाग वालों 429 करोड़ रुपए के GST धोखाधड़ी नैटवर्क का पर्दाफाश। लुधियाना चेक ट्रांसपोर्टर अते उसके दो साथियों खिलाफ मामला दर्ज। तो भारत के वैस्ट इंडीज़ दरमियान 5 मैचों की 2020 लड़ी का चौथा मैच अज हैदराबाद च शामी 7 बजे खेडिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बीते दिन ही नवी दिल्ली से कुछ पदरी अंतर मंत्रालय समीक्षा मीटिंग की थी ताजो ये यकीनी बनाया जा सके कि मौजूदा झोने के वाढ़ी सीजन दौरान पराली प्रबंधन पूरी तरह कार्यशील रहे। इस मीटिंग की सह प्रधानगी केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ते वातावरण मंत्री भुपेंद्र यादव ने की। दोवां केंद्रीय मंत्रियों ने जिक्र किया कि झोने के वाढ़ी ते हाड़ी दीयां फसलां दी बिजाई दरमियान बहुत घट समा बचा है, इसलिए प्रशासनिक मशीनरी नूं सिर्फ कागजी कार्रवाई ते नहीं सगों जमीनी पद्धर ते भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने जिला पद्धर ते जिला मजिस्ट्रेटां नाल तुरंत मीटिंगां करन ते नेड़ों निगरानी नाल विहारक हल यकीनी बनाउण दे निर्देश दित्ते। इस मौके वातावरण मंत्री भुपेंद्र यादव ने पराली साड़न नूं रोकण लई जमीनी पद्धर ते निगरानी ते कार्रवाई नूं तेज़ करन दी जरूरत ते जोर दित्ता। उन्होंने पंजाब के संगरूर तरन तारण अमृतसर पटियाला ते गुरदासपुर जिलों अते हरियाणा के कैथल करनाल कुरुक्षेत्र अंबाला ते फतेहाबाद जिलों च विशेष निगरानी करन लई कहा। इसका उद्देश फसल की स्थिति का मुलांकन करना ते पराली साड़न दीआं संभावी घटनावां दा अनुमान लगाना है। मीटिंग च श्री चौहान ने कहा कि किसानों नूं आसान पहुंचयोग ते किफायती पराली प्रबंधन बदल प्रदान किए जाने चाहिए ने। मानसा विच नशा विरोधी कारकुन परविंदर सिंह झोटा का गोली मार के कतल करन तो एक दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिता है कि नशा विरोधी कारकुन की इस दिन दिहाड़े हुए कतल च शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा।
2: मानसा दे विच एक बहुत मंदभागी घटना हुई है जिदे विच सोशल वर्कर परविंदर सिंह झोटा उन्हों गोली मार के कतल कर दिता गया। इस मामले दे विच मैं स्पष्ट करना चाहना कि पंजाब पुलिस वालों कोई भी कमी नहीं छड़ी जाऊगी। दोषियों नूं सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। वैसे तो मुख्य दोषी नूं फड़ लिया गया है, पर जे कोई साजिश भी हुई उहदे पिछे कोई होर बंदे होए उन्हां नूं भी बख्शिया नहीं जाऊगा। मैं परविंदर सिंह झोटा दे परिवार नाल हमदर्दी भी प्रगट करदा कि एक जवान पुत जिहड़ा ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
1: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। BJP ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
3: इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आम आदमी पार्टी की सरकार। इसके हत्या के बाद उसके पिता ने जो कहा है।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट मकान पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से
1: दुकान बिजनेस स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो प्रवेश सूचना टेंडर नोटिस स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846
1: कम खर्च बड़े

0: मच
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: हर बुधवार चंडीगढ़ की बातें, कामयाबी के रंग और जिंदगी की हलचल, रेडियो डायरी सिर्फ आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर। रेडियो डायरी
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी आनंद मान रहे हो पंजाबी गीतां दा FM 107.2 MHz ते। मनिंदर बुट्टर दी तर्ज़े च मनिंदर बुट्टर दा ही गाया नगमा बोलने बब्बू दे।

0: ਐਮੇ ਵਿਰਕ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਸੀ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਦਾ। ਸ਼ਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी है।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: श्रोतियों, जयमाला प्रोग्राम ले बस थोड़ा जो इंतजार करो, ये प्रोग्राम असि विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज़ है, बोल है मनोज मुंतशिर के और बनाई है आर को ने।

फौजी साथियों अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज में दीवाना फिल्म का गाना समीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं नदीम श्रवण

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कॉन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
3: जब सीलन से छुटकारा पाना हो और घर ऑफिस को सजाना हो तो आज ही आइए अरुणा प्लाई।
4: WPC, PVC, वॉल पैनल, सीलिंग, एक्शन जैसा वुडन फ्लोरिंग, HDH, MR बोर्ड, सनमाइका और प्लाईवुड के लिए अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SCO 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान और चिन्मय की आवाजों में गुरु फिल्म का गाना। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे एआर रहमान। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तेरे नाम फिल्म का गाना। इसे लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

फौजी साथियों अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए मंच म्यूजिक हरवी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म का ये गाना, तनिष्क बागची और हरवी सहारा के बोल, और इसकी धुन बनाई है तनिष्क बागची, मंच म्यूजिक और हरवी सहारा ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: फौजी साथियों, अब आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा भी गया कि हाउ जो मानक है स्टैंडर्ड है हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू रियलाइज दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इन सिंपल टर्म्स द आंसर इज दी स्टैंडर्ड्स आर नॉट जस्ट दैट द टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड दे आर इनफैक्ट the common language of quality, efficiency, sustainability and trust, which helps to translate the objectives of sustainable development goals into practical action and provide us with the measurable performance benchmarks. जैसे हमारे मानक में जो लोगो है हमारा BIS का मानक पथ प्रदर्शक, वो it has been written very rightly, the मानक shows us the way, मानक tells us what is need to be done if we want to realize the विजन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हमें मानक अपना रास्ता हम बताते हैं. एंड इनफैक्ट बिहाइंड एवरी स्टैंडर्ड आई वुड से देयर इज अ लार्जर पब्लिक पर्पस आल्सो. ए स्टैंडर्ड ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल मींस सेफ्टी फॉर अ फैमिली. ए स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन मटीरियल मींस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ अवर इंफ्रास्ट्रक्चर. ए स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल इक्विपमेंट means greater confidence in healthcare. Similarly, a standard for sustainable technology means reduced environmental impact, a cleaner and more sustainable future. Once again, I extend my heartfelt gratitude to the distinguished dignitaries.
1: इस मौके ते चंडीगढ़ नगर निगम दे मेयर श्री सौरभ जोशी भी विशेष तौर ते मौजूद रहे. अपने विचार सांझे करदे हुए उन्हां कहा,
2: जैसे ही BIS सिस्टम इन्वॉल्व होती है हमारा इंपोर्ट से जगह हमारा एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है. और कितना एक्सपोर्ट आपने किया था? 48 मिलियन कंप्रेसर का प्रोडक्शन जो है जब BIS इन्वॉल्व होती है सर्टिफिकेशन को लेके कंप्रेसर को लेके, उससे हम जहां इंपोर्ट किया करते थे कंप्रेसर को वो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. सो दैट इज द अचीवमेंट ऑफ BIS डिपार्टमेंट. और मेरे ख्याल से BIS डिपार्टमेंट एक अनसंग हीरो डिपार्टमेंट है जो हमारे देश का है. देश में आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप सबको पता है, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट्स हों, चाहे रोड प्रोजेक्ट्स हों, चाहे आपका एयरबेस हो, आपके एयरपोर्ट्स हों, चाहे आपके पोर्ट्स हों, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, पांच टाइम मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैक्सिमम प्रोडक्शन का काम चल रहा है. तो गुणवत्ता के कारण जो BIS डिपार्टमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स को इन्होंने रिफॉर्मेशन लानी शुरू की, ये डिपार्टमेंट जो हमारा BIS डिपार्टमेंट है, दिस इज अनसंग हीरो ऑफ आवर कंट्री. सो मैं फिर से आप सबको बधाई दूंगा कि BIS डिपार्टमेंट हरियाणा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस प्रकार आपने चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम रखा है नॉर्दर्न रीजन का, और जिस प्रकार आप स्कूलों तक लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कंज्यूमर्स तक आप टच कर रहे हैं, और लोगों को आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम रीच आउट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं.
1: समागम दौरान मेहमानों का सन्मान किया गया. इस तों बाद हरियाणा सरकार दे खुराक सिविल सप्लाईज अते खपतकार मामले अते छपाई ते स्टेशनरी विभाग दे राज मंत्री श्री राजेश नागर ने प्रधानगी भाषण दिता.
3: वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज ए ऑकेशन टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग आवर प्रोडक्ट्स सेफर, our services more reliable, our industries more competitive and our everyday lives better. Standards may often appear to be technical documents, but their impact is very much visible in the life of every citizen, from the food we consume and the product we purchase to the accuracy of measurements. The safety of electrical appliances and the quality of essential commodities. The theme of this year, World Standard Day, shared vision for a better world, spotlights on SDG 7, affordable and clean energy, is particularly relevant to the India and Haryana. Affordable and clean energy is not a merely an environmental objectives. It enables economic development and food security, industrial growth and improved quality of renewable energy powers for homes, farms, warehouses, markets, industries and public services. And standards

0: provide the common technical foundation on which these transactions can be take place safely, efficiently and sustainably. BIS develops and promotes Indian standards across sectors relevant to sustainable development, standards relating to solar energy system, wind energy, energy storage, electric mobility and charging infrastructure, power transmissions and energy management. Let us work together to build a culture in which quality is valued, standards are understood, compliance is respected, and consumers are empowered. Let us reaffirm our commitment to using standards and instruments of quality, safety, sustainability, and inclusive development, and to working together towards SDG 7, affordable and clean energy and broadly sustainable development goals. Let us make quality a shared responsibility and a standard and shared pathway towards a better and more sustainable Haryana and better India. Thank you. Jai Hind, Jai Haryana.
1: BIS ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁਖੀ HRBO ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੁਰਿਮਾ ਮਾਧਵ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਰੀ
2: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਰੀ।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: देवी एक अजीब परेशानी है। अरे कविता लिखना जितना आसान है इसका शीर्षक ढूंढना उतना ही मुश्किल। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका शीर्षक क्या रखूं। यही कविता क्या अपने कुछ हर कविता के साथ यही सरदर्द उठानी पड़ती है। रद्दी से भी गहुआ है गुन मेरा। हाँ बस दर्द से भीगा गान इस कविता का शीर्षक ही ठीक रहेगा। हाँ बस बात बन गई। गुरु जी भी असल में एक चचा नहीं। हाँ शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले और संपादक की आंखों में वो क्या चुभ जाए। भीगा शब्द कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अकेला अरमान शीर्षक के लिए क्या रहेगा। जे शीर्षक ही कविता को दिया जाए तो
1: क्या मुसीबत है। मैं कहती हूँ सब्जी वब्जी बाजार से लाओगे या अरमान और भगवान के चक्कर में ही पड़े रहोगे।
0: क्या बाजार से सब्जी लाना भी मेरा ही काम है।
1: और नहीं तो क्या मेरा काम है। मैं कहती हूँ कविता तो आपने रात ही लिख ली थी, अब उसे संपादक के पास भेज क्यों नहीं देते। बार बार रटे जा रहे हैं उसे। रात लिखते वक्त अलग कान खाते रहे, अब दिमाग अलग चाट रहे हैं। क्या अब इसे फिर ठीक कर रहे थे।
0: अरे नहीं श्रीमती जी, अब इसे दोबारा ठीक नहीं कर रहा हूँ। अब इसका शीर्षक खोज रहा हूँ।
1: शीर्षक
0: शीर्षक कह रही है नाम को, मतलब जी कि अब इसका नाम क्या रखा जाए। जी सोच रहा हूँ। अब समझिए आप, कुछ देर आप मेरा पीछा छोड़िए, अपना काम कीजिए। इसे अभी उलझन में छपने के लिए भेजना
1: तो
0: है।
1: भेज क्यों नहीं देते।
0: अरे उलझन का वार्षिक अंक छपने वाला है। मैं कल संपादक जी से आज कविता पहुंचा देने का वायदा करके आया हूँ, वो मेरी राह देख रहे होंगे।
1: मैं ये कविता अविता संपादक हम बात कुछ नहीं जानती। जल्दी जाकर मुझे तो बाजार से रसोई का सामान ला दीजिए, वरना सुनिए कुछ देर में ननन नंदोई आने वाले हैं। समय पर खाना ना बना तो फिर मुझ पर ही बिगड़ोगे। हाँ यही काम करना था तो उन्हें न्योता देने की आवश्यकता क्या थी। कविता का नाम ढूंढ रहे हैं। अजी मुसीबत है इनके साथ।
0: बारी मुसीबत बारी मुसीबत बारी किस्मत है। मैं खुद तो मर गई, ये मुसीबत मेरे गले बांध गई। जैसे रत्ती भर भी साहित्य का ज्ञान नहीं। अरे अपनी सहेली को दिए वचन दीवाने में मेरी जिंदगी व्यर्थ पर।
1: मैं कहती हूँ मुंह संभाल कर बात करो, मैं सब सुन रही हूँ।
0: अरे बाबा, अरे बाबा, मैंने कोई तुम्हें कुछ नहीं कहा है। अरे हाँ सुनो,
1: बोलो।
0: मैं बहन भाइयों को आज के लिए नहीं कल की रोटी के लिए कहकर आया हूँ।
1: क्या कहा? तुम
0: नाक परेशान होती फिर रही हो, भूल से मेरे मुंह से आज निकल गया था।
1: तो यूं कहो ना कि कुछ याद ही नहीं रहता कविता के चक्कर में। अच्छा सुनो, क्या खुद साग सब्जी से रोटी नहीं खाओगे।
0: अरे भाई अपना क्या है, अपने को तो अचार के साथ पराठे बहुत स्वाद लगते हैं। रही तुम है सो तुम दही से खा लेना, तुम्हारे लिए दही मंगवा दूंगा।
1: ओफो, लेकिन अगर उन्हें आने के लिए कल कहा हुआ है तो छुट्टी आज की क्यों ले रखी है जनाब ने।
0: अरे भाई, अरे भाई, बतलाया तो है कि मैं भूल से आज ही समझे हुए था। चंदा और उसके पति खाने पर आने वाले हैं, कृपा करके अब तुम जाओ, मुझे अपना काम करने।
1: मैं कहती हूँ आगे से सब काम अपने दफ्तर में ही बैठ के कर लिया।

0: आए आए ताकि मेरा बास मुझे सदा के लिए छुट्टी दे दे। दाद देनी पड़ती है तुम्हारी अक्कल की।
1: बात करो तो खाने को पड़ते हैं। हजी मुसीबत है इनके साथ।
0: एक मुसीबत हो तो काम बने, यहाँ तो हजारों मुसीबतें हैं। सारा मूड ही खराब करके धर दिया, आखिर नए सिरे से मूड बनाओ।

0: लेगी। हा हा हा हा, बस मिल गया शीर्षक। तुम्हारी याद, इसका शीर्षक बहुत बढ़िया रहेगा। शीर्षक खोजने में जे हालत है तो बाकी रचनाओं के शीर्षक को खोजने क्या हालत होगी। है दर्द से भी गहुआ ही गन मेरा।
1: भैया मुझे जरा इस कविता का अर्थ तो समझा दो, परसों मेरी परीक्षा है।
0: नहीं, क्या किया कविता का अर्थ? अरे सुन, इस समय मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम आज शाम को या कल सुबह आ जाना, मैं अच्छी तरह पढ़ा दूंगा।
1: अच्छा भैया।
0: अरे सुन प्रकाश, सुन तो सही, देख मुझे तुझसे एक जरूरी काम है।
1: कहो भैया।
0: जी देख, ये चवन्नी ले और इस टेलीफोन नंबर पर जाकर डॉक्टर की दुकान से फोन करिया।
1: लेकिन वहाँ कहूंगा क्या भैया?
0: अरे उधर से नंदलाल बोलेंगे, जा चंदा बोलेगी, तो कहियो कि नवनीत भाई जरूरी काम से क्या तनिक बाहर चले गए हैं, अब कल आए।
1: अगर वो पूछे कि किस काम से तो क्या कहूँ भैया?
0: अरे भैया तू खुद समझदार है, कोई बहाना बना देना, वो आ जाएंगे तो घर में भीड़ लग जाएगी। हाँ जे काम नहीं होगा, जा मुझे बहुत जरूरी काम करना है, जा भाई जा, जल्दी जल्दी सीधे जे काम कर, कहीं वो लोग आ ना जाए। और देख सुन, अपनी भाभी से कुछ मत कही इस बारे में।
1: अच्छा भैया।
0: और सुन प्रकाश, जरा गुड्डी को भी भेजता गई।
2: ओफो, मैं कहती हूँ प्रकाश को कुछ देर पढ़ा देते तो क्या हर्ष था, उसके बाबूजी बुरा मान जाएंगे। दोनों बच्चे हमारा कितना काम करते हैं, ये तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए था।
0: मैंने ऐसे पढ़ाने से कब नहीं किए हैं, तुम आज बिना बात मुझसे लड़ने आ रही हो। अरे भाई शाम को उसे पढ़ा दूंगा।
2: शाम को पढ़ा दूंगा।
3: हाँ भैया, क्या काम है?
0: अरे हाँ जी देख गुड्डी, जे ले चवन्नी, जा जाकर बाजार से मेरे लिए वो क्या पान लिया।
3: अच्छा जी।
2: अच्छा जरा सुनो, घर का ख्याल रखना, मैं प्रकाश की माँ से तुम्हारे स्वेटर का गला ठीक करवा दूँ, और अब ये सब खत्म करो काम, मैं अभी आ रही हूँ।
0: अरे हाँ हाँ, तुम जाओ जाओ, मैं अभी काम समाप्त करके तुम्हें आवाज देता हूँ, जरा कुछ देर मुझे एकांत में तो रहने दो। हैं जे लोग मूड बननी नहीं देते, दर्द से भी
3: ये रहे पान।
0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे गुड्डी, देख तो जरा सही कौन आया, जो कोई भी हो कह दे कि नवनीत जी घर पर नहीं है।
3: अच्छा भैया, नवनीत जी घर पर नहीं है।
4: कहाँ गए हैं
3: भैया? वे पूछते हैं कि आप कहाँ गए हैं।
0: अरे गुड्डी अरे गुड्डी अरे, तीने तो सारा बेड़ा ही घर कर दिया, ले ले अपना पान वान, तूने सब ठंडा फोड़ दिया। अरे भाई आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ, जरा मैं दूसरे कमरे में गया।
4: क्या बात है गुरु?
0: जा गुड्डी जा, तू बाहर जा, जा खेल जाकर।
4: आज हमें को टरकाने के मूड में थे?
0: अरे भाई नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैं जरा इस कविता का शीर्षक ढूंढने में लगा हुआ था। अरे तुम जानो कि बिना जरूरत मिलने वालों से कितनी परेशानी होती है, और इस कविता को आज 3 बजे तक जरूर भेज देना है।
4: अरे हम भी तो सुने गुरु, वो ऐसी कौन सी महान कविता है जिसका शीर्षक ही नहीं मिल पा रहा है? लाओ हमें कुछ पुरुषार्थ करें, शायद तुम्हारा काम बन जाए।
0: हाँ वैसे ही गुरु, रचनाओं के शीर्षक रखने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हिंदी के साहित्यकों में तुमने अपनी किताबों के बहुत बढ़िया नाम रखे। पुस्तक का भाव शीर्षक से रक्ति भर भी मेल न खाता।
4: भाव मेल खाता हो या न खाता हो गुरु, पर यह निश्चित है कि पुस्तक अपने नाम से बिकती है। नाम बढ़िया और आकर्षक हो, फिर चाहे पुस्तक में कुछ हो ना हो, पुस्तक के नाम से पाठक अपने आप मेल बिठाते रहते हैं, अपने मतलब का कोई ना कोई अर्थ निकाल ही लेते हैं।
0: हाँ जो पान खाओ लो भाई।
4: नहीं गुरु, बस कृपा है, तुम तो जानते हो कि मैं पान वान खाता नहीं। और फिर तुम खाते हो जर्दे वाला पान गुरु, अपना तो उससे वैसा ही बेड़ा पार हो जाए। हाँ सुनाओ ना, आखिर वो कविता कौन सी है जिसका तुम्हें शीर्षक नहीं मिल पा रहा है?
0: दर्द से भीगा हुआ है गान मेरा, प्यार से भीगा हुआ अरमान मेरा, तुम नहीं हो पर तुम्हारी याद तो है, लोचनों में अति सघन उन्माद तो है, कल्पना के पंख तुमने बांध डाले, आ रहा है निकट ही मेरा, दर्द से भीगा हुआ है गान मेरा।
4: आह क्या बात गुरु, तुम तो व्यर्थ शीर्षक के चक्कर में पड़े हो, अरे गीत शीर्षक देकर भेज दो।
0: अरे वाह तुम भी कमाल की बात करते हो हैं? अरे 10 पद की लंबी कविता है और उसका नाम गीत लिखकर भेज दूं, हैं भला जे ही कोई बात है। अरे गीत 2 या 3-4 पद की छोटी सी रचना होती है, उसको कहती है गजबर की लंबी कविता। नहीं
4: सुबह से लगे हुए हो क्या, अब तक बिना में सोचा?
0: अरे बहुत सोचा बहुत सोचा।

0: अब तक एक भी पसंद नहीं आया।
1: हम भी तो सुने उनमें से कुछ नाम गुरु। अरे हो सकता है हमें कुछ सलाह दे सके।
0: जैसे जैसे जैसे भीगा हुआ गान, अरमान मेरा, तुम्हारी याद, और अब मेरे दिमाग में उन्माद घूम रहा है।
1: छोड़ो गुरु,
0: सोचता हूँ इस कविता का शीर्षक उन्माद ही रख।
1: भला उन्माद भी कोई शीर्षक है गुरु? इससे अच्छा है कि तुम इसका शीर्षक कल्पना के पंख धरो। नाम में एक आकर्षण तो है।
0: पर भाई कल्पना के पंख वाली बात तो इस कविता में कहीं है नहीं। केवल शब्दों के आने से ही उन्हें नाम के रूप में रख लिया जाए ये कोई बात नहीं हुई है। शीर्षक वो होना चाहिए जिसमें सारी कविता का भाव सन्निहित हो। मेरा विचार है इसका शीर्षक अवसान जा मेरा अवसान रख दूं तो।
1: भगवान का नाम लो गुरु, शुभ शुभ तो बोलो। अभी अपना अवसान करने पर क्यों तुले हुए हो? फिर अवसान वाली भी तो कोई बात इसमें होनी चाहिए ना।
0: हाँ गुरु, जेरी तुम सच कहो हो, शुरू से शीर्षक की खोज में लगा हुआ हूँ पर कुछ समझ में नहीं आ रही है।
1: ऐसा करो गुरु, संपादक जी को रचना भेज दो, वो अपने आप इसका शीर्षक ढूंढ लेंगे।
0: वाह मित्र वाह, जेरी तुमने एक ही बात कही। अरे उनकी चलाई रचना बटेर पर हो, वो शीर्षक कबूतर पर देंगे। मेरे अनेक एकांकियों और कहानियों के साथ उन्होंने यही किया है, अपनी इच्छा से शीर्षक बदल देती। हाँ अनेरी चटपटे शीर्षक की आदत है, फिर चाहे वो शीर्षक रचना से मेल खाए या ना खाए। पर हो सकता है अब ऐसा ना करें।
1: अब वो ऐसा नहीं करेंगे, इस बात का क्या भरोसा है। तुम शीर्षक खोजने में पूरा एक दिन बर्बाद कर दो और वो बदलने में एक मिनट भी ना लगाए।
0: हाँ अब ऐसी बात नहीं हो सकती, मेरा इसी बात पर उनसे बहुत दिन झगड़ा हुआ था। अब तो शीर्षक मैं उन्हें लिखकर भेज दूं। हाँ मैं लिखकर उन्हें भेज दूंगा, उन्हें वही छापना पड़ेगा। मेरा उनका जी मामला तय हो चुका है, फैसला हो चुका है। तभी दचित होकर उसका बढ़िया शीर्षक खोजने में लगा हुआ हूँ।
2: कराया टेलीफोन भैया में
0: है? क्या कह दिया टेलीफोन पर?
2: फोन पर चंदा दीदी मिल गई थी भैया।
0: हाँ।
2: मैंने कह दिया भैया और भाभी एक जरूरी काम से बाहर चले गए। इस पर उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था।
0: तो फिर तूने क्या जवाब दिया?
2: भैया जल्दी में मुझे तो कुछ सूझा नहीं, मैंने कह दिया। हाँ। उनके रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई है।
0: अरे धत्तेरे की धत्तेरे की, तूने सब करा कर धूल मिला दिया। प्रसारती जी बाहर चलकर कहीं चाय पियेंगे, चलो भाई।
3: क्यों जी, क्या बात है, कहाँ चल दिए?
0: अरे वो मेरे जानने वालों में किसी की मौत हो गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। प्रकाश से चंदा को टेलीफोन करवाया था, वो कह आया कि किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है। सो उससे ये कह देना ऐसी कोई बात नहीं है। हे भगवान, शीर्षक खोजते खोजते तो जान नई कहानी बनी जा रही है।
4: अभी आपने देवराज दिनेश का लिखा प्रेसन शीर्षक की खोज सुना। इसका निर्देशन मुख्तार अहमद ने किया।

0: इस प्रोग्राम दे प्रोजेक्ट ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
1: किसान वीरो फसल पैदा करना ही नहीं उसकी संभाल अते वधिया मंडी तक पहुंच भी जरूरी है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AAF तहत खेतीबाड़ी नाल जुड़े बुनियादी ढांचे जिमें वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज बैक हाउस अते होर पोस्ट हार्वेस्ट सुविधावां विकसित करन लई वित्तीय सहायता दी सहूलत है इस नाल फसल दी संभाल बेहतर होवे नुकसान कटे अते किसानां नूं अपनी उपज दी वधिया कीमत प्राप्त करन विच मदद मिले जानकारी लवो मौके दा लाभ उठाओ अते खेती नूं बनाओ होर मजबूत खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
2: किसान

0: स्पॉन्सर प्रोग्राम फार्म टू सिटी।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों

0: संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे, टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, समय समय इसको सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
1: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी

0: रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनकी हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद मनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरै राजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
4: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली

0: आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
1: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
3: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर।
2: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिली सेकेंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में तीसरी मंजिल फिल्म के गाने के साथ। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं RD बर्मन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में प्रेम पुजारी फिल्म का गाना। इसे लिखा था नीरज ने और संगीत से संवारा था एसडी बर्मन ने। लीजिए सुनिए बहारें फिर भी आएंगी, इस फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, अजीज कश्मीरी के बोल हैं और ओपी नैयर की तर्ज है।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में शागिर्द फिल्म का गाना। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

श्रोताओं और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की है तर्ज फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गाना। शैलेंद्र के थे बोल और शंकर जयकिशन की थी तर्ज। और इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश का नंबर वन मनोरंजन रेडियो चैनल। आज के फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद होगा।
1: लाओ जी, आज तो अनु दसंगा वायरल ना होने दे तरीके।
2: ओ लोकी ता वायरल होने दे तरीके दस दे या, ते तू वायरल ना होंदा?
1: सोशल मीडिया ते वायरल होने नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांड्यां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से।

0: फिल्मों में हम हीरो हीरोइंस को एक से बढ़कर एक सजीली पोशाक पहने हुए दिखते हैं और कभी भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा, कहानी और पटकथा के अनुरूप इन वेशभूषाओं को कौन व्यवस्थित करके हीरो हीरोइन के लिए तैयार करवाता होगा। ये काम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस कार्यक्रम में लेकर आया हूं बातें भानु अथैया की।
1: आज

आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने भानु अथैया का नाम लिया और उसके बाद गाना बजा फिल्म ब्रह्मचारी का, आखिर ये माजरा क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने में मुमताज ने जो ऑरेंज कैंडी कलर की घुटनों तक प्री प्लेटेड साड़ी पहनी थी, उसे भानु अथैया ने डिजाइन किया था और कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इस गाने की जो शानदार कोरियोग्राफी थी उस थिरकने में मुमताज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो जीले बांके नौजवान शम्मी कपूर के साथ थिरकते हुए गा सके।

वाकई बानो अथैया की डिजाइन इस ड्रेस में मुमताज की शोख अदाओं ने लोगों का दिल चुरा लिया और हर जबान पर चर्चे आ गए। हिंदी फिल्मों का ये एक ऐसा गाना है जिसे हम कभी भी और कहीं भी देखना और सुनना पसंद करते हैं। दरअसल मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर इस ड्रेस की डिजाइनर भानु अथैया की यात्रा यहां से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा साल 1929 की तरफ, महाराष्ट्र का शहर कोल्हापुर। यहां एक बालिका ने 28 अप्रैल 1929 को जन्म लिया। नाम रखा गया भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय। जी हाँ, भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय, क्योंकि पिता का नाम था अन्ना साहेब और माता का नाम था शांताबाई राजोपाध्याय। अपने माता पिता की 7 संतानों में भानुमती तीसरे नंबर पर थी। आजादी के पहले का दौर था, लड़कियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था, पर भानुमती के माता पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। उसकी रुचियों को देखते हुए और उसके टैलेंट को देखते हुए आगे चलकर भानुमती को भेजा गया मुंबई जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में

कला की शिक्षा लेने के लिए। यहां से भानुमति गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हो गईं। जरा सोचिए कि समय कैसी करवट लेता है। बचपन में माता पिता ने देखा कि भानुमति रेखाचित्र बनाती हैं। आजादी के पहले का समय था तो माता पिता ने कहा कि तुमको गांधी जी का रेखाचित्र बनाना चाहिए। भानुमति ने बचपन में ऐसा ही किया था। और जरा सोचिए कि आगे चलकर भानुमति भानु अथैया बनी और सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया। ये था समय का पैतरा।

भानुमती का विवाह सत्येंद्र अथैया से हुआ था, जो एक कवि और गीतकार थे। ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, पर भानु अथैया ने आगे विवाह नहीं किया। भानु अथैया ने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की यात्रा सन 1953 में शुरू की थी फिल्म CID के जरिए।

इसके बाद तो हिंदी सिनेमा में ड्रेस डिजाइनिंग को लेकर उन्होंने एक नई क्रांति ला दी। किसी जमाने में भानु अथैया महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए फैशन विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी, फिर वो परिधान डिजाइनिंग यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में आ गईं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का नगमा। ये फिल्म आपने देखी ही होगी, इसलिए आंखें बंद करके याद कीजिए इस गाने में थिरकती अदिरा को, जिनके लिए गाउन तैयार किया था भानु अथैया ने ही। और ये कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी हिट हुई थी उस दौर में जीने वाले लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

अथैया ने अपने इंटरव्यूज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था जबकि डायरेक्टर सेट डिजाइनर और किसी टेलर को लेकर बैठ जाते थे और स्टोरी के मुताबिक कपड़े सिलवा लिया करते थे, लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आई तो मैंने ड्रेस डिजाइनिंग को एक पेशेवर रूप दिया। डायरेक्टर्स की बात सुनकर मैंने स्केचेस बनाना शुरू किया और एक्टर्स की पर्सनैलिटी और कहानी की मांग के मुताबिक ड्रेस तैयार करना शुरू किया। अब जरा फिल्म वक्त को याद करते हैं। साधना ने फिल्म वक्त में एक खास ड्रेस पहनी थी, घुटनों तक ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाली चूड़ीदार पजामे वाली ये ड्रेस लोगों के बीच बहुत मशहूर हुई और लड़कियों ने इसे अपनाकर उस जमाने का फैशन बना दिया था। कुछ फेरबदल के साथ आज भी इस तरह की पोशाक चलन में नजर आती है। तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्माया गया ये गाना सुनिए।

अब जरा फिल्म आम्रपाली की बात कर ली जाए। फिल्म आम्रपाली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। ये कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना एक चुनौती थी। भानु अथैया ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रेरणा ली। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहने जाने वाले हल्के गेरुए रंग के कपड़ों को डिजाइन करना आसान नहीं था। इस दौरान इन कपड़ों को पारिजात के फूलों के रंग में रंगा जाता था। इस फिल्म में आम्रपाली का किरदार निभाया था वैजयंती माला ने, और उन्होंने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी उनको भानु अथैया ने बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया था, कुछ इस तरह से कि स्किन फिटेड ड्रेस होने के बावजूद ये भद्दी न लगे, कहानी के अनुरूप उनमें एक गरिमा हो, एक ठसक हो और एक सजीलापन हो। इसी फिल्म में सुनील दत्त ने मगध के सम्राट का किरदार निभाया था और भानु अथैया ने उनके लिए क्लासिक धोती तैयार की थी। फिल्म आम्रपाली अपनी कथावस्तु वैजयंती माला के अभिनय और उनके नृत्यों के साथ साथ शंकर जयकिशन के संगीत के लिए भी याद की जाती है, और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्म आम्रपाली को सजाने में एक बड़ा योगदान था भानु अथैया का।

0: भानु अथैया की ड्रेस से सजी हुई कई फिल्में आपने देखी होंगी। पता नहीं आपका ध्यान इन फिल्मों में हीरो हीरोइन की पोशाकों पर गया या नहीं गया। सन 1956 में सीआईडी, सन 1959 में प्यासा, सन 1960 वहीदा रहमान की खूबसूरती से जगमगा गई सेलुलॉइड की स्क्रीन और इस फिल्म की पोशाकें तैयार की थी भानु अथैया ने और लोग कह उठे
1: चार

बानो अथैया की खासियत ये थी कि वो फिल्म के किरदारों और कथानक को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती रहीं। फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने राजस्थान की पृष्ठभूमि की कमाल की पोशाकें तैयार की।

सन 1990 में एक बार फिर से राजस्थानी पृष्ठभूमि की पोशाकें तैयार करने का उन्हें मौका मिला। इस बार फिल्म थी गुलजार निर्देशित, लेकिन

फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने जो पोशाकें पहनी थीं, वो भी भानु अथैया की ही डिजाइन की हुई थीं।

साल 1964 की तरफ लौटते हैं। वैजयंती माला, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, फिल्म संगम। इस फिल्म के लिए क्रेप सिल्क की साड़ियां वैजयंती माला के लिए चुनी गईं। जरा इस गाने को याद कीजिए, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, शंकर जयकिशन की धुन और मुकेश की आवाज, साथ में लता।

फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो या फिल्म मेरा नाम जोकर, इन फिल्मों की ड्रेस डिजाइनिंग के पीछे भानु अथैया की प्रतिभा थी। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया।

अब फिल्म गांधी की बात कर ली जाए। फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का मौका मिला था भानु अथैया को। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए बाकायदा ऑडिशन और टेस्ट लिया गया था और दुनिया भर के लोगों में से भानु अथैया को चुना गया फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने, और वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती बन गई थी। इसके बाद भी भानु अथैया की कला जारी रही थी। आपको बता दें कि जब आमिर खान ने फिल्म लगान बनाई तो उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भानु अथैया को ही सौंपा था। आजादी के पहले का परिदृश्य और ग्रामीण किरदार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से वो इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी। खासतौर पर उन्हें ये ध्यान रखना था कि फिल्म में ग्रामीण गरीब किरदार हैं जो आजादी के पहले के समय के हैं। खूब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म लगान के किरदारों के लिए कॉस्ट्यूम्स तैयार की थी।

आशुतोष गोवारीकर की फिल्म स्वदेश के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था। भानु अथैया को गुलजार की फिल्म लेकिन और आशुतोष गोवारीकर की फिल्म लगान के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की अपनी इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक किताब में संजोया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। परिधान डिजाइनिंग के शौकीनों के लिए ये किताब किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ से कम नहीं है। अक्टूबर साल 2020 भानु अथैया एक खौफनाक बीमारी से जूझ रही थी। इससे पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान उन्हें लकवा भी लग गया था। उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। 15 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारत की एक सबसे प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर इस दुनिया से विदा जरूर हो गई, पर उनका नाम हमेशा रहेगा। जब भी फिल्म गांधी का जिक्र आएगा, ब्रह्मचारी का, स्वदेश का, लगान का, गाइड का, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा या चौधरी का चांद और हिना जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा, भानु अथैया को लोग याद करते रहेंगे, हमेशा याद करेंगे भारत की सबसे प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं
1: हां जी
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं
2: हां जी हां
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया
2: नहीं नहीं अभी नहीं
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं एक किताब हूँ, हाँ एक किताब। तसल्ली से पढ़ा होता तो समझ पाती मुझको, सिर्फ मुखपृष्ठ देखा, भूमिका पढ़ी और कुछ पन्ने उलट पलट कर बिना पढ़े ही रखती किताब तुमने एक कोने में, कांच की सेल्फ के भीतर बस सजा दिया मुझको। काश मुझे पढ़ते तो समझ पाते कि क्या हूं मैं और क्या है मेरे भीतर तुम्हारे लिए।

मैं एक नदी भी हूँ, बहती रहती हूँ, कल कल करती, छल छल बहती, अकेली सी, सिसकती, मचलती, गरजती, उलझती सी। मैं नदी हूँ, उतरती हूँ दिलों में, किसी सुबह की उजास की तरह।

मैं एक नदी भी हूँ, बहती रहती हूँ, कल कल करती, छल छल बहती, अकेली सी, सिसकती, मचलती, गरजती, उलझती सी। मैं नदी हूँ, उतरती हूँ दिलों में किसी सुबह की उजास की तरह, कानों में गुनगुनाती हूँ, दरवाजों से बहती आती हूँ तुम्हारे भीतर, खुले दिलों में उतरती हूँ। हाँ, मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती खुद को, हाँ मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती खुद को, मैं तुम में विलीन हो जाना चाहती हूँ, डुबो देना चाहती हूँ खुद को तुम्हारे भीतर बनकर।

लिख सकते हो मुझ पर कोई कविता? एक रात में कवि कितनी कविताएं लिख लेता है। जब सभी सो जाते हैं, कवि चुपचाप छत पर नंगे पैर आता है रात को निहारने के लिए, है ना? काश तुम भी छत पर आते, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद। हाँ, मैं रात सुहानी बन जाती जब बन जाते तुम मेरे चांद।

शायद गीत में आप हैं मंदाकिनी के साथ। कभी कभी सोचती हूं मैं एक हवा हूं, मेरे स्पर्श से रोमांचित हुए हैं पेड़ पहाड़ और कबूतर चिड़िया भी। तुम्हें छूती हूं तो तुम में भर जाती हूं, तड़पती हुई तुम में समा जाना चाहती हूं। मैं तुम्हारे प्यार में सरस सरल बनकर बह रही हूं अनवरत अनवरत अपने ही भीतर, हाँ अपने ही भीतर।

मैं बारिश हूँ किसी प्रेम कविता सी। धीरे धीरे गिरती बूंदें, बादलों की ओट में छुपा चांद, पहाड़ियों पर उतरती धुंध, मुझसे भीग कर तुम्हारा वो मुस्कुराना, वक्त जैसे थम जाता है, ये भीगी वादियां और तुम्हारा साथ, उफ, सब मिलकर जैसे इश्क की एक नई कहानी बन रही होती है तब। हाँ, एक नई

0: सुनो, मैं एक स्त्री भी हूँ और तुम अपनी किताब के पन्नों में मशगूल एक प्रेमिल कवि। सोचती हूँ तुम्हारे संग बर्फीली वादियों में खो जाऊं, तुम्हारा हाथ थामकर चलूं, यूं ही किसी चांदनी रात में दूर तक किसी घने जंगल में खो जाऊं तुम्हारे साथ। हाँ, अच्छा लगता है तुम्हारा ये साथ। वो सर उठाकर बंद आंखों से जाने क्या सोचते हुए बुदबुदाते हो तुम, बहुत अच्छे लगते हो तब। हाँ, बहुत अच्छे लगते हो तब।
1: मैं

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही वीको टर्मरिक क्रीम, मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रदेश खबरां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर गजटेड कर्मचारियों लिए 78 दिनों की तनखा के बराबर बोनस नूं मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों लिए दिव्यांगता का मापदंड 80% तो घटा के 40% कर दिता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IDBI बैंक का पुनर्गठन किया जाएगा, लब्बे गए रणनीतक भाईवाल की मदद नाल बैंक विच नवी पूंजी पाई जाएगी। भाजपा की सूबा प्रधान डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने मनुखता की सेवा की एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश करते हुए अपने आप नूं पोर्टल ते रजिस्टर करके मौत तो बाद अपने अंगदान करन दा प्रण लिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर ने कहा कि पृथला विधानसभा हल्के नूं बिना किसी भेदभाव के सही ढंग नाल विकसित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य विच मानसिक सेहत सेवावां प्रदान करन वालियां संस्थावां लई एक व्यापक रेगुलेटरी ढांचा बनाया। मुख्यमंत्री के निर्देशों से हरियाणा विच सड़कां दे किनारियां तो लंबे समय तो खड़े अनवरते बिजली के खंभियां नूं हटाउण की प्रक्रिया तेज हुई। दोवां निगमां वल्लों कुल 6443 अनवरते बिजली के खंभियां की पछाण की गई। भारतीय चोण कमिशन दीआं हदायतां मुताबिक दाव्यां ते इतराज़ां दी म्याद दौरान एक वोटर फार्म 7 ते वध तों वध 10 अर्जियां जमा करवा सकेगा। ए सन मुख प्रदेशक खबरां।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोतिहुन पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। सुरसांझ प्रोग्राम दे सारे सुनन वालियां नूं साडा प्यार भरिया नमस्कार। ए है प्रोग्राम दा शुरुआती नगमा। गायक कलाकार ने गुरलेज अख्तर।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हुन प्रोग्राम विच वारी है गेलर मांदी तर्ज कैप्टन ते मनी पवानी करती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने

0: कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और दो अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ